मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: और नीले आसमान में ऊंची उड़ानों के पंख फैलाए हर पंछी अपनी चहचहाहट से कानों में मधुर रस घोलते हैं। यही वो पावन समय है जब जिंदगी सारी उलझनों से दूर सुकून भरे माहौल में खुद से मुलाकात करती है। इस बेपरवाह पलों में करने आपसे मुलाकात, लेकर ज्ञान और मनोरंजन की सौगात। नमस्ते लखनऊ के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं, शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खबरों के साथ। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में

हर सुबह की सुनहरी धूप उम्मीदों की किरणें साथ लाती हैं। धरती से उठती मिट्टी की सौंधी खुशबू हरी भरी प्रकृति का रंग निखार देती है।

0: मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ के सफर में स्वागत है आप सभी का। सुबह के 6:05 हुए हैं, करते हैं आज के कार्यक्रमों की शुरुआत कृषि चर्चा के साथ। आज का विषय फसल चक्र का चुनाव। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
2: शुभ प्रभात। किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों के वार्षिक क्रम व स्थानिक व्यवस्था को क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन हम खेती करने वाले लोग इसे यह समझ लेते हैं कि फसल चक्र कैसे हम अपनाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल चक्र की जो पद्धति है, वहां पर पाई जाने वाली भूमि एवं जलवायुगत कारकों को, जो कि फसल या फसलों के समूह के पोषण एवं उपयुक्तता तथा उगाने के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार तय होती है। हमारे स्तर पर उपज क्षमता एवं आर्थिक लाभ ही किसी क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाने के लिए प्रमुख कारक होता है। इसके अलावा अवस्थापना सुविधाएं, सामाजिक आर्थिक कारक के साथ साथ तकनीकी विस्तार भी क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। अवस्थापना सुविधाओं की बात करें तो सिंचाई, परिवहन, भंडारण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन के साथ साथ प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। सामाजिक आर्थिक जो कारक होते हैं उनमें वित्तीय व्यवस्था, कृषि जोत का आकार प्रकार और साथ ही साथ मालिकाना हक, श्रम की उपलब्धता एवं परिवार की खाद्य, चारा, ईंधन एवं वित्तीय स्थिति को समाहित किया जाता है। तकनीकी कारकों में उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियां, यंत्रीकरण, कृषि रक्षा सूचनाओं की प्राप्ति के साथ ही पहुंच निर्धारित की जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पैदा की जाने वाली कहीं भी जो फसलें वर्षों के अनुभव, परंपरा, लाभ की आशा, सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता, उत्पादकता, व्यक्तिगत रुचि, संसाधन जोखिम, ओला हो या फिर कोहरा का हो, आर्द्रता हो, भूमि की विविधता और साथ ही साथ खाद्य एवं आय सुरक्षा की जो स्थिति है उसको भी क्रॉपिंग पैटर्न को निर्धारित करने के मुख्य घटक के रूप में हम शामिल करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन को फसल उपज के मुख्य जो मूल्य होते हैं वो दो तरह से प्रभावित करते हैं। एक तो फसलों की मूल्य समानता में परिवर्तन के कारण फसलों के क्षेत्रफल में परिवर्तन आता है। दूसरे अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए अनिश्चित यानी कि ऊंचे मूल्य की अपेक्षा मूल्य स्थिरता से फसल की बहुलता होती है, अर्थात प्रति एकड़ अधिकतम अस्थायी तुलनात्मक लाभ का क्रॉपिंग पैटर्न निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटी जोत के किसान पहले अपने जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक खाद्यान्न पैदा करते हैं, उसके बाद नकदी फसल के बारे में सोचते हैं और बहुतायत से पूर्वांचल और अवध का क्षेत्र, काफी बड़ा क्षेत्र जो है उसमें यही पद्धति अपनाते हैं। यानी कि छोटी जोत के किसान बड़ी जोत के आकार वाले किसानों की अपेक्षा नकदी फसल में कम क्षेत्रफल रखते हैं, परंतु आजकल सीमित जोत के किसान भी अपनी सीमांत आर्थिक आय को सुनिश्चित करने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन कर विविधीकरण अपना रहे हैं। अब इस क्रॉपिंग पैटर्न में क्या कुछ प्रचलित है हमारे यहाँ, उस पर निगाह डालते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इसके प्रमुख कारण हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न में अधिकतम विविधता पाई जाती है और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कृषि पर अधिकतम निर्भरता, छोटी जोत, भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव समाहित है। उत्तर प्रदेश

0: में कई क्रॉपिंग पैटर्न अपनाए जाते हैं, जैसे कि धान गेहूं, धान चना, धान सरसों, मक्का गेहूं, मक्का चना, गन्ना गेहूं, ज्वार चना, मक्का सरसों, मक्का मटर और मक्का आलू। इसी तरह से जब हम नकदी फसल को इसमें समाहित करते हैं तब भी उसमें क्रॉपिंग पैटर्न को विविधता देनी पड़ती है। पानी की जो कम उपयोग क्षमता है या दक्षता है उसको समाहित करते हुए पानी के सीमित एवं कीमती होने के बावजूद इसकी उपयोग क्षमता बहुत कम है, इसलिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जिसका प्रमुख कारण है कि असमतल खेत में पानी के प्रयोग, सिंचाई का गलत ढंग, यानी खेती के उन्नत क्षेत्रों में भी जब हम करते हैं तो फिर यह दोषपूर्ण होती है। दोषपूर्ण मूल्य निर्धारण, जैसे कि बिजली एवं नहर सिंचाई के कारण अधिक सिंचाई हो जाती है तब भी खराब स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह से भूमि क्षरण भी होता है, तो नहरी क्षेत्रों में जल निकास के अभाव में भूजल स्तर बढ़ने के कारण मृदा लवणता की समस्या पैदा हो जाती है, यह भी क्रॉपिंग पैटर्न पर काफी कुछ प्रभाव डालती है। सघनीकृत कृषि क्षेत्रों में पानी के अत्यधिक दोहन से जल स्तर गिर रहा है, इससे उत्पादन गिरने के अलावा गहराई से पानी निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में धान गेहूं फसल चक्र का अस्थायित्व संभव नहीं है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऐसे भी क्षेत्र जहां भूजल उपयोग की अत्यधिक संभावना होने के बाद भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। सिंचित उपजाऊ क्षेत्र का गैर कृषि क्षेत्रों जैसे कि उद्योग आवासीय क्षेत्र में जाना भी एक बड़ी समस्या है। इसी तरीके से हम देखें तो जो उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन की स्थिति है जो बहुत बड़े पैमाने पर है, खेत में अंतर्निहित क्षमता में कमी आ रही है।
1: फसल चक्र का चुनाव, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। आकाशवाणी लखनऊ से ये है नमस्ते लखनऊ का सफर, जहां बारी है अब कार्यक्रम सुविचार की। आज का विषय नरसिंह भगवान, स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का। नरसिंह भगवान का नाम स्मरण करते अथवा सुनते ही हम सभी को बचपन में पढ़ी भक्त प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कथा याद आ जाती है। भगवान विष्णु का परम भक्त था बालक प्रह्लाद। उसके पिता हिरण्यकश्यप, जो स्वभाव से ही दुष्ट और पापी थे, बालक प्रह्लाद पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाने के बावजूद उसके मन से भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा मिटा ना सके। नहीं, अपने पुत्र प्रह्लाद को मारने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठने की अनुमति भी दे दी ताकि वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। होलिका प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रह्लाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। तब हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को अपने भक्ति और चहुं ओर प्रभु ही हैं ये सिद्ध करने को कहा। भक्त प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि प्रभु सब जगह व्याप्त हैं। इतना ही नहीं, वे तो इस महल के प्रत्येक स्तंभ में भी व्याप्त हैं। तब हिरण्यकश्यप ने प्रभु को मारने के लिए स्तंभ पर जोर से प्रहार किया और कहा जाता है कि तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया। नरसिंह भगवान भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार माने जाते हैं। नरसिंह अर्थात नर और सिंह, जिसका स्वरूप नर अर्थात मानव और सिंह अर्थात शेर का है। नरसिंह भगवान शक्ति, पराक्रम और अपने भक्तों की रक्षिका शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि नरसिंह भगवान वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप की पूजा अर्चना प्रमुख रूप से भारत के दक्षिण प्रांत में वहां के वासियों द्वारा की जाती है। ये भी मान्यता है कि नरसिंह भगवान के इस स्वरूप में अवतरित होने का प्रमुख ध्येय पापी हिरण्यकश्यप का वध करना और अपने परम भक्त प्रह्लाद की रक्षा करना था। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्यु नमामयम। नरसिंह भगवान की कथा के बारे में ये भी कहा जाता है कि सनकादिक ऋषि के श्राप से कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के यहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम क्रमशः हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पड़ा। दोनों ही पुत्रों ने घोर तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न ही पशु, न ही वो घर के अंदर मरे, न घर के बाहर, न ही उसे कोई दिन में मारे और न ही रात्रि में। हिरण्यकश्यप को तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को अजय समझने लगा। इसी बीच उसकी रानी ने एक अलौकिक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वो बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था और हमेशा विष्णु नाम का जप करता रहता था।

0: ये बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को नापसंद थी, क्योंकि वो विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। उसने भगवान विष्णु की पूजा करने पर महल में चारों ओर प्रतिबंध लगा रखा था। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए भी उसने मना किया, लेकिन प्रहलाद ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु का अस्तित्व सिद्ध करने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा सुनकर उसने कहा कि प्रभु हर कण में विद्यमान है और आपके महल में भी मैं आपको उनके दर्शन करा सकता हूँ। यही वो बिंदु था जब भगवान विष्णु नरसिंह स्वरूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पर ले गए। महल के खम्भे से प्रकट होकर जब नरसिंह भगवान ने दुष्ट पापी का वध किया तो वो गोधूली बेला का समय था। प्रभु का स्वरूप न मानव का था न ही पशु। वो स्थान न घर के अंदर था न घर के बाहर। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसके प्रकोप और अत्याचार से संसार को मुक्त कराया और समस्त प्राणियों की रक्षा की। इसी प्रकार नरसिंह भगवान की शक्ति को संकट नाशिनी शक्ति माना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा हेतु इस संसार में तब तब अवतरित होते हैं जब जब कोई सच्चा भक्त उन्हें मन से पुकार उठता है।
1: नरसिंह भगवान, डॉक्टर शिवा राकेश के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 6:15 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ में अब समय है भक्ति संगीत से ईश्वर अभिनंदन का। कार्यक्रम है आराधना।

अनंत अखंड अमर अविनाशी, कष्ट हरण है शंभू कैलाशी। शिव की महिमा अपरंपार है, शिव करते सबका उद्धार है। आइए शिव की आराधना से करते शुरुआत है।

शिव सेवा कर फल सुत हो सोई, अभिरल भगति राम पद होई। शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। शिव सेवा साधन है और राम भक्ति साध्य है। शिव जी की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वो है श्री राम जी के चरणों में अविरल प्रेम।

ईश्वर कहते हैं धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस भरोसा रखो उस परमात्मा पर जो हर कर्म का सही फल देता है। वो ना कभी देर करता है और ना कभी गलत करता है।

इस भक्ति गीत के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज आपने जिन कलाकारों को सुना वो हैं अनूप जलोटा, कविता सुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल और पार्थिव गोहिल।

आकाशवाणी लखनऊ से जारी है भक्ति संगीत की ईश्वरमयी धारा। इस क्रम में आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। माँ गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार मन्ना डे और शोभा जोशी, संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:55 हुए हैं, सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 7 बजे हैं नमस्ते लखनऊ के सफर में, अब बातें स्वास्थ्य और सेहत की। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा, आज का विषय गर्मी के मौसम में डायरिया से बचाव। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, गर्मी के मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आज एक ऐसे ही संक्रामक रोग की हम बात करेंगे जिसे दस्त, अतिसार या डायरिया कहा जाता है। ये बहुत ही सामान्य पाचन संबंधी समस्या है। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी संक्रमण या पेट की खराबी का एक लक्षण मात्र है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए किसी को भी डायरिया होता है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। बार बार पतला या पानी जैसा दस्त आना, पेट में मरोड़ या तेज दर्द का होना, उल्टी या जी मिचलाना, बुखार आना, डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी के संकेत जैसे बहुत प्यास लगना, मुंह सूखना, कम पेशाब आना, चक्कर आना और अन्य गंभीर मामलों में यानी कि समय रहते अगर इसका इलाज न किया जाए तो मल में खून या फिर म्यूकस आता है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। श्रोताओं, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायरिया के कारण क्या होते हैं। वायरल संक्रमण आपने सुना भी होगा, इसमें एक है रोटा वायरस, यानी कि ये एक ऐसा वायरस कहा जाता है जो बच्चों में दस्त का सबसे आम कारण है। इसे पेट का फ्लू भी कहते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण, ये एक ऐसा संक्रमण होता है जो दूषित भोजन या पानी से शरीर में प्रवेश करता है। श्रोताओं, गर्मी का मौसम है, फूड पॉइजनिंग एक आम समस्या है। फूड पॉइजनिंग

0: कैसे होती है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम खाना तो बिल्कुल सही खाते हैं, घर का खाते हैं, पानी घर का पीते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल फूड पॉइजनिंग होती है बासी खाने से, खोले कटे हुए फल जो ठेले पर मिलते हैं उनके खाने से। मान लीजिए चाट पकौड़े खाने के कुछ लोग शौकीन हैं, ठेले से वो लेकर खाते हैं, तो उसके खाने से हो सकती है। या फिर जल के सेवन से, यानी जो आप पानी पी रहे हैं वो प्रदूषित हो, साफ ना हो, शुद्ध ना हो। श्रोताओं, इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। मान लीजिए कोई अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहा है तो उससे भी उसे दस्त हो सकते हैं। श्रोताओं, कहने का मतलब ये है कि डायरिया गंभीर ना हो, यानी कि आपको उल्टी और दस्त बार बार हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज सही से करें, इंतजार न करें। अगर बच्चों को ये समस्या है तो भी आपको जल्दी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनी है। मान लीजिए किसी को भी उल्टी और दस्त होती है तो सबसे पहले तो आप प्राथमिक उपचार के तौर पर अगर घर में हैं तो ORS का घोल ले सकते हैं, यानी उसका आप सेवन कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घोल है, ये शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। तरल पदार्थों में आप नारियल पानी, नींबू पानी, चावल का मांड, सूप और साफ पानी पीते रहें। खान पान की बात करें कि यानी इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, तो आप केला खा सकते हैं, चावल और दही का सेवन बहुत फायदेमंद होता है, हल्की खिचड़ी खा सकते हैं। दही के बारे में इसलिए हमने जिक्र किया है क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। श्रोताओं, अब ये भी ध्यान देने की बात है कि हम क्या ना खाएं। मसालेदार भोजन, दूध से बने उत्पाद, कैफीन और अन्य ऐसे पदार्थ जो पेट में जलन पैदा कर सकते हैं। अगर हम स्वच्छता की बात करें, क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे, घर परिवार में सबको साफ सफाई की आदत होगी, तो हम इस बीमारी से, जो इस समय संक्रामक रोग है डायरिया, इससे बच सकते हैं। इसके लिए खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोएं और शौचालय जाने के बाद अच्छी तरह से हाथों को साबुन से धोएं। श्रोताओं, डॉक्टर के पास आप कब जाएं? मान लीजिए आपको सुबह एक दस्त हुआ, उल्टी आई और फिर भी जी मिचला रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, दोबारा दस्त हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाएं। इसके साथ अगर आपको तेज बुखार है, यानी कि 102 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा, मल में खून या काले रंग का मल आना, यानी कि ये ऐसी समस्या है जो रोग की गंभीरता को दर्शाती है, उसके पहले ही आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। श्रोताओं, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जो 12 माह से कम के हैं, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उनके लिए आप बिल्कुल इंतजार न करें और ना ही अपना कोई इलाज करें। श्रोताओं, डायरिया के बारे में ये कहा जाता है कि अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। श्रोताओं, इसीलिए सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम में ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल घर में रखना बेहद जरूरी होता है। ये दस्त, उल्टी, लू या अत्यधिक पसीने के कारण शरीर में हुई पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को तुरंत पूरा करता है। ये निर्जलीकरण को रोकने, कमजोरी और चक्कर से राहत दिलाने और बच्चों में दस्त से होने वाली मौतों को रोकने में एक जीवन रक्षक उपाय है। श्रोताओं, आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। दीजिए आज की स्वास्थ्य चर्चा समाप्त करने की नीना सोनकर को अनुमति। नमस्कार।
1: गर्मी के मौसम में डायरिया से बचाव, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। अपने सेट पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। लीजिए सुनिए आज यानी 9 मई को आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में एक जानकारी। सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात्रि 10 बजे। साथ ही राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। हमारे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे वार्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक मोरल। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत होगी भेंटवार्ता AI से अंतरिक्ष तक, भारत के बढ़ते तकनीकी कदम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर विशेष इस विषय पर डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से भेंट करता होंगे प्रवीण कुमार। साथ ही सुनेंगे शीबा राकेश से विज्ञान समाचार। सुबह 9:15

पर कार्यक्रम जिले की हलचल में आज सुनेंगे शांति और अमेठी जिले की हलचल। उर्दू कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए आकाशवाणी रामपुर की पेशकश। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगी अंजुली श्रीवास्तव। इनके स्वर में अवधि लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर कार्यक्रम लोकरंग में और दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी में। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल के स्वर में भजन आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर। विज्ञान और किसान ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता धान की सीधी बुवाई तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर सी आर राम कन्नौजिया से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके अपने कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:15 पर, जिसमें चर्चा के साथ होंगी बातें शब्द एक गीत अनेक रिश्ता आंखें विषय पर। शाम 5:10 पर लेकर आएंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग, जिसमें आप सुनेंगे डीआर विनायक से कविता पाठ और साथ ही आज की बात। शाम 5:45 का समय कार्यक्रम नई उड़ान का, जिसके अंतर्गत शालिनी ओबी लेकर आएंगी, विषय होगा विमर्श, नीति निर्माण में भागीदारी के बिना लोकतांत्रिक विकास अधूरा है कैसे। इसके साथ ही होगी सामूहिक चर्चा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर, महाराणा प्रताप जयंती, गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती विषय पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए नंद किशोर वर्मा की वार्ता जल संचयन से ग्रामीण समृद्धि। इसके साथ ही साथ होगी चर्चा प्रधानमंत्री आवास योजना पर। शाम 6:50 का समय कार्यक्रम खेती किसानी का, जिसके अंतर्गत सुनेंगे भेंट वार्ता ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य। इस विषय पर डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके साथ ही साथ होगी चर्चा और सुनेंगे लोकगीत। तो श्रोताओं, ये थी आज लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विशेष जानकारी।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कार्यक्रम विविधा हम लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार। आज विविधा में विषय विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।

सरहद के दायरों को पंछी नहीं जानते, मजहब कौन सा है दरिया नहीं पहचानते, जाति पाति जन्म के बंधन ये फलक नहीं मानते, ये पंछी तो आजाद गगन में बस घूमते हैं रहते। दोस्तों, जिस तरह पंछियों के गीत और उनकी बातें आपके रेडियो सेट से आपके कानों तक पहुंच रही हैं, ये बता रही हैं कि आज का दिन है खास, कुछ बहुत ही खास। ये दिन है उन चहचहाते हुए पंछियों के नाम जो जब घर को वापस आते हैं तो सुकून की एक नई कहानी सुनाते हैं। हर बार

इन्हें हम कहते हैं प्रवासी पक्षी। ये वो पक्षी हैं जो भोजन, आवास और प्रजनन के लिए हर साल एक निश्चित मौसम में हजारों मील की लंबी और चुनौतीपूर्ण दूरी की यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये पक्षी आमतौर पर उत्तरी एशिया, यूरोप और ठंड प्रदेशों से भारत जैसे गर्म स्थानों पर सर्दियों में आती हैं और मौसम बदलने पर वापस लौट जाती हैं। और इन्हीं प्रवासी पक्षियों और उनके पारिस्थितिक महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता मनाने के लिए वर्ष में दो बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार यानी आज 9 मई के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया जाता है। आज हम मना रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये दिवस उन खतरों को उजागर करता है जिनका सामना पक्षी अपने लंबी दूरी के प्रवास के दौरान करते हैं और उनके संरक्षण यानी कंजर्वेशन के लिए ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। दोस्तों, हर साल कम से कम 4000 विभिन्न प्रजातियों के पक्षी नियमित रूप से प्रवास यानी कि माइग्रेट करते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ पक्षी लगभग 15000 मील या उससे भी अधिक की दूरी तय करते हैं। आपको बता दूं, सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला प्रवासी पक्षी बार हेडेड गूज है जो समुद्र तल से लगभग 5.5 मील की ऊंचाई तक पहुंचता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस तरह के आकर्षक जीवों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। पक्षियों की उड़ान, उनके प्रवासी पैटर्न और विशेष प्रजाति के पक्षियों की झलक पाना, उनका अवलोकन करना अपने आप में प्रकृति की महान संरचना और कलाकृति को सराहने जैसा है। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक अलग विषय घोषित करता है जो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रयासों में निहित विभिन्न मुद्दों को प्रकाश डालता है। इस वर्ष यानी साल 2026 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम है एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशन मैटर, यानी हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन मायने रखता है। और दोस्तों, अवलोकन तो जरूरी है क्योंकि जिस तरह हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि से आवास की कमी, जंगलों का कटना, पर्यावरण, मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले वो खतरे हैं जिनके बारे में जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाएं वैश्विक आयोजनों द्वारा पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रवास, निवास की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई अभियान चला रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को भी अपनी तरफ से प्रकृति की इन अनमोल धरोहर को बचाना है, संभालना है और संरक्षित करना है ताकि प्रकृति में निहित हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, मौसम और प्राकृतिक संरचना की मैत्री ये जो चक्र है सुचारू रूप से चलती रहे ताकि हर मन खुशी खुशी अपने अनमोल जिंदगी के लिए इस गीत को गुनगुनाता रहे, गा सके और सबके साथ इसे एंजॉय कर सके।

दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हालांकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आधिकारिक उत्सव दिवस प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन संगठन ये भी मानता है कि प्रवासी पक्षी अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर रुकते हैं, इसीलिए इसे अक्टूबर माह में भी मनाया जाता है और इस उत्सव को लचीला बनाया जाता है ताकि हर पक्षी और हर लोग इस दिवस को मना सके और साथ ही साथ प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को अपनी जागरूकता के साथ में बचा सके। इस कामना के साथ कि हर पंछी की उड़ान के साथ हम इंसान भी अपनी

जिंदगी को आजाद हवा में, खुले आसमान में, बिना किसी सरहद, दायरे और दूरी की अपनी बाहें फैलाकर जिए। आप सभी को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। विविधा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। उसके पहले कुछ संदेश।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को
2: और भारतीय आर्काइव्स
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
4: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
3: प्रदेश में 7 मई से डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पहले चरण की स्वगणना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत

0: प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा,
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में कल जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जाएगा। दोनों दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कल 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 11 मई को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कानपुर में कल सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से राहत दिलाएगा। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कल मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में

0: राज्य सरकार होमगार्ड्स के हित में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
1: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
2: देवकाशो होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त, यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन, यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक, जब भी आप चलाएं कोई वाहन ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ के सफर में अब है बारी कार्यक्रम आज सुबह की, जिसे लेकर आएंगे हम बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम आज सुबह में आप सभी का स्वागत है।
1: जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं, जरूरी नहीं कि सारे सबक

0: किताबों से ही सीखे जाएं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। और उन रिश्तों का होना ही क्या जिसमें मतलब की मीठी चाशनी हो। रिश्ते तो वो ठंडी छांव होते हैं जो अंतर मन को सुकून दे, दिल को खुशी और मन के भावों को, जज्बातों को उड़ान दे।
1: और ऐसे ही रिश्ते की डोर में आपको हमसे बांधने लेकर ज्ञान और मनोरंजन का चटपटा सा फ्लेवर आज सुबह प्रोग्राम के एक और इंफोटेनिंग एपिसोड के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति।
0: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शिखा।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, सुप्रभात,
0: नमस्कार।
1: तो शिखा कैसी हैं आप और लखनऊ कैसे मिजाज हैं आपके? देखिए सुबह से तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन आज सुबह प्रोग्राम का जब वक्त आता है तो बहुत सारे विचार दिमाग में कौंधने लगते हैं, है कि नहीं?
0: जी बिल्कुल, कौंधने लगते हैं। और ये भी लगता है कि हमारे श्रोता भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या क्या खास होने वाला है आज इस कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हमारी ये परंपरा है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं, तो अपने श्रोताओं को हम आज का सुविचार भी बता देते हैं। दोस्तों, ये एक जीवन जो है संघर्ष है, और संघर्ष ही जीवन को अनुभवों का अनमोल तोहफा भी देती है।
0: अनुभवों का स्वागत कीजिए, ना जाने कौन सा अनुभव जिंदगी बदल दे।
1: और हाँ, जब संघर्षों की बात होती है तो संघर्ष करते समय ये तीन बातें अपने दिमाग में जरूर रखिए। पहली, अपना लक्ष्य क्या है। दूसरी, असंभव कुछ भी नहीं है। और तीसरी,
0: मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
1: तो बस अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते जाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को जागरूक भी रहिए, क्योंकि अगर आप जागरूक रहते हैं तो आपके लिए जिंदगी की राहों में आगे बढ़ना और मजबूती से अपने कदम को रखना संभव हो जाता है ना?
0: जी बिल्कुल। तो चलिए एक प्यारा सा ट्रैक भेज दें अपने श्रोताओं तक।

0: गीता दत्त की आवाज में यह गाना था श्रोताओं आर पार फिल्म से, और जिसका संगीत दिया ओपी नैयर साहब ने। और इस गाने के बारे में आपको बता दूं कि ये एक लैटिन गाने से इन्फ्लुएंस्ड है, और साथ ही साथ इस गाने में बहुत ही हल्के संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि अमेरिकन स्पैनिश मेलोडी कैजाज को भी शामिल किया गया है एक तरीके से। तो ये गाना आपने सुना अपने रेडियो सेट पर, और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह में। तो शिखा, आज हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन कौन सी बातें लेकर आई हैं?
1: जी, हमारे पास तो बातों का एक बहुत बड़ा सा पिटारा है हमारे श्रोताओं के लिए, लेकिन

0: अब सबसे पहले बताते हैं कि आज का दिन खास क्यों है।
1: हाँ बताइए।
0: तो आज है तीरंदाजी दिवस और उसके बाद है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी। तो आपको बता दें तीरंदाजी उसको करने के क्या होते हैं लाभ। जी हाँ, तीरंदाजी से एकाग्रता बढ़ती है। या खेल लोगों को एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। तीरंदाजी से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीरंदाजी व्यक्तिगत या सामाजिक हो सकती है।
1: बिल्कुल, खेल कोई किसी भी प्रकार का हो वो आपको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, आपको मजबूत बनाता है और साथ ही साथ एकाग्रचित बनाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ तीरंदाजी के जो बहुत सारे जो इसके बैड पॉइंट्स हैं उसको भी हमें ख्याल रखना है ताकि किसी को चोट ना लग जाए। स्पेशली

0: विजय शंकर शर्मा सर। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है?
1: जी देखिए, समावेशी शिक्षा जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, हम सभी का समावेश करते हैं। आप जानते हैं कि दिव्यांग जनों की शिक्षा से संबंध में ये बात देखा गया है कि उनके लिए तमाम तरह के विद्यालय हमें अपने समाज में और विश्व में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर केवल एक ही प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति एक विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें हम लोग विशेष विद्यालयों की संज्ञा देते हैं। किंतु जब हम दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए ऐसे विद्यालयों में उनको प्रवेश दें जो कि गैर दिव्यांग जनों के लिए बने हैं, अथवा ऐसे विद्यालय हम नए बनाएं जहां पर दिव्यांग जन और गैर दिव्यांग जन एक साथ पढ़ें, तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था को हम लोग समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहते हैं।
0: जी सर। सर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वर्तमान समय में शिक्षा के क्या प्रमुख अवसर उपलब्ध हैं?
1: देखिए, जहां तक दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा से संदर्भ में जो हमारे पास उपलब्ध ऑप्शंस हैं, उनमें हमें ये जानना पड़ेगा कि दृष्टिबाधिता एक संवेदी दिव्यांगता है, जहां पर दृष्टि संवेदना का अभाव है। अर्थात जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो इंद्री है, जो सेंस है, वो विजन होती है, आई होती है। तो उस दृष्टि के अभाव में व्यक्ति को वो इनपुट नहीं मिल पाएंगे जो कि विजन के कारण उसे मिल सकते थे। किंतु अब टेक्नोलॉजी और जो विशेष शिक्षक गण हैं उनकी सहायता से हम जो भी ऐसे इनपुट हैं, जो भी ऐसी जानकारियां हैं जिसके लिए विजन की आवश्यकता है, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी से और विशेष शिक्षकों के माध्यम से उसे कंपनसेट करते हैं। तो दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए भी वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि गैर दिव्यांग जन के लिए बनी है। अब उसको टेक्नोलॉजी हमने उपलब्ध करा दी, उसको हमने ऐसे शैक्षिक अवसर प्रदान कर दिए, जैसे क्लासरूम में जो टीचर है उसको संवेदना है, उसको जानकारी है कि दृष्टिबाधित जनों को पढ़ाना कैसे है। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, यदि आप दृष्टि दिव्यांग जन को भाषा पढ़ाना चाहते हैं तो भाषा पूर्णतया डिपेंड करती है आपके सुनने और बोलने पर, और दृष्टि दिव्यांग जन की सारी चीजें, दोनों चीजें ठीक हैं, तो वहां कोई समस्या नहीं आएगी। जब हम उसे लिखना और पढ़ने पे जाएंगे कि वो किस प्रकार से उस भाषा को लेखन में कन्वर्ट करे और उसे देखे जो उसमें लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए उसी दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, और उनका प्रयोग करके जो भी मटेरियल आपके सामने है हम उसे पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए अलग से हमको कुछ व्यवस्थाएं यदि हम कर दें अपने विद्यालयों में, खासतौर से टेक्नोलॉजी और स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था, तो वह भी बाकी जो गैर दिव्यांग जन है उन्हीं की तरह सामान्य विद्यालय, जिसे आप कहते हैं, जिसमें गैर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बना है, उसमें रह करके वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है।
0: जी सर, लगभग सभी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और ऐसे में हमारे बहुत सारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अब उनका सपना भी है उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का। तो अगर कोई बच्चा उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो एडमिशन के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या आप कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं?
1: मैं आपको बताऊं कि जब भी हम लोग 12वीं क्लास पास करके जब हम प्रवेश के लिए अवसर तलाशते हैं, तो आज की डेट में हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम है CUET। जैसे आप जानते हैं जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, पहले तो ये सुविधा केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए थी, लेकिन आजकल कई स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी एक कॉमन एंट्रेंस कराती है जिसके फॉर्म काफी पहले भरे जा चुके हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी ने वो फॉर्म भरे भी होंगे, तो जो उसकी डेटशीट भी आ चुकी है 11 मई से लेकर के 30 मई तक वो परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में जो प्राप्तांक आपको प्राप्त होंगे उसके आधार पर आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है उसकी वेबसाइट पर अपने CUET के अंकों को रखते हुए अप्लाई करिए। वहां आपको सभी जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको मौका मिलेगा, और आप जान लीजिए कि हमारे विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों में 50% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं और बाकी की 50% सीटें गैर दिव्यांग, मतलब दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। अब प्रयास ये भी चल रहा है कि हम लोग जल्दी ही जो विद्यार्थी नहीं किसी वजह से CUET का फॉर्म भर पाए दिव्यांगजन, उनको हम लोग इस प्रयास में

0: है कि या तो मई माह में या जून माह में हम उन्हें भी मौका देंगे कि वो हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके।
1: सर, उच्च शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से कोर्स और करियर विकल्प उपलब्ध हैं, अगर हम अपने विश्वविद्यालय की बात करें या फिर सरकार द्वारा प्रदत्त कोर्स की बात करें तो?
0: देखिए, उच्च शिक्षा पूरी तरह से सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए खुली हुई है। अब हमें ये सोच समझ के एडमिशन लेना होता है कि जिस उच्च शिक्षा के जिस भी पाठ्यक्रम में हम प्रवेश लें वह हमारे लिए नौकरी देने वाला हो। जिसमें आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बच्चा एडमिशन तो जैसे दृष्टिबाधित बच्चा है वो एडमिशन तो फाइन आर्ट के कोर्स में ले सकता है, पढ़ भी सकता है, किंतु उसके आधार पर उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ये सुझाव रहता है या भी रहती है कि ऐसे तमाम पाठ्यक्रम जिसमें हमारे लिए रोजगार की संभावनाएं हो वो समस्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति या और अन्य जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो अधिकृत हैं। तो कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम, बीए का पाठ्यक्रम हो, बीबीए का पाठ्यक्रम हो, बीकॉम एलएलबी हो, लॉ हो, कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए संभावना है कि आप अच्छा विकल्प तलाश सकते हैं, रोजगार के विकल्प तलाश सकते हैं, तो आप किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कोई बच्चा दृष्टिबाधित है और वो शिक्षक बनना चाहता है तो वो कभी भी श्रवण बाधित विद्यार्थियों का शिक्षक नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में उसको ऐसे कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए जो कि श्रवण बाधिता के क्षेत्र में टीचरों का प्रिपरेशन करता है, जैसे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इंपेयरमेंट में कभी वो एडमिशन ना ले, बीएड में एडमिशन ना ले जो हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए बना हो, बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो जितनी भी सहायक सामग्री, जितनी भी पाठ्य वस्तु अवेलेबल है वर्ल्ड में, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है वो आईएएस भी बन रहे हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति अच्छे अच्छे जो कोर्ट्स हैं उनमें वकील भी बनते हैं, और अभी कुछ दिनों आपको पता चलेगा कि एक दृष्टिबाधित बालिका है वो जज की कुर्सी पे बैठेगी, मतलब अभी उसने अपना क्वालिफाई कर लिया है। तो हमें देखते हैं कि वो सारे पाठ्यक्रम जिसमें विजन न होने के कम कंपनसेशन पॉसिबल है, कोई भी पाठ्यक्रम वह दृष्टिबाधित व्यक्ति कर सकता है।
1: सर, क्या सरकार की ओर से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष योजनाएं या स्कॉलरशिप उपलब्ध है जिनका लाभ छात्र उठा सकते हैं?
0: बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं। आप देखेंगे अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्कॉलरशिप्स के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल बना दिया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आप उसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जो भी, क्योंकि ये जो चीज है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से प्राप्त होती है, तो जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जैसे मान लीजिए आप जिस भी स्टेट के हैं, मैं यूपी की बात करूं, यूपी के बाहर की बात करूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यदि कोई विद्यार्थी बाहर के किसी राज्य से हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आता है और उसे राज्य की स्कॉलरशिप चाहिए तो उसे अपने राज्य में अप्लाई भी करना पड़ेगा, अपने पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी होती है, बहुत मिलती भी है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में जो ट्यूशन फीस है वो फ्री है, उनका अकोमोडेशन यानी हॉस्टल फ्री है और नॉमिनल चार्जेस और जो वैसे चार्जेस होते हैं जो इसको जैसे आप टूट फूट मरम्मत आदि के केवल वही लगता है, इसके अलावा भोजन इत्यादि सब उनका फ्री है। ये सारी चीजें हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात, देखिए मैं इस बात से बड़ा प्रसन्नता और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था है कि जैसे एक किसी भी विद्यालय में यदि आप पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली आप पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद समाज में ही जाएंगे। हमारे विश्वविद्यालय में पहले से ही उसे गैर दिव्यांग लोगों के बीच में कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे उनसे सहयोग लेना है, कैसे उनको सहयोग प्रदान करना है, वो डे वन से ही हम उनको इनपुट देते हैं, क्योंकि रहना उसे उसी सोसाइटी में है। तो वो सोसाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे विश्वविद्यालय में है, और इसीलिए गैर दिव्यांग दिव्यांग दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो उनको एक ज्यादा अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सोसाइटी में कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है वो मिलता है। इसलिए शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय प्रवास विश्वविद्यालय इस मामले में एक बहुत रोल मॉडल की तरह कार्य कर रहा है।
1: सर, एक और सवाल, आपने बताया कि विश्वविद्यालय में दिव्यांग बच्चे और साथ साथ में सामान्य बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं, तो एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है दोनों बच्चों के लिए एक जैसी है या जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें किसी तरह की सुगमता प्रदान की जाती है एडमिशन प्रक्रिया के तहत?
0: क्योंकि 50% रिजर्वेशन है, इसीलिए यदि बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो हमारे विश्वविद्यालय में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमने एक खासतौर से स्पेशल एजुकेशन में, आर्ट्स में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, वहां पर हमने हेल्प डेस्क स्थापित की हुई है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, यदि आप हमारे ऑफिस में आते हैं तो हम उन बच्चों का फॉर्म इत्यादि भर देते हैं, लेकिन अब

0: क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति या बाकी दिव्यांग व्यक्ति भी टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि अपना मोबाइल का प्रयोग करके ही वो सारे फॉर्म भर लेता है। लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं भर पाता है तो हम उसे वो सुविधाएं अपने विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराते हैं।
1: सर, अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर अक्सर चिंतित देखे जाते हैं?
0: उनकी चिंता बड़ी वाजिब है, और जैसे हम लोग गैर दिव्यांग बच्चों के माता पिता हैं वैसे जैसे हम चिंता करते हैं वैसे उनको भी चिंता करना एक अच्छी बात है। हमारा केवल यही उनसे आह्वान है कि हम उनके बिना कुछ नहीं है। यदि वो अपनी जागरूकता विश्वविद्यालय में आकर के देते हैं और उनका कुछ प्रयोजन हमारे विश्वविद्यालय में सार्थक बन करके आएगा तो बच्चे को हम और ज्यादा अच्छी दिशा दे पाएंगे। यह बात न केवल हायर एजुकेशन में बल्कि जो विद्यालयी शिक्षा है वहां पर भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना अभिभावकों के दिव्यांग जनों की शिक्षा को उनको रोजगार उपलब्ध कराना वो संभव नहीं है, मतलब संभव तो नहीं कि बहुत कठिन कार्य है। तो जैसे ही कहते हैं ना कि एक से भले दो और बोल की वो 11 बन जाते हैं, तो अभिभावक और विशेष शिक्षक और शिक्षक यदि तीनों आपस में मिल जाए तो दिव्यांग जनों के शिक्षा और पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा हम लोग मिलकर के प्रयास कर सकते हैं और वहां पर सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो इसलिए उनका हमें बड़ा आवश्यकता होती है, उनसे हमारी बड़ी आशाएं होती हैं, तो उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
1: अंत में आप समाज और जो छात्र अब उच्च शिक्षा के साथ जुड़ने जा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे शिक्षा का दायरा और अधिक समावेशी बन सके?
0: समाज में हम लोगों को ये देखना होगा कि दिव्यांग जन भी समाज का एक हिस्सा है। हाँ, कुछ कार्य करने में असमर्थता है लेकिन सब कार्य नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है। केवल हमें उनकी जो उनके अंदर शक्तियां हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। और यदि हमने उनकी क्षमताओं को पहचान लिया तो हम उन्हें समाज में एक बहुत अच्छे स्थान पर देख सकते हैं, और जब उनकी तरक्की होगी तो हमारे देश की तरक्की होगी, ऐसा मेरा मानना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से
2: दृष्टिबाधित संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष श्री विजय शंकर शर्मा सर,
1: जिन्होंने समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चों के अधिकार और उनके उज्ज्वल भविष्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको नई दिशा और प्रेरणा मिली होगी।
3: तो शिखा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने सुनी है और अपने श्रोताओं तक भी पहुंचाई, आपका क्या कहना है?
4: जी, मेरा भी यही कहना है कि इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों ने सुनी और हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, सुना होगा तो आज इस जानकारी को सुनकर खुश तो हुए होंगे कि कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं और क्या क्या होने वाला है
3: और इससे हम कितना लाभ उठा सकते हैं।
4: जी बिल्कुल।
3: तो फिलहाल लाभ उठाने वाली बात कही है, देखिए एक संगीत और गीत का जो माहौल है वो भी होना चाहिए, है कि
4: बिल्कुल,
3: नहीं
4: बिल्कुल।
3: लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। देखिए मौसम जो है इस वक्त करवटे ले रहा है, सर्द हो रही है, गर्म भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, और ये जो मौसम है ना वो कई सारी तकलीफें अपने साथ में लेकर आता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और इस मौसम में आपको खासकर अपना और अपने छोटे बच्चों का और जितने हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
3: चलिए तो इसी बात पे हम मौसम का हाल जान लेते हैं। हमारे कार्यक्रम में हमारे मौसम विज्ञानी आते हैं, मोहम्मद दानिश सर, सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD के। तो उनसे जानकारी लेते हैं कि आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल।
5: नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
6: नमस्ते, मैं अच्छा हूँ।
5: स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे द वेरी इंफरटेनमेंट प्रोग्राम आज सुबह में। तो बताइए सर, कैसा रहेगा आज हमारे लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का हाल?
6: देखिए लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, दिन में अच्छी धूप खिलेगी, लेकिन मौसम जैसा कि अभी खुशनुमा बना हुआ है, तापमान अपने सामान से कम है, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन ओवरऑल अगर कहे तो बहुत ज्यादा गर्मी का सबब नहीं रहेगा।
5: जी,
6: मतलब धूप निकलेगी लेकिन जो मई में चिमचिलाती धूप है वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा मौसम खुशनुमा रहेगा।
5: क्या बात है।
6: और शाम को रात को भी मौसम अच्छा ही रहेगा, तो कुल मिलाकर कहे तो दो तीन दिन मौसम थोड़ा खुशनुमा रहेगा, हालांकि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा। तो

0: लेकिन कोई ऐसा लू वगैरह का कोई अलर्ट नहीं है, तो ये सिलसिला आने वाले अगले 3-4 दिन तक बना रहेगा। उसके बाद जैसे कि पश्चिम विक्षोभ आ रहा है तो थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल अभी 2-3 दिन मौसम खुशनुमा रहेगा, हालांकि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा।
1: धन्यवाद सर आज सुबह कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मौसम के बारे में।
0: ओके धन्यवाद,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते
2: जी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी मोहम्मद दानिश जी ने हम लोगों को दे दी है कि अभी तो हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज का दिन कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा, लेकिन इन्होंने हम लोगों को जो संदेह था वो दूर कर दिया है कि आज का भी दिन जो है वो रहने वाला है बहुत खुशनुमा। आप कहीं भी बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, मोस्टली बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अगर नहीं बहुत दूर जा पा रहे हैं तो जरूर आसपास जाने का प्लान बनाएं।
3: और साथ ही साथ अब इस कार्यक्रम में एक गाना भी हो जाए
2: जी, तो एक प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे हैं बेस्ड है रात पीलू पर, जो अपनी हल्की चंचल और अर्ध शास्त्रीय प्रकृति के लिए जाना जाता है, जो इस गीत के हास्यपूर्ण और दार्शनिक भाव के लिए आदर्श बनाता है।
1: और ये गाना जो लिया था हमने फिल्म अलबेला से लिया था, जिसमें भगवान दादा की आवाज है और इसके संगीत निर्देशक रहे हैं सी रामचंद्र जी। तो इतने खूबसूरत और इतने मजेदार गाने के साथ में देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कार्यक्रम का समय हो रहा है वाइंड अप करने का। शिखा, हम तो यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि मौसम हो, किस्मत हो, बात हो, विवाद हो, इन सब में अपनी को आप जरूर व्यस्त रखें, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत को मस्त रखें।
0: जी, और साथ सेहत को तो मस्त रखे ही रखे, और साथ में हर पल जिंदगी का खूब अच्छे से जिए।
1: बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ में कि आपका दिन बड़े ही अच्छे से शुभ मंगलमय बीतेगा, अब आज सुबह कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति
0: और अपनी रेडियो दोस्त शिखा को।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। इसी के साथ ही नमस्ते लखनऊ का सफर अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करें।

0: बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं।

0: सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण

0: सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही विशेष दिन है, आज हम मना रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। साथियों, आपको बता दें कि ये दिवस जो है वर्ष में दो बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को। साथियों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया भर में लोगों को यह संदेश देता है कि प्रवासी पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये पक्षी मौसम के अनुसार एक देश से दूसरे देश तक लंबी यात्राएं करते हैं। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो और बार हेडेड गूज जैसे अनेक पक्षी भारत में भी प्रवास के दौरान आते हैं। साथियों, प्रवासी पक्षी पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बीज फैलाने, कीटों को नियंत्रित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। लेकिन साथियों, आज प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और शिकार के कारण इन पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है, तो अपने स्तर से जो भी हम इनके लिए कर सकते हैं वो अवश्य करें।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। साथियों, बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, स्कूल बंद हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। जल्दी ही उनकी भी छुट्टी हो जाएंगी गर्मियों की और फिर बच्चे ज्वाइन करेंगे डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस और बहुत सारी हॉबी क्लासेस जो होती हैं उनको ज्वाइन करते हैं। साथियों, इस विषय में हमको चयन कैसी क्लासेस करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, सबकी अपनी अपनी रुचि है, लेकिन एक चीज़ है थिएटर। बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जो वर्कशॉप चलाते हैं, उसमें भी बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने कैसे बोलना है, परफॉर्म करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वॉइस पर कैसे काम करना है, बॉडी लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, और ये एक टीम वर्क होता है जो, तो इसमें बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए कि बच्चे रंगमंच या थिएटर को ज्वाइन क्यों करें सीखने के लिए, हमने बातचीत की लेखक और निर्देशक, ये थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, लव तोमर, इनसे बातचीत की ही। तो आप के लिए जानकारी जुटाने के लिए कि क्यों ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये बातचीत। लव तोमर जी, नमस्कार, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है जी, बताइए
0: जी। लव तोमर जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल बच्चों की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं और बच्चे फ्री हो गए हैं, स्कूलों की छुट्टियां

0: हो गई हैं, कुछ बच्चों की एग्जाम चल रहे हैं और छुट्टियां होने को हैं। इसके बाद में जो छोटे बच्चे हैं हॉबी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं। जैसे आप रंगमंच के क्षेत्र से आते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए रंगमंच का क्षेत्र कैसा है हॉबी क्लासेस के लिए, या इसमें रंगमंच में बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं थिएटर में।
1: थिएटर, जैसे आपने जिक्र किया कि डांस क्लासेस या और अलग अलग क्लासेस जितनी भी होती हैं
0: जी
1: वो अच्छी हैं, मतलब वो सब बच्चों की ग्रोथ के लिए है। लेकिन एक तो थोड़ा समय बदल रहा है और हम लोगों को जो थिएटर क्लासेस हैं वो बच्चों के सबसे ज्यादा विकास करती है कल्पना शक्ति का
0: जी
1: और आंतरिक शक्ति का। लोगों से बात करने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, जो
0: जी
1: कॉन्फिडेंस चाहिए, सबसे ज्यादा काम थिएटर उस चीज पर करता है। अब क्योंकि मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि जैसे अगर आप कोई बच्चा है और आपने उसको थिएटर में इन किया, या 10-12 बच्चों को किसी क्लास में उनकी वर्कशॉप चल रही है, जैसे कि स्कूल्स को ये लगातार अब करना चाहिए,
0: जी
1: तो वो बच्चे जब किसी एक कहानी को पहले सुनेंगे तो उनकी अपनी कल्पना शक्ति से उनके मन में किरदार बनेंगे, चित्र बनेंगे, समझ रहे हैं आप। उसके अलावा फिर किसी पर्टिकुलर बच्चे को कोई रोल दिया जाएगा या उन सारे बच्चों को भी कुछ ना कुछ रोल दिया जाएगा, तो वो मंच पर जब खड़े होंगे उनके माँ बाप देख रहे होंगे, टीचर देख रहे होंगे, लेकिन उस दौरान जो वो प्ले करके निकलते हैं,
0: जी
1: वो जो स्टेज फियर है जो हम में से बहुत सारे लोग अभी भी इतने बड़े और मच्योर होने के बाद भी महसूस करते हैं,
0: जी
1: वो बचपन से ही उसके अंदर खत्म होगा। मतलब लोगों का आमना सामना करना वो शुरू से ही सीख रहे होंगे थिएटर की
0: जी
1: वजह से, जो
0: जी
1: कि डांस की वजह से भी होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा काम होता है सोचने पर,
0: जी
1: जीवन को समझने पर, जो छोटे छोटे बच्चे इमोशनली बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इन सब चीजों पे बहुत काम करता है थिएटर। संवेदनाओं को समझने पर बहुत काम होता है थिएटर का,
0: जी
1: ह्यूमन इमोशन कैसे काम करते हैं, ये अननोइंगली बच्चे अगर शुरू से इन करेंगे तो वो समझेंगे। और मेरे को लगता है ज्यादा काइंड बच्चे पैदा होंगे, ज्यादा काइंड बच्चे ग्रो करेंगे, इस तरह से
0: जी
1: सोसाइटी एक बेहतर तरीके से बनेगी, समझ के साथ बनेगी।
0: जी थिएटर में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे जो बड़े बच्चे हैं या इस क्षेत्र में उनको आनंद आता है, वो चाहते हैं इसमें आगे करियर बनाना, तो उसके लिए क्या संभावनाएं हैं थिएटर में।
1: देखिए, अगर इसको करियर के दो चीजें हैं,
0: जी
1: एक तो लोगों को सबसे पहले एक भ्रम होता है कि थिएटर जाके हम सीधे सिनेमा में जाके हीरो बन जाएंगे,
0: जी
1: तो ये बन जाएंगे, बन सकते हैं, इसकी संभावनाएं पूरी हैं और रास्ता भी शायद ये हो।
0: जी
1: लेकिन थिएटर अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट आर्ट है, बिल्कुल अलग आर्ट है और बिल्कुल ही फर्क चीजें हैं। आपका अभिनेता इसमें ग्रो कर सकता है, आपका निर्देशक इसमें ग्रो कर सकता है, आपके भीतर का जो लेखक है वो ग्रो कर सकता है ना।
0: जी
1: तो थिएटर, यदि आपने, मेरा ये मानना है बहुत निजी अनुभव से, कि यदि आपने पूरे हृदय से किया है, पूरे मन से किया है, क्योंकि थिएटर में पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्पष्ट बात है, और मतलब मुझे लगता है ज्यादातर सभी लोगों को पता भी है,
0: जी
1: लेकिन थिएटर की वजह से आप तक कुछ ऐसे काम जरूर आते हैं, ऐसी संभावनाएं जरूर बनती हैं जिनसे पैसा आप तक आ जाए, लेखन के तौर पर, निर्देशन के तौर पर, इन सारी चीजों के तौर पर। अब बात आती है कि हमारा सिलसिलेवार ढंग से, जैसे कि हम क्लास करते हैं, बाकी सारा सिस्टम बना, वो उस नजरिए से हम जाएं
0: जी
1: तो कैसे हम पैसा बना सकते हैं या कैसे करियर की संभावनाएं हैं। BNA है हमारे यहाँ, भारतेंदु नाट्य अकेदमी,
0: जी
1: या आपका अब NSD ने भी समझ लिए, बहुत सारी जगहों पर, केवल दिल्ली में केंद्र नहीं रहा है, बाकी बहुत सारी जगहों पे भी एडमिशन्स होते हैं। अब केवल 26 सीटें आप मान के मत चलिए, बहुत सारी सीट्स होती हैं। NSD अगर जाके क्लियर कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। आप वर्कशॉप देते हो बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े स्कूल्स में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी बहुत सारी जॉब्स आपको ऑफर होना शुरू हो जाती हैं। करियर के लिहाज से बहुत बहुत बड़ा स्कोप है, और आने वाले समय में, ये बात मैं इस समय बहुत फर्क कह रहा हूँ, पता नहीं इससे लोग कितना सहमत होंगे, लेकिन आज सहमत नहीं है तो भविष्य में जरूर होंगे, कि इस समय आप सबका स्क्रीन एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम सबका। हम
0: जी
1: लगातार OTTs पे फिल्में देख रहे हैं, हम लगातार मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा मन, हम सबका मन, जो मनोरंजन से, इस तरह के मनोरंजन से जरूर उबेगा। तब इंसान को जरूरत होगी एक ऐसी कला की जो सामने प्रदर्शन हो रहा हो, जिसमें वो लाइव इंसान से कनेक्ट कर सके, क्योंकि AI आ गया है। ये
0: जी
1: जो स्क्रीन एंटरटेनमेंट है ये भी अब AI जगह ले लेगा सारा। तब आपको, इंसान को जरूरत होगी कि इंसान सामने इस तरह से कुछ ऐसा करे कि वो हमें हंसाए, वो हमें रुलाए। तो आने वाले 5 सालों में मैं समझता हूँ कि थिएटर बहुत भयंकर तरीके से बूम करेगा, खूब सारा इसमें करियर की संभावनाएं बनने वाली हैं। तो जिन बच्चों को इसमें आना है जरूर उनके माता-पिता आने दें,
0: जी
1: और जब ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा संभावनाएं बनेंगी।
0: जी लखतुमर जी, आपसे बात करके लगा कि जैसे थिएटर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है,
1: जी
0: मतलब अभी तक हम समझते थे कि थिएटर बस गए, आपको एक रोल दिया गया, आपने नाटक किया और बस खत्म, लेकिन आपने इतनी सारी बातें बताई हैं तो हमें लग रहा है ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे हमने बात की थी शुरू छोटे बच्चों की वर्कशॉप वगैरह या

0: हॉबी क्लासेस से लेके, तो इसमें क्या कोई समय सीमा, मतलब उम्र की कोई सीमा होती है क्या बच्चों को, कि हमें इस एज के बच्चों को इसमें लाना चाहिए या इस एज के बाद इसमें आ सकते हैं?
1: देखिए, हम लोग ना एक ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं जिसका जो शिक्षा पद्धति है, जो
0: जी
1: वो हमारे आने से पहले अंग्रेज डिजाइन करके चले गए सर,
0: जी
1: है ना। तो हम उसको ही नोइंगली या अनोइंगली फॉलो कर रहे हैं।
0: जी
1: लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप जानेंगे कि थिएटर बहुत शुरू से शुरू हो जाता था। आपने अपनी नानी से जरूर कहानियां सुनी होंगी,
0: बिल्कुल
1: और हमारे श्रोताओं में जो कोई भी सुन रहे हैं, हमने नानी, दादी, बाबा, नाना, चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा, किसी ना किसी से कहानियां जरूर सुनी होंगी।
0: जी
1: तो उन कहानियों का सुनना और आपके मन में उन कल्पनाओं का बनना, आपका समझ लीजिए आपका थिएटर वहां से शुरू हो जाता है।
0: जी
1: तो किसी बच्चे को कोई खास एज का फर्क नहीं है,
0: जी जी
1: ये तो हमको शुरू से ही बच्चों को करना चाहिए ताकि उनकी अपनी समझ पैदा हो
0: कल्पना शक्ति पैदा
1: और
0: हो उनकी।
1: कल्पना शक्ति पैदा हो, है
0: जी
1: ना, सोचने समझने की शक्ति पैदा हो।
0: जी
1: और रही बात कि किस उम्र तक किया जा सकता है, तो इसका भी सबसे सुंदर बात है, कला का कोई वैसा नहीं है। कला कभी भी, मतलब जो लोग रिटायरमेंट ले लिया है, जिन अंकल लोगों ने,
0: जी
1: या जो रिटायर, वो भी आराम से अपने इस समय के लिए इसको जरूर एक्सप्लोर करें। केवल बच्चों तक ही थिएटर को क्यों सीमित रखा जाए,
0: जी
1: जीने की नई उम्मीद देता है, रस देता है। आप मंच पर जब खड़े होते हैं, आप कुछ डायलॉग बोलते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, और उसके बाद जब तालियां मिलती हैं, तो मुझे लगता है इस तरह के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी करना चाहिए। केवल बच्चों तक थिएटर के बारे में बात ना की जाए, ये तो हम में से हर एक को समय निकाल कर जरूर जुड़ना चाहिए। ये केवल करियर के लिहाज से नहीं, आपके अंदर की आत्मिक लिहाज के लिए, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपकी सोच समझ कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए थिएटर कमाल की चीज है।
0: तो मर्जी, आपने बहुत सुंदर और विस्तार से हमको थिएटर के बारे में जानकारी दी, और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को जरूर प्रेरित करेंगे थिएटर की तरफ, क्योंकि ये आपका
1: जरूर
0: पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा और बहुत
1: जी,
0: सारी चीजों को बच्चों को ग्रो करने में मदद करेगा। तो आपने इतना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। साथियों, अब बारी है समाचार पत्र से बरेली की कुछ विशेष खबरें लेने का।

विशेष खबरें लेने का। साथियों, बरेली के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि 7 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत की भी यात्रा कराएगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। साथियों, नाथ नगरी बरेली के लोगों की 7 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा आसान हो जाएगी। योग नगरी ऋषिकेश से चलने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें बरेली से होकर गुजरेंगी। 7 ज्योतिर्लिंग के लिए ट्रेन 12 जून और दक्षिण भारत के लिए ट्रेन 29 जून को चलेगी। ट्रेन में 750 सीटें होंगी, जिनमें 7 स्लीपर, 3 थर्ड एसी और 1 सेकेंड एसी का कोच होगा। साथियों, शहर में आवारा पशुओं की बहुत समस्या है, तो इसके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब आवारा पशुओं के लिए बनेगा शेल्टर होम। साथियों, शहर में खूंखार कुत्तों का आतंक झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने 15,000 वर्ग मीटर में कुत्तों का शेल्टर होम बनाने का निर्णय लिया है, तो इनसे भी निजात मिलेगी, जो बरेली के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, श्रुति के गाए इसी लोकगीत के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

दिल में उतरती आवाज अरिजीत सिंह की, इनकी गायकी का अंदाज भी अलग है। गदर 2 फिल्म का गाना आपने सुना, सईद कादरी के बोल थे, मिथुन का संगीत, और अब एक छोटा सा अंतराल।

ये छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम फिर से हाजिर हो गए चित्रलोक कार्यक्रम में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, आज है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसी

उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। आपने गोरा, चुखेरवाली, घरे बाहर जैसे कई उपन्यास लिखे। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है साथियों, जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास, नाटक या गीत। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। साल 1913 में उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।

0: परिणीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थीं, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का मीठा संगीत और इसमें बात थी पीयू बोले, बहुत ही प्यारा गाना था ये। साथियों, ये पक्षी, इनकी परवाज, इनकी चहचहाहट, इनका सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। सच मानिए, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारिए ना, जिंदगी में चारों ओर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब एक संदेश की ओर बढ़ जाते हैं।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

जावेद अली की आवाज, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र मिश्रा का नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं बरेली के फोकस पैथलैब फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर से जुड़ा है, गर्मी, और गर्मी में अपनी बॉडी को कैसे कूल रखें। आप सब फील कर रहे होंगे थकान, कभी ना कभी फील करते हैं थकान, चक्कर, प्यास ज्यादा लगना या कभी कभी इरिटेबल होना जब गर्मी ज्यादा होती है। चाहे जरूरी नहीं है कि आप बाइक पे जा रहे हो तभी फील हो, आप घर की छत पे खड़े हैं तो, या कहीं वॉक कर रहे हैं या अपनी इवनिंग वॉक में गए हैं या मॉर्निंग वॉक में गए हैं तो कभी आपको लग रहा है कि थकान हो रही है ज्यादा या हल्का सा डिजीनेस हो रही है जो कि अनयूजुअल है आपके लिए, या थोड़ी सी प्यास ज्यादा लग रही है या थोड़ा सा आप इरिटेबल हो रहे हैं और हम सोचते हैं बस गर्मी है ठीक हो जाएगा। गर्मी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं होती, कभी कभी डेंजरस भी होती है। इसके लिए आज का प्रोग्राम बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब जो आपको शायद थोड़ी बहुत भी हेल्प करेगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा काम हो गया। आपको क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और कैसे अपनी बॉडी को नेचुरली कूल रखें। दोस्तों, जब बाहर टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी को अपना टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ता है कि वो भी मेंटेन करिए अपने आप को कि ज्यादा गर्म ना हो जाए। अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी को एडजस्टमेंट करना पड़ता है कुछ, तो कैसे करती है वो? या तो पसीना आता है हमको उसमें, जैसे गर्मी होती है तो पसीना आता है, उससे वो हम अपना टेम्परेचर रेगुलेट करती है बॉडी, और बॉडी सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्किन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम पानी कम पीते हैं या हमारे यहाँ सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, या हमने बहुत हैवी खाना खा रहे हैं मतलब गर्मियों में, तब हमारा कुछ बॉडी ओवर हीट

0: होने लगती है, और फिर आता है वीकनेस, हेडेक होना, सर दर्द होना, थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो जाना, या कभी हीट एग्जॉस्ट हो जाना। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। लेकिन सिर्फ पानी पीने से हाइड्रेशन नहीं होता कि बस पानी पिया और हाइड्रेट हो गए। सही तरीके से हाइड्रेशन करना ज़रूरी है। पहली बात है कितना पानी पीना चाहिए। देखिए जिस हिसाब से अपने बरेली में गर्मी पड़ती है, मतलब कम से कम 2.5 से 3 लीटर, जिसको आप कह सकते हो 10 से 12 ग्लास पानी दिन भर में आपको पीना चाहिए गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में मेरा मतलब है जैसे अभी इस बार अप्रैल में जल्दी गर्मी पड़ गई, तो अप्रैल मई जून इसमें आपको कम से कम 3 लीटर तक पानी, आप 2.5-3 लीटर पीना चाहिए। ये नहीं कि प्यास लगे तभी पानी पिए। एक रेगुलर सा रूटीन बना लीजिए कि मतलब मुझे हर 1-1.5 घंटे में कुछ थोड़ा पानी पीना है, तो एक बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे काम में व्यस्त हैं तो हमें प्यास ही नहीं लगती। हमें प्यास तो लग रही होती है लेकिन हमें फील नहीं होता कि प्यास हो रही है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं लगती है प्यास कम, तो एक आदत बनाइए अपने, जैसे कि कहीं बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या कार में बैठे हैं, या घर में बैठे हैं, तो एक ग्लास में पानी रख लीजिए, है ना, ढक के रख लीजिए उसको, या बॉटल में रख लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उसको करिए। सबसे बढ़िया समर ड्रिंक्स क्या है, बेस्ट समर ड्रिंक्स क्या है? नींबू पानी, सिंपल है, नमक डाला जरा सा, हल्की सी चीनी डाली, है ना, बहुत जरा सी, है ना, और हनी भी ले सकते हैं साथ में, वरना चीनी डालेंगे बेटर है, और साथ में नींबू निचोड़ा, रिफ्रेशिंग भी होती है, टेस्टी भी होती है, और हर जगह बन जाती है आसानी से। दूसरी चीज जैसे कि कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे रहते हैं। फिर सबसे अच्छी चीज छाछ, जो मेरी फेवरेट है, बटर मिल्क, छाछ बोलते हैं, है ना, दही को आपने बढ़िया तरीके से फेटा, खूब फेटा, है ना, छाछ बन जाता है। तो उसमें आपने थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला, है ना, और कुछ पुदीना डाल दिया, है ना, थोड़ा जीरा डाल दिया, है ना, और भी बहुत तरीके होते हैं बनाने के, बनाया उसको पिया, रोज पीजिए सुबह, है ना, अपने ब्रेकफास्ट में। फिर जो एक हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है सत्तू, जिसको बोलते हैं सत्तू ड्रिंक, वो पी सकते हैं आप। फिर हमारे यहाँ आम की ड्रिंक्स बनती हैं, कच्चे आम की बनती हैं, है ना, वो लीजिए,
1: पन्ना कहते हैं,
0: हाँ पन्ना, पन्ना लीजिए। पन्ने बनाने के बहुत तरीके हैं, लोग कुछ कुछ खट्टा मीठा बनाते हैं, कुछ लोग सादा बनाते हैं। फिर बेल का शरबत है, कितना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहाँ सब नेचुरल चीज अवेलेबल है, है ना, ये चीजें लीजिए, ये सब नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट देते हैं और पेट को भी हल्का रखते हैं। हाँ, जो चीजें अवॉइड करने की हैं वो है कोल्ड ड्रिंक, जिसको हम जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो हम लोग पीते हैं, मतलब कहीं भी मिल जाती हैं, या हमने बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं, कभी कुछ लोग कोल्ड कॉफी पी रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, ये सब चीजें अवॉइड करिए। एक चीज उसमें ऐड करना रहेगा कि हम, आप जूसेस भी ले सकते हैं, जैसे कि आप तरबूज का जूस ले लिया, या कोई और जूस, आपको मौसमी का जूस अच्छा लग रहा है उसमें हल्का सा नमक वगैरह डाल के ले सकते हैं, है ना, वैसे चीजें भी ले सकते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ज्यादा चाय कॉफी अवॉइड करिए। उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिलता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक में खूब ठंडी है, फ्रिज की ठंडी है, या बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफी आप पी रहे हैं, तो आपको टेम्परेरी तो रिलीफ मिलेगा कि भैया ठंडा ठंडा पेट में जा रहा है, गले से निकलता हुआ जा रहा है, बड़ा अच्छा सा लगता है ठंडा ठंडा कूल कूल, लेकिन वो उससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है इनडायरेक्टली, क्योंकि उससे हमारी यूरिनेशन बढ़ता है, उससे हमारा, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनसे यूरिन ज्यादा लगता है कंपेटिवली कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सेस टी कॉफी से, तो उससे क्या है कि फिर वो हमें डिहाइड्रेट करता है लॉन्ग टर्म में, तो इसलिए इनको अवॉइड करिए। जब बहुत गर्मी हो तो कभी कभी ले सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सेस में अवॉइड करिए। फिर अब हम बात करते हैं एक सिंपल रूल की, कि ये समर्स में क्या करना चाहिए। एक तो लाइट खाइए, राइट खाइए और टाइमली खाइए। मैं रिपीट करूंगा, लाइट खाइए, राइट खाइए और टाइमली खाइए। हमें डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, एक तो वाटर रिच फ्रूट्स जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज हो गया हमारा, मस्क मेलन, खरबूजा हो गया, ककंबर हो गया, खीरा हो गया, ना, इन सब चीजों को इंक्लूड करिए डाइट में। फिर हरी सब्जियां हैं, दही जरूर खाइए, है ना, दोपहर में दही जरूर लीजिए। सबसे बढ़िया दाल लीजिए, खिचड़ी खाइए, है ना, राइस वाली चीजें हैं, तो ये बहुत सूदिंग रहती हैं हर तरीके से। फ्रूट्स को जैसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं फल कब खाएं, तो फल देखिए बेस्ट तो टाइम मेरे हिसाब से है कि आप दोपहर में लीजिए, है ना, लंच के टाइम पे ले लीजिए, है ना, और सुबह मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, लेकिन इवनिंग्स में ज़्यादातर फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, है ना, तो मॉर्निंग में या आफ्टरनून में लीजिए। और जैसे आप लंच में फ्रूट्स खा रहे हैं और आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, आपके घर से टिफिन आता है, तो उसे कट फ्रूट्स मत मंगवाइए, कटवा के मत मंगवाइए, साबुत फ्रूट्स मंगवाइए, उसको या तो ऐसे ही खा लीजिए, मतलब भी काट के खाइए, ये नहीं कि उसको घर से काट के मंगवाए, उससे खराब हो जाता है फ्रूट, वो उसकी सारी गुणवत्ता खराब हो सकती है, हो सकता है कि वो खराब भी हो जाए, तो काट के फ्रूट्स मत लाइए अपने लंच बॉक्स में। समर में डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो हैवी खाना बॉडी को और हीट करता है ना, गर्माहट पैदा करता है बॉडी में। अब वो चीजें जो गर्मी में प्रॉब्लम बढ़ाती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसे ज्यादा क्या है, जो फ्राइड फूड, तला हुआ खाना, है ना, पकौड़ी खा रहा है आदमी, या कुछ और फ्राइड फूड खा रहा है, या बहुत स्पाइसी मतलब मसालेदार खाना खा रहा है ना, या कोई नॉनवेज खाता है तो बहुत ज्यादा हैवी नॉन वेज, मतलब एक्स्ट्रा खा रहा है नॉन वेज, है ना, बेकरी के आइटम्स हैं जैसे बिस्किट्स हैं जो हैवी होते हैं, या केक्स होते हैं जो बेकरी वाले प्रॉपर होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करने से मेरा मतलब है इनके लिए बॉडी

0: को पचाने के लिए या बॉडी को इनको बाहर बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी चीज वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा मांग रही है वो हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली हीट करेगी। तो ये सब चीजें हमें मतलब ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लें गर्मियों में खासतौर से। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेस शुगर। अगर ज्यादा चीनी खा रहे हैं, एक्स्ट्रा शुगर खा रहे हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली हमको डिहाइड्रेट करेगी और फटीग करेगी, तो वो भी हमें अवॉइड करनी है। जो चीजें हमको टेस्टी लगती हैं, जरूरी नहीं है वो बॉडी को सूट करें। अब हम बात करते हैं कि डाइट के साथ एक लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। डाइट की बात हो गई लगभग कि क्या खाएं क्या ना खाएं, लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। दोपहर में जो मतलब पीक टाइम होता है 12 बजे सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो 12 से 2 का जो टाइम है उस समय अवॉइड करिए कहीं भी निकलना 12 से 2 का टाइम पर्टिकुलरली। अगर ज्यादा कर सकते हैं अवॉइड तो देखिए बेस्ट है 12 से 4 मत निकलिए बाहर, लेकिन 12 से 2 तो अवॉइड ही करना चाहिए, है ना। उस समय थोड़ा सा टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, लू वगैरह भी ज्यादा चलती है, और अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो टोपी लगाइए, कैप लगाइए, सिंपल एक हुड वाली, जिससे कि एक डायरेक्टली सन ना पड़े माथे पे, है ना। फिर सनग्लासेस लगाइए। सनग्लासेस सिर्फ फैशनेबल नहीं होते कि आप लगा रहे हो तो यू आर लुकिंग गुड, सनग्लासेस आपकी प्रोटेक्ट करते हैं आईज को, ड्राइनेस भी आंखों की बचाते हैं, और वैसे भी इन जनरल आपकी जो धूप बचाते हैं। और एक कैरी अपने साथ कैरी करिए छोटी बॉटल जिसमें कि पानी हो, और उसमें आप ये कर सकते हो हल्का नमक हल्का चीनी डाल के आप नींबू पानी टाइप का बना सकते हो। नींबू पानी आप पियोगे ना गर्मी में तो पीते ही होंगे आप सब लोग, तो मतलब अच्छा लगता है वो, तो उसको कैरी करिए, है ना।
1: तो साथ में रखते हैं सर।
0: हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप आइडियल हैं
1: जी जी।
0: तो बात में जो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज जैसे लोग मैं कहता हूँ हमसे वॉक करना चाहिए या वर्जिश करनी चाहिए, तो वो अर्ली मॉर्निंग करिए, जितनी अर्ली मॉर्निंग करेंगे उतना अच्छा है गर्मियों में, या थोड़ा इवनिंग में करिए थोड़ा धूप निकल जाए, है ना। ये नहीं कि गर्मी में लगे हुए हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि लेट मॉर्निंग शुरू करते हैं अपनी और एसी चला लिया घर में और एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है एसी है आपके पास आप यूज कर रहे हैं, देखिए बेटर वही चीज है जो नेचुरल है, तो बेटर है कि एक्सरसाइज टाइम पे एसी चलाइए ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग ज्यादा एक्सरसाइज करिए, कि आपको एसी की जरूरत कम से कम पड़े या ना पड़े। फिर हम बात करते हैं रेस्ट की, कि हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, वो तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है कि 7-8 घंटे मतलब दिन में सोना ही चाहिए एक दिन में पूरे। फिर

0: तो और बात में जो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज जैसे लोग मैं कहता हूँ हमसे वॉक करना चाहिए या वर्जिश करनी चाहिए, तो वो अर्ली मॉर्निंग करिए ना, जितनी अर्ली मॉर्निंग करेंगे उतना अच्छा है गर्मियों में, या थोड़ा इवनिंग में करिए, थोड़ा धूप निकल जाए ना, ये नहीं कि गर्मी में लगे हुए हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि लेट मॉर्निंग शुरू करते हैं अपनी और एसी चला लिया घर में और एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है एसी है आपके पास अब यूज कर रहे हैं, देखिए बेटर वही चीज़ है जो नेचुरल है, तो बेटर है कि एक्सरसाइज टाइम पे एसी चलाइए ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग ज्यादा एक्सरसाइज करिए कि आपको एसी की जरूरत कम से कम पड़े या ना पड़े। फिर हम बात करते हैं रेस्ट की, कि हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, वो तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है कि 7-8 घंटे मतलब दिन में सोना ही चाहिए एक दिन में पूरे। फिर ज्यादा एग्जर्शन ना करिए, गर्मियों में आपकी बॉडी को ओवर एग्जर्ट करेंगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी, तो वो अवॉइड करिए। गर्मी में बॉडी को चैलेंज मत करिए, सपोर्ट करिए ज्यादा पानी की चीजें लेकर या कम स्पाइसी चीज खाकर। अब हम फोकस करते हैं स्पेशल ग्रुप लोगों में, जो कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं या लोग जो वर्किंग है। बच्चों में क्या है, बच्चे जल्दी क्विकली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, कि बच्चों के अंदर बच्चे तो उछल कूद करते ही रहते हैं, ऐसे है नहीं कि मांग के पानी पियेंगे वो, है ना। तो बच्चों को जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो एक वाटर बॉटल सब लोग देते ही हैं, तो उनको जब वो वापस आए तो ये भी चेक करें उनकी वाटर बॉटल खत्म हुई या नहीं।
1: छोटे बच्चे मम मम भी कहते हैं सर,
0: वो तो बहुत छोटे हो गए अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो स्कूल गोइंग है, वो बच्चे उनको सब पेरेंट्स बच्चों की बॉटल रखते हैं अपने बैग में, है ना बच्चे कुछ लोग, लेकिन जब वो वापस आए तो चेक करेंगे उनकी पानी बॉटल खत्म हुई या नहीं हुई है, है ना। बच्चे पानी नहीं पीते हैं, वो इतने खेल में मस्त रहते हैं या पढ़ाई में मशगूल रहते हैं कि वो उनको याद ही नहीं मालूम है कि पी रहे नहीं पी रहे, तो उसकी वो जल्दी क्विकली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अब स्कूल से वापस आ रहे हैं तो मजबूरी है, स्कूल का टाइम तभी छुट्टी का है, लेकिन वैसे लिमिटेड रखिए। अब हम बात करते हैं बुजुर्ग लोगों की, बूढ़े लोगों की
1: जी।
0: उनको एक नेचुरली एज के साथ जो प्यास की सेंसेशन है, थर्स्ट की सेंसेशन है, कम हो जाती है, उन्हें रिमाइंड कराना पड़ जाता है कि भाई पानी पीजिए। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जहां पे वो बैठे हैं उनका जहां पे भी बैठने का जगह है या बिस्तर के पास है, एक बॉटल रखिए। और आप कुछ लोग जैसे मैंने अब देखा कि वापस हम लोग हिंदुस्तानी लोग अपनी सभ्यता की तरफ आ रहे हैं, तो अब बहुत घरों में अब घड़े देखने को मिल रहे हैं ना। मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि फ्रिज का, लोग क्या करते हैं फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं, फ्रिज का ठंडा पानी ठीक है मजबूरी है तो पी लीजिए, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। आप घड़ा रखिए ना, घड़े का जो आप पानी पियेंगे तो आपको एक अलग सा रिफ्रेशिंग फील होगा, उसमें एक स्मेल भी होती है एक अच्छी सी खुशबू होती है, बहुत अच्छी लगती है और सौंधी और वो आपको ज्यादा रिफ्रेशिंग लगती है, तो वो चीज़ें यूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप घर में घड़ा यूज कर रहे हैं तो आप मतलब थोड़े मतलब कम फैशनेबल लगेंगे, है ना। ये सब चीजें जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना नेचर आपको ज्यादा स्वस्थ रखेगा। तो बड़े लोगों में स्पेशली ध्यान रखना है। फिर जो वर्किंग लोग हैं जो इधर काम कर रहे हैं बिजी हैं, उनको भी वो कंटिन्यूअस एसी में है, तो एसी का मतलब ये नहीं है कि एसी में रहेंगे तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, कम पानी पीना है, पानी उनको भी पीना है ना, ध्यान रखें। फिर अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हो, क्या वार्निंग साइंस हो कि उनको हम इग्नोर नहीं करना है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस जिनको हम इग्नोर नहीं करना है, जैसे कि थोड़ा बहुत डिजीनेस हो रही है, चक्कर से हो रहे हैं, या थोड़ी सी वीकनेस भी हो रही है मान लीजिए, या थोड़ा सा लग रहा है कि नौजिया जिसको हम कहते हैं कि उपकाई ऐसी आ रही है, है ना, या थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है जैसे कि आज मतलब समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो इट कुड बी अर्ली साइंस ऑफ हीट एग्जॉशन, है ना, हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए अगर ऐसा लग रहा है घर पे हैं या कहीं पे हैं, तो सबसे पहले कुछ पी लें, जैसे कि हम मैंने आपको बताया कि आप छाछ पी सकते हैं, या फिर आप शरबत पी सकते हैं कोई, या फिर आप नींबू पानी पी सकते हैं, कोई चीज़ें इलेक्ट्रोल है आपके इलेक्ट्रोल पी सकते हैं, है ना, और फिर आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा भी चक्कर वगैरह आ रहा है, वीकनेस आ रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। या आपको कहीं बहुत जोर से बुखार आ गया और आपको पसीना भी नहीं आ रहा है, है ना, और बेहोशी हो रही है, तो एकदम डॉक्टर के पास जाना है, वेट नहीं करना है, ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई होगा नहीं भगवान करे आपके साथ, लेकिन यू शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए आपके साथ नहीं हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है तो आप उसको बचा तो सकते हैं, जरूर सुनना है कि आपके साथ ही हो, है ना, किसी और के साथ हो रहा है तो हम उससे हमें हमारा फर्ज ये भी है ना, सोसाइटी में कोई पड़ोसी है या कोई दुकान में पड़ोसी है उसका भी हम सपोर्ट करें। तो दोस्तों गर्मी हर साल आती है और हर साल आती रहेगी, है ना, लेकिन हर साल कुछ लोग इसे लाइटली ले लेते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम होती है। ये नहीं है कि आपको पिछले साल प्रॉब्लम नहीं हुई तो इस साल भी नहीं होगी, है ना, हर साल अलग है, आपकी उम्र भी बढ़ रही है, तो हेल्थ सीजनल नहीं होती, डेली डिसीजंस का रिजल्ट होती है। पानी रेगुलरली पीजिए, मतलब एक पानी रेगुलर पियेंगे, लाइट और स्मार्ट डाइट खाएंगे, बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करेंगे। बॉडी कभी भी एकदम आप बीमार नहीं होते हैं, बॉडी आपको कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिग्नल्स देती है कि भाई कि मुझे दिक्कत हो रही है, जैसे पेन है, भगवान ने दर्द जो है ना आपको परेशान करने के लिए बनाया है, दर्द आपको इसलिए बनाया है कि दर्द जो पेन है, पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, दर्द आपको होता है कि भैया कुछ अलार्म है, वो अलार्म

0: कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए दर्द है वो।
1: दर्द आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाया भगवान ने, दर्द इसलिए बनाया प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि भैया अलार्मिंग सिस्टम की कुछ गड़बड़ हो रहा है समझ लो। तो वैसे ही भगवान कुछ ना कुछ तरीके से आपकी बॉडी सिग्नल देती है कहीं ना कहीं से कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है देखो, अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है। फाइनली हम एक बात कहेंगे, ठंडी चीजें खाने से नहीं, सही आदतें अपनाने से बॉडी कूल रहती है। फ्रिज के ठंडा पानी पी लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी निकल गई है ना, अपने आप को हाइड्रेट करना है प्रॉपर तरीके से। गर्मी को इग्नोर मत कीजिए है ना, बिल्कुल इग्नोर मत करिए। हेल्दी रहना मुश्किल नहीं, बस अवेयरनेस चाहिए। तो बस मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा कि आप सबको एक सेफ हेल्दी और कूल कूल समर की शुभकामना है। गर्मी से ये भी मनी कहते हैं गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई, अब तो कहते हैं अब यार जल्दी से बारिश आ जाए। फिर जब बारिश आ जाती है और बारिश आ गई अब यार थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, हम कहीं जा नहीं पा रहे। फिर जब ठंड आ जाती है तो ठंड में परेशान, और जिसे परेशान रहना है वो हमेशा परेशान रहता है ना। तो ये मत सोचिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप सब एक सेफ हेल्दी और कूल समर की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और याद रखिए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए।
2: श्रोताओं, जान है तो जहान है कार्यक्रम में आज मेहमान थे बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD। और अब रविंद्र कुमार मिश्र को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण से बगे कार्यक्रमों से जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।

0: लेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। आज इस कार्यक्रम में अपने विचार रख रही हैं मीनाक्षी अस्थाना जी, जो आकाशवाणी के दीवानी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं।
1: श्रोता नमस्कार, मैं मीनाक्षी अस्थाना हूँ और आकाशवाणी की बचपन से फैन रही हूँ। आकाशवाणी ने अपना 90 वर्षों का ये सफर तमाम उतार चढ़ावों के साथ निश्चित रूप से पूरा किया होगा। मुझे याद है अपने बचपन में भी मैं हमेशा रेडियो की फैन रही हूँ, आकाशवाणी की फैन रही हूँ। इसके अनेकों कार्यक्रम जैसे विविध भारती की उर्दू सर्विस हुआ करती थी, अनेकों प्रकार के रंग महल में नाटक आया करते थे, हवा महल में नाटक आया करते थे, बिना का गीत माला, या यूं कहूं कि मैं आकाशवाणी सुनकर और उससे प्रेरित होकर उत्साहित होकर मुझे एंकरिंग का शौक लगा और एंकरिंग के लिए मुझे अनेकों तरह के मटेरियल सामग्री आकाशवाणी से सुगम रूप से मिल जाया करती थी। बरेली आकाशवाणी ने 1993 से जो अपना सफर शुरू किया है, मैं उस सफर में उनके साथ रही हूँ और आकाशवाणी बरेली के अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें बच्चों का प्रोग्राम है, नन्हे मुन्ने बच्चे आकर अपनी कविताएं सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, घर आंगन नारी संसार की तो मैं बहुत ही फैन हूँ क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारियां सूचनाएं न केवल शहरी स्त्रियों के लिए बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होती हैं। नारी संसार में और घर आंगन में दिए हुए कार्यक्रमों से प्रेरित होकर मैंने अनेकों बार रेसिपी आदि भी ट्राई करी है और उसमें सफल भी रही हूँ। मेरा ये मानना है कि रेडियो एक ऐसा साधन है, आकाशवाणी एक ऐसा साधन है जो कि सबको सुलभ है और इसका लाभ समाज को निरंतर प्राप्त होता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस सफर पर मैं उन तमाम श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ जो इस सफर में हमेशा से उसके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मेरा मानना है कि रेडियो जैसे आकाशवाणी जैसे साधन को हम घर घर तक पहुंचाएं और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए हैं तब से तो आकाशवाणी हर व्यक्ति के हाथ में ही जैसे पहुंच गई है। 90 वर्षों के आकाशवाणी के सफर पर मेरी तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी के को प्रसारित और प्रचारित करने में साथ देने वाले तमाम टेक्नीशियनों को, प्रस्तुतकर्ताओं को मेरी अनेकों अनेक बधाई तथा शुभकामनाएं।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने में मीनाक्षी अस्थाना जी को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स जो हैं हमको मिल चुके हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पेज आकाशवाणी बरेली पर हैं, और आपने अपने पसंद के बहुत सारे गीतों को लिख भेजा है। तो कार्यक्रम का शुरू करते हैं कार्यक्रम को। ये हमारे श्रोता हैं गांव छत्तो मादराणी मातली सिंध से, दानिश अयाज टालपुर, अब्दुल समद अब्दुल कदीर टालपुर। आप हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप हैं सादुल शहर राजस्थान से, रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमढ़ी, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप हैं जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, आप हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। ओखला संगम विहार दिल्ली से हमारे श्रोता रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। कस्बा क्योलड़िया नवाबगंज बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू, चंद्रपाल, उल्फर शर्मा, बबलू, वेदपाल और संजीव गंगवार। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। आप हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। आप हैं सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुरेश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयन बाबू। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से हमारे श्रोता गजानन येले, नवदीप येले, विष्णुदीप और नीलेश येले। आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म फर्ज का ये गीत, जिसको गाया है मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: करता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। आप हैं रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहनी, कमल सहनी, डॉक्टर अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़, गंगानगर शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुमार, रामानंद कुशवाहा और इनके बहुत सारे साथी, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजौरिया और गुड्डू। आप हैं ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमलपरी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से हमारे श्रोता पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, हसन सिक्का। आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा। मोहल्ला शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू और हिना कौसर। आप हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता केशु, रिधान खुराना। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। मन्नू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। पंजाब से भक्कर रेहाना खान, मोहम्मद। और आप हैं शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद अनवर, लोबना और आली अंसारी। सनावत से हमारे श्रोता शेख मूसा मोहसिन, अशोक शर्मा, राजकुमार बोड़ाना। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान और मुस्कान आसिफ, इनके साथ सारे खान अली। आप हैं ग्राम वीरपुर पोस्ट बिलसड़ तहसील अलीगंज एटा से विपिन कुमार शाक के सपना, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, कुमारी सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और इनका समस्त परिवार। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आप हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या, निवेश और नियति कुमारी। कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी, दुविहा नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल।

0: right?
1: नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मेफरा नवाज, बेबी चाहत। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित और ऋतु, मुकेश जगताप। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी और सुहेल हसन अब्बासी। बांडीवाला फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। आप हैं हमारे श्रोता मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना भारती, उमती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता, इनका कमेंट पहले पढ़ा जा चुका है। नाज रेडियो क्लब करेली से हमारे नियमित श्रोता निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुसरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई, इनके साथ पप्पू भाई अंसारी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, संजना परी खड़से, ललित नारायण, गणेश कार्तिक खड़से, आराध्या कुमारी देवी का चौधरी, स्वाति प्रिया चौधरी। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म क्रांति का ये गीत जिसको गाया है महेंद्र कपूर ने।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे। वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं के लिए। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए के संजीव डावे राव। आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र मुरली, खूबचंद वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनौली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं हमारे श्रोता अलखनाथ मंदिर के सामने से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, ईला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप और रमेश चंद्र सैनी। उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लखन पंडरिया छत्तीसगढ़ से। गांव भटनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रिहांश, सृष्टि और इनका पूरा परिवार। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविक सिक्का। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान, लट्टा, इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर और कलीम अंसारी। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। आप हैं गांव गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा, आयशा, उमर अंसारी और समीना अंसारी। बहेड़ी से हमारे श्रोता अंजुम भाई, खालदा बेगम। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। गांव

हौडरा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम अदीम, अब्दुल गनी, गांव जाखुद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा शविस्ता, मोहम्मद असीफ, पलक लुबना और यश मंसूरी। आप हैं जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव ज्योति, गुरमंत कौर और मनु। आप सभी के लिए सुनवाते हैं फिल्म तीन देवियों का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल मजरू के हैं, संगीत SD बर्मन का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं के लिए ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अवान अब्बासी। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद तहसील अलवर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, वंदेवी, आकाश, माहेश्वरी, विनायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ के पास से शाहरुख खान, हाशिम खान, शुएब, अरहम बाबू और किश्वानूर। अडार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। ये हमारे श्रोता परवेज अहमद शुक्लपुरा वाराणसी से। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम पंचायत करेली से महजबी अंसारी और नुसरत फातिमा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूल और पीवी कुलथे। जसपुर उत्तराखंड से हमारे श्रोता रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद अजरा तबस्सुम। रायपुर अनेरी जिला बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी, नौरी अंसारी और आफिया परवीन। पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। आप हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, आशिक हुसैन, अल्ताफ भाई। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हयांश कुमार चंदन। आप हैं हमारे श्रोता मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से। गंज डुंडवारा से हमारे श्रोता मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश और राहुल शर्मा। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन, सावन कुमार, सचिन और शक्ति। आप हैं दहीगांव नादुरा से धोंडू भातुरकर, मंगला, विवेक कुमार, भारती, प्रतीक्षा, कोमल और समाधान भातुरकर। संत नगरी शेगांव से शुभम राउत, कुमार रुद्र राउत, विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से। आप हैं गंज डनवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, कलीम अंसारी, उस्मान अंसारी। ग्राम बपोस हर हरपुर मटकली जिला बरेली, शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान। ये हमारे श्रोता नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, हिब्जा नूरी, नथु नन्ने, असीर अंसारी, अख्तर अंसारी, सूरज मोरे, जाहिर अंसारी, शाकिर। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान। स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप से भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वेवी बेदही जोशी, हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता, अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन आनंद बख्शी का।

मित्रगण, शाही मार्केट सिवहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अराफत अदीब और कादिर चौधरी। कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से। जसपुर रोड दूलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब बेगम साहिबा, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और अलशिफा परवीन। गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा गौरव और चंद्रप्रकाश मौर्य। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षद और खुशी गोस्वामी। आप हैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी, रवि, शिल्पा गर्ग। ग्राम नवागांव मुड़ही पार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू, रुक्मणी साहू, तेजेश्वर साहू और कुशाल साहू। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। आप हैं फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालिनी टिवानशी, वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और इनका समस्त परिवार। विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती चिड़िया, मोताला महाराष्ट्र से। रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। गांव रावड़ जिला करनाल से विनोद लखनपाल। आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहौकर, निर्मला, विशाल नाहौकर। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे श्रोता अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक। कैथल हरियाणा से मधु नायक। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवी दर्द और इनका समस्त परिवार। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, दानिश, आसिफ शेख। गांव टूंकिया तहसील सिंहधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार डाभी, भूपत कुमार डाभी, राधा देवी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाभी। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव, आरव और अर्पिता। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा, नई मिदरीसी, नदीम इदरीसी, असद बाबू। गुजरात पाटन से धीरज बी रवारी। आप हैं जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, शोभा, बबीता, ललिता रानी, नारायण भाऊ। ये हमारे श्रोता बाबूदीन मेरठ कैंट से। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश, सनी भावसार। कस्बा उगैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत, कार्तिक, निर्भय गुप्ता। छबीलपुर गुन्नौर से हरवेश कश्यप, अर्जित, दिव्यांश कश्यप। पुरानी भिलाई तीन पदुम नगर छत्तीसगढ़ से नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शहनवाज अहमद और इनका पूरा परिवार। कस्बा उगैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक और निर्भय गुप्ता। आप सभी के लिए सुनवाते हैं आपकी पसंद पर फिल्म साजन का ये गीत, जिसको गाया है अनुराधा पौडवाल ने। गीत के बोल समीर के, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए, सागर लखना दौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से लाडली जी चौबे रिमझिम और सक्षम चौबे, ये हमारे श्रोता गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। आप हैं ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से, सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभिमीत, भगवान देवी, स्वाति सिंह, तानिया, सर्वेश कश्यप और इनके

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत हमारे आप सभी श्रोताओं के लिए कस्बा उगैती जिला बदायूं से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा साद सिद्दीकी, समद और सादिक सिद्दीकी, आपने कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरुकुरियत और गुरुशब्द सिंह राहुल, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा, आप हैं ग्राम चांदुर बिस्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, ग्राम राजौर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई और राजवीर गवई, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पंवार, अलमास बानो, छोटू पंवार और हसनैन पंवार। ये हमारे श्रोता अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति और सक्षम शाक्य, गांव भोजपुर तथा सहारनपुर से मोहम्मद इंसार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली, वकील अहमद, आप हैं अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत, गुरनूर, हरविंदर और कुलविंदर कौर मान, जिला मुरादाबाद, ग्राम

महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, कमरुल्ला नसीम बेगम, आशा खान, हादिया खान, आफिया मुस्तफा खान, पैराडाइज कॉलोनी, शाहिद, आसिफा, परवीन, अल्फिया, सुफियान, फातिमा, सरोज चौक, अमरावती से। यह हमारे श्रोता उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसामा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता, अनीता और सूरश्री यादव। आप हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीन बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। ये हमारे श्रोता आर्य नगर कोखा भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। आप हैं कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल। ये हमारे श्रोता कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान और फारिया ताहिरा। आप सभी के लिए सुनवाते हैं फिल्म छाया का ये गीत, जिसको गाया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, संगीत निर्देशन सलील चौधरी का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग।

श्रोताओं, अभी आपने सुना एम एस सुब्बा लक्ष्मी और राधा विश्वनाथन के स्वर में ये भजन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और श्रेय घोषाल का गाया ये गीत।

श्रोताओं, पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीकी, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी

जातीय समूह पेशे पद और लिंग के हों इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaawards.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, भूपेंद्र सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम सबरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओं, लोकगीतों के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अनुष्पना सक्सेना का गाया ये लोकगीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं लोकगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं योगेश कुमारी का गाया ये लोकगीत।

0: केंद्र है। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम।
1: सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य शहद उत्पाद एवं निर्यात क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में हनी एक्शन प्लान पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत न्यूजीलैंड उच्चायोग के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर शहद उत्पादन प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रदेश के कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान शहद उत्पादन की गुणवत्ता, निर्यात क्षमता, तकनीकी उन्नयन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन विभाग के 3 कर्मियों को अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी कठोरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विभागीय नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चीन में आयोजित फुटबॉल चैंपियनशिप AFC U17 महिला एशियाई कप में भारत ने कल लेबनान को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 फीफा U17 महिला विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर लेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपकी हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: Stay tuned 100.7 FM रेनबो।
6: धड़कन लखनऊ की।

0: विनय यादव और प्रोग्राम शुरू हो चुका है फैमिली फन, जहां पर हम करने वाले हैं आपके साथ ढेर सारा फन। तो आप तैयार है ना?
1: जी बिल्कुल तैयार रहिएगा
0: हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारा एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है जनाब।

हाँ जी दोस्तों, जिंदगी ऐसे ही झूमती है जब हमारे फैमिली के लोग और हम साथ में होते हैं और एक साथ सब मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। जानते हैं फैमिली एक हमारी ज़िंदगी में एक कुछ या यूँ कहें कि फैमिली एक ऐसी चीज़ें होती है जो एक नियामत है, भगवान की नियामत कहते हैं जिसे, नियामत है भगवान की, जो आप कोई ऐसा शब्द उसके लिए है ही नहीं, बना ही नहीं है, जो ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट में दिया है। और ऐसा गिफ्ट है ना जो आप यकीन मानिए कि ज़िंदगी में वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं। और एहसास तभी होता है जब आप दूर हों। अगर आप साथ में हैं तो यकीन मानिए उनको ऐसे सहेजिए, उनसे ऐसे प्यार करिए, उनसे ऐसे मिलिए जैसे ऊपर वाले की नेमत है, गिफ्ट है।

0: 7FM रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की।
2: फ्रेंड्स 12:23 और 55 सेकंड्स का वक्त, आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त विनय यादव और आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फन। फैमिली में बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ रहते हैं ना, और उन सब की अपनी अलग अहमियत है, चाहे वो दादी बाबा हों, मम्मी पापा हों, भाई बहन हों, चाचा चाची हों, और या फिर और अगर और थोड़ा आगे बढ़ें तो कजिन्स भी। अच्छा, आप कैसे हैं, थोड़ा नॉटी हैं या बहुत समझदार हैं फैमिली में, या फिर बहुत स्टूडियस पढ़ाकू? सब लोग कहते हैं डिस्टर्ब ना करो, पढ़ने दो बच्चे को। खैर ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आपको बताएं कि फैमिली को संजो कर रखना, उसके साथ बंध के रहना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। फैमिली को साथ रखना ये उससे भी बड़ी चीज होती है, और सबकी बातों को मानना।

हाँ, तो कितनी बड़ी चीज है ये आप भी समझते हैं। हमारी जिंदगी में तमाम ऐसे दिन, तमाम ऐसे लम्हे आते हैं जहां पर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम करें तो क्या करें। मम्मी पापा की बात माने या दादी बाबा की बात माने, कजिन हमारे ऐसा कह रहे हैं, चाचा चाची भाई बहन क्या करें। आपको बताएं, वही एक अच्छा फैमिली वाला इंसान होता है जो सबको खुश रख सके। लेकिन बात ही आती है ना कि भैया सबको खुश कैसे रखें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आप भी फैमिली के साथ रहते होंगे और देखते होंगे कि सबको खुश रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आप एक मैच्योर इंसान की तरह जब ट्रीट करेंगे, समझदार बनने की कोशिश करेंगे, बनेंगे धीरे धीरे, आप फैमिली को साथ लेकर चलेंगे और सबको खुश रख सकेंगे।

हाँ जी, हम सभी ना बहुत अच्छे लगते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं। और सबसे जो बड़ा किरदार है फैमिली के अंदर, वो आपको लगता है किसका है? आपको क्या लगता है? मम्मी का या पापा का? हाँ जी, दोनों का, क्योंकि मम्मी पापा को तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना, उनके किरदार को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, घर में मम्मी का होना, माँ का होना किसी मंदिर में जलते दीपक जैसा होता है ना, वो खुद जलकर भी सबके जीवन में उजाला करती है, हम सबके जीवन में। अगर हम बचपन की याद करें, बचपन की याद तो हमेशा आती है। अगर हम अभी बड़े हैं, आप सुन रहे हैं और आपकी भी एज ऐसी ही है, कुछ 90s देखा है आपने, तो अगर अभी भी आप बाहर निकलते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो सबसे पहले मम्मी आपको सारे इंस्ट्रक्शन देकर भेजती हैं कि आपकी सेफ्टी रहे, आप सही सलामत घर वापस आए, आप किसी से भिड़े नहीं, आप सबकी रिस्पेक्ट करें, आपको सब प्यार करें। ऐसी ही उम्मीदें करती है ना माँ, सबकी माँ।

12:39 और 6 सेकंड्स का वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फन। और फ्रेंड्स से जानते हैं कि कहते हैं ना कि फैमिली में सामंजस्य बिठाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि अगर आप अपने किरदार को समझ जाएंगे, हाँ जी आप क्या हैं जो जिस फैमिली में आप हैं ना, और जिन रिश्तों को आप निर्वाह कर रहे हैं, जी रहे हैं, निभा रहे हैं, वहाँ पर आप कैसे पेश आते हैं, कैसे निर्वाह कर रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों पर गौर करेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उनकी अहमियत क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है और उन लोगों के प्रति आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, जब आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे ना, तो जो शिकायतें होती हैं ना हम सभी की कि सबको मैनेज कैसे करें, ये बहुत आसान हो जाएगा, कोशिश करके देखिएगा। खट्टा मीठा ये सारी चीजें तो चलती रहती है ना,

कभी इधर कभी उधर। लेकिन जितना ज़्यादा हम फैमिली के साथ रहेंगे, घुल मिल कर रहेंगे, सबके विचारों को सुनेंगे और अपने विचारों को भी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दबा लेते हैं। दबाइए नहीं, खुद को बहुत ज़्यादा पेश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा भी आप सुनेंगे और फिर कहेंगे तो यकीन मानिए आपकी बात को सुना भी जाएगा और गौर भी किया जाएगा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए
2: सुनिए
4: सुनिए
3: कहिए कहिए ना
2: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
5: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन यूथ वेव,
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।

अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पर जिंदगी भी चलती है ना फैमिली के साथ में, आपने गौर किया है क्या? अगर आप सबके लिए हाजिर हैं, सबकी बात मान रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और होना भी चाहिए। देखिए, आप फैमिली के साथ में हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, तो फिर आप सबके साथ हैं तो सबके प्यारे भी हैं और सबकी बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, सबके लिए हाजिर होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं क्यों हाजिर हूं, मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी काम करना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी अपना करियर देखना है, ठीक है, सबके लिए टाइम होता है, 24 घंटे दिए हैं भगवान ने। बस कहना हम ये चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ हैं तो कभी भी उन चीजों को इग्नोर मत करिए जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपका कोई भी बहाना उन्हें हर्ट कर सकता है, हाँ, या फिर उम्मीद ही ना हो, उनको पता हो कि नहीं आपसे कहना ही बेकार है, और ऐसे बनना भी नहीं चाहिए ना, और ऐसे बनने से चीजें खराब होती हैं और हो सकती हैं। तो जितना ज्यादा हो सके फैमिली के साथ उनको रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ हमें रहना चाहिए, चलना चाहिए, यही जिंदगी है। और आप यकीन माने, आप अगर कोशिश करेंगे ना धीरे धीरे उन चीजों को बदलने की, साथ रहने की, साथ चलने की, उम्मीदों पर, सामने वाले की उम्मीदों पर खरा उतरने की, तो धीरे धीरे आप उन चीजों में ढल जाएंगे, वो चीजें आपके साथ होने लगेंगी, पक्का बता रहे हैं, यकीन मानिए। और कोशिश करके जरूर देखिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ही क्यों करूं,

सबकी रग रग में आप समाने लगेंगे। 12:54 और 37 सेकंड्स का वक्त, और ये वक्त कहता है कि विनय आपसे इजाजत लेगा प्रोग्राम फैमिली फन से, मुलाकात करते हैं लेकर नेक्स्ट प्रोग्राम में न्यूज ब्रेक के उस पार। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपके दिल की आवाज़ 107 FM रेनबो।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं कार्यक्रम अनुरोध गीत में पहला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर, आप हैं बेला डांडी दातागंज से सुमित यादव, महेश बाबू, सौरव, अमित यादव, अखिलेश यादव, आलिम खान और ठाकुर संदीप सिंह। ये पत्र हम तक पहुंचा मोहल्ला तलैया और लजागीर से फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, माजिद, नन्ने, शानू, गैगटा, काशी, धर्मपुर, बरेली से फहीम खान, सिद्दीक अली, साबिया, दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। आप हैं पीर बहोड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम, मेहरुन्निशा, माजिद, नन्ने, शानू, ठिरिया, निजावत खां से आफ्ताब भाई और दानिश। वजीरगंज जिला बदायूं से प्रेम कमल वाष्णेय, सुशीला कमल, प्रभात, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदरचा और ऐश्वर्य कमल वाष्णेय। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज, अबरार हुसैन, बबलू कैप्टन, मस्तान बाबा। आप हैं ड्राइवर कॉलोनी निजामबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम, मुन्ना शेख, बहाव, नूरजहां बानो, बदलापुर मुंबई से बंटी कमांडकर और सुभाष पोतेवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं औरंगाबाद से राजेश ताबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश। आप सभी के लिए सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म याराना का ये गीत, जिसको गाया है किशोर कुमार ने। गीत के बोल अनजान के हैं, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर अलीगंज सरौली रोड ग्राम मोहलिया से हसरत खां, हशमत खां, अजमत खां, डालमिया, रईस बानो, नसरीन और निशा बानो। ये पत्र हम तक पहुंचा विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान का। आप हैं बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढेंगिया, नमन, मुस्कान और कुनाल। इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया है सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप हैं परिमहल कासगंज से आवाज खान, गजाला खान, अल्ताफ नवील, एम असलम सैफी। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है एसपी बालासुब्रमण्यम ने। गीत के बोल राम लक्ष्मण के, संगीत निर्देशन भी राम लक्ष्मण का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर तहसील मीरगंज बरेली से अकरम हुसैन एडवोकेट, कुंवर सेन यदुवंशी, राजीव कुमार उपाध्याय, नुक्ता प्रसाद वर्मा, मैकूलाल वर्मा और रामबाबू शर्मा। आप हैं पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश कौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। इसी गीत को छत्तीसगढ़ ग्राम दतरेंगी से सुनना चाहते हैं।

प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, सुनीता शर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर और अनूप जलोटा ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं निकट बिजलीघर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा। साथ में हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल, ओमेंद्र पुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी और राजीव पुरी गोस्वामी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रामपुरा किसान आन मजरा से मरिया, तहसील मीरगंज बरेली यूपी से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश सोमपाल, शशि कुमार, नत्थूलाल वर्मा, ननकी सिंह, एचएल वर्मा, विवेक और हिमांशी वर्मा। ये पत्र हम तक पहुंचा बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, प्रदीप पाल नमन और विकास का। साथ में हैं संतोष, सूरज, वीरेश सिंह चौहान और सोनू मिश्रा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया है अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस बेगाना और गगनदीप कौर। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। आप हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी। दसरेंगी से भगवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सिलसिला का ये गीत जिसको गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन शिवहरी का।

श्रोताओं, पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीकी, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaawards.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। आप हैं गंज डुंडवारा से मुनव्वर अल्लाह भाई, मिर्जा नसरीन, अरवाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफजाना बेगम, महजवी शेख। अलका डब्बाली से बसंत सिंह चान, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। छंगामल मौर्य, अजय रत्नाकर, कटरा चांद खां, वार्ड नंबर 11, पुराने शहर बरेली से। ये हमारे श्रोता मुकेश दिनकर कासलेकर, विमल, विशाखा, संगीता, नंद किशोर कासलेकर, जामठी, वरुण, अमरावती, महाराष्ट्र से। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, जैतेक, बिरक और मीका बिरक। आप हैं मुस्कान रेडियो क्लब ग्राम करेली से इंतजार भाई अंसारी, रहमान भाई अंसारी, सकाबत भाई, इस्तकार, मोहम्मद दिलशाद, अब्दुल सेन, अख्तर रजा, शराफत और हिना। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म इजाजत का ये गीत जिसको गाया है आशा भोसले ने। गीत के बोल गुलजार के हैं, संगीत निर्देशन राहुल देव परमन का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए आपके अनुरोध पर परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया है छावनी अशरफ खान, पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। आप हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, सोनू, वंश भैया, छोटी कनिष्क और आपके परिवार के सभी लोग। परिमहल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, मोपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, मोवा रायपुर से गोपेंद्र कुमार साहू और मंजू साहू, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन वंशिका दिवाकर। आप हैं भारद्वाज रेडियो श्रोता संघ फूलबाग किला छावनी बरेली से विशन दत्त, भारद्वाज शिवदत्त, गंगादत्त, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी, शिप्रा, नीलम, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर। ये पत्र हम तक पहुंचा ग्राम शंकरपुर, पोस्ट उसावा, जिला बदायूं, तहसील दत्तागंज से। लिखने वाले हमारे श्रोता सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरश्री और गुनगुन यादव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म नगीना का ये गीत, जिसको गाया है मोहम्मद अजीज ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैवन निशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान, आप हैं निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज बरेली से नसीम अहमद अंसारी, मेरा जहां मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशबा भी और मन्नत भी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, खान रेडियो क्लब कस्बा जानोपुर पोस्ट भैरपुरा बरेली से अनीस खान, मुनीस खान, आरिश, मुनाजिर, परवीन, अस्कारा, दरकसा और शाजिया खान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा, हदिया, असमा, सालिया, शोएब, मुस्तवा, रऊफ और शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। आप सभी ने सुनने का अनुरोध किया है फिल्म मासूम का ये गीत जिसको गाया है अनूप घोषाल ने। गीत के बोल गुलजार के हैं, संगीत निर्देशन RD बर्मन का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला, गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू वैद, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा, गोकुल छावनी मठिया किला छावनी बरेली से गिरधारी लाल राठौर, शकुंतला राठौर, कृष्ण कुमार, अर्चना, अंजलि, हिमानी, शिवानी, रीति, रिद्धि राठौर। ये पत्र हम तक पहुंचा गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित का। आप हैं बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जयपुर निशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान, शहीद टेकराम चौक हथबंद करेली से रामाधार ध्रुव, भूपेश कुमार ध्रुव, गड़ैया बरेली से कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम नवेद, रजिया शमसी। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में, गीत के बोल अनजान के, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आगे के कार्यक्रम के लिए आ गए हैं स्टूडियो में श्रृंगार शेखर पाठक।
1: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। और हमारे साथी शिषपाल जी स्टूडियो से विदा ले रहे हैं और मैं आपका साथी श्रृंगार शेखर पाठक स्टूडियो में आ चुका हूं। तो कार्यक्रम है जनमंच, तो करते हैं जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत।

0: नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, ये कार्यक्रम जो जनमंच है, ये आप सभी श्रोताओं में से ही, आप सभी जो आम जनता है उनमें से ही किसी के लिए एक मंच है। आप में से कुछ लोगों को हम बुलाते हैं स्टूडियो में और एक विषय पे हम लोग परिचर्चा करते हैं। इसी सिलसिले में आज जो विषय है बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का विषय है जिंदगी एक रंगमंच। जी हाँ, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार हैं, पात्र हैं। अपने भूमिकाएं हम लोग यहाँ व्यक्त करते हैं, जीते हैं और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ है ये रंगमंच, जिंदगी और रंगमंच का तालमेल कैसा है, इसको कैसे हम और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, कैसे जिंदगी के तमाम रंगों को हम कैनवास पे उकेर सकते हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है दो खास मेहमानों को। एक थिएटर से जुड़े हैं और एक स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स वो भी बेहद खास है, योग। जी हाँ, योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है ये किसी से छुपा नहीं है। और जो रंगमंच है थिएटर, वो कितना रंगीन है, जिंदगी के तमाम रंग किस कदर उसमें उकेरे जाते हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो रंगमंच से हमारे साथ हैं स्पर्श पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और योग प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ हैं अर्जुन सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
1: धन्यवाद सर।
0: तो पहले तो जैसा कि रंगमंच से आप जुड़े हैं स्पर्श, आप कुछ बताइए, जिंदगी एक रंगमंच है कैसे?
1: नमस्कार सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर लाइन है कि जिंदगी एक रंगमंच है, और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि रंगमंच में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, हर किरदारों के अलग अलग काम होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं। ऐसे ही जिंदगी में भी हम सबके अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं। तो रंगमंच और जिंदगी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं।
0: बहुत जुड़े हुए हैं। अपनी जिंदगी में आपने कैसे फील किया इसको?
1: मेरे जिंदगी में सर, जैसे मैं थिएटर करता हूँ, तो थिएटर में मैं एज अ स्पर्श कई सारे किरदार निभाता हूँ, कई सारे पात्र करता हूँ। ऐसे ही जीवन में मैं स्पर्श एज अ बेटा भी हूँ, एज अ स्टूडेंट भी हूँ, एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर भी हूँ, और मैं भाई भी हूँ। तो
0: भाई भी
1: ये
0: हैं।
1: मैं एक इंसान होने के साथ साथ कई सारे व्यक्तित्व, कई सारे किरदार निभा रहा हूँ।
0: कैसे निभा लेते हैं,
1: निभ जाते सर, यही जीवन है
0: निभ जाते हैं,
1: जी।
0: उनके लिए कोशिश कुछ करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। जैसे एक बेटे के रूप में जो आपके दायित्व हैं वो निभाने के लिए दूसरे बेटों को देखते हैं। जैसे आप रंग कोई थिएटर पे कोई एक नाटक करना होता है, जैसे मान लीजिए बावर्ची का है, मान लीजिए तो दूसरे किसी बावर्ची से आप मिलते होंगे, वो कैसे एक्ट करते हैं, वैसे आप एक एनालिसिस करते होंगे।
1: जी
0: तो क्या बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप दूसरों को देखते हैं?
1: जी बिल्कुल। जैसे कि सर आपने कहा कि अगर मैं बावर्ची का किरदार करता हूँ, तो क्योंकि मैं बावर्ची नहीं हूँ, तो उसको सच्चाई से निभाने के लिए मैं एक असली बावर्ची से समझूंगा कि वो किस
0: हाँ,
1: तरह से करता
0: किस
1: है।
0: तरह से करते हैं।
1: ऐसे मैंने सर अपने जीवन में बेटे होने की चीज़ें हैं बहुत सारी, अपने पिता से भी सीखी हैं, अपने बड़े भाई से भी सीखी हैं, तो वो धीरे धीरे सीख सीख के और करते करते वो चीज़ें आ जाती हैं
0: क्या सीखी है?
1: सर। जैसे कि बेटे होने का सबसे बड़ा दायित्व मुझे लगता है वो है पिता के प्रति सम्मान, और उनके किए हुए चीज़ों को, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पिता मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो करते ही ना रहे, वो उन चीज़ों को शुरुआत कर दी उन्होंने, वो ठीक है, उसके बाद उनको मैं आगे ले जाऊँ, उनको बढ़ाऊँ। इस घर में जैसी जिम्मेदारी उनकी है एक घर के चलाने वाले की, वो जिम्मेदारी मैं भी निभाऊँ, तो बस यही सारी चीज़ें हैं सर
0: बिल्कुल, ये अपने आसपास से ही आदमी सीखता
1: जी।
0: है ना। अर्जुन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो जिंदगी एक रंगमंच है, इस पे आपका क्या कहना है, क्या सोच है, क्या अनुभव है आपका?
1: हाँ सर, मेरा अनुभव यही रहेगा कि जैसे स्पर्श जी ने बताया था कि आज का जो समय है वो, इसमें एक व्यक्ति बहुत से किरदार निभा रहा है। प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने हमें इस दुनिया भेजा है, तो वो एक नाटक के तौर पे, एक जिम्मेदारी के तौर पे, क्योंकि हमें वहाँ ये चीज़ निभानी पड़ती है कि एक बेटे का किरदार कैसे निभाना है,

0: एक हस्बैंड का कैसे निभाना है, एक भाई से कैसे निभाना है। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। और आज का यूथ और ये जो चल रहा है, ये देख समय चल रहा है उसके रिगार्डिंग।
1: और आप तो सिखाते भी हैं,
0: जी,
1: मतलब जैसा कि आप, आपका तो प्रोफेशन ही है स्पर्श, यहाँ रंगमंच है, आपको एक थिएटर करना है, एक्ट करना है, और आपके पास अर्जुन जी ये है कि जो बेटे के रूप में या भाई के रूप में जो रोल आपको मिला है, उसके अलावा एक अहम रोल मिला है गुरु का। आप सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, तो इस रोल को कैसे अदा करते हैं आप?
0: मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं अपने जीवन से। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब आप जब तक आप अपने मुकाम तक ना पहुँच जाएं। तो हर व्यक्ति का एक मुकाम होता है, तो मैं अपनी शुरुआत अपने आप से करता हूँ, फिर मैं ये चीज़ अपने परिवार में करता हूँ। ऐसे मैं मैरिड,
1: आपको क्या लगता है क्या मुकाम है? जैसे आपने बात की उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको आपका मुकाम ना मिल जाए, मुकाम क्या है
0: मुकाम एक ही है,
1: आपने?
0: अच्छा
1: हाँ,
0: इंसान बनना।
1: अच्छा इंसान
0: जी,
1: बनना। तो अब सवाल आएगा, अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं?
0: अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा करना, समाज को लेके चलना, परिवार को भी देखना, इन चीजों को लेके सबसे तालमेल बैठाना
1: तालमेल
0: कि जो
1: बैठा।
0: रंगमंच है उसमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ऐसे बेटे का किरदार कैसे निभाना है, पति का
1: इस
0: कैसे निभाना है,
1: जी,
0: एक फादर का कैसे निभाना
1: तो आप कैसे निभाते हैं?
0: है। मैं अपनी दिनचर्या को ऐसे शुरुआत करता हूँ कि एक बेटे के रूप में कि मम्मी पापा की हेल्प करना, वाइफ की हेल्प करना, अपनी बेटी को लेके चलना, ऐसे योगा खुद करना, योगा बच्चों को भी कराना, घर में परिवार में कराना, और जो क्लासेस स्कूल में उनको लेके ये सारी
1: इसमें
0: चीजें कर
1: इसमें
0: रखा।
1: ये जो रोल अदा कर रहे हैं, इसमें योग कैसे भूमिका निभाता है, कितना
0: योग
1: अहम है?
0: ये हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत जरूरी है, ये
1: पहले तो
0: स्वस्थ
1: योग है
0: शरीर।
1: क्या यही बताइए। बहुत सारे लोगों को लगता है योग है बस वो अनुलोम विलोम, है
0: जी
1: ना?
0: जी
1: योग के बारे में एक बार फिर बता दीजिए।
0: योग व्यक्ति को एक स्वस्थ रखने का तरीका है।
1: स्वस्थ रखने का
0: जी,
1: तरीका है
0: आज
1: तो
0: के टाइम में जो व्यक्ति है बहुत सी चीजों से घिरता चला जा रहा है, ओबेसिटी है, हमारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो पनप रही शरीर के अंदर, उल्टा उल्टा खा रहे हैं, सही डाइट नहीं रख रहे हैं, खान पीन उनका बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है। तो मैं तो ये सभी श्रोताओं से यही बोलूंगा कि अपने खाने पीने को बहुत अच्छे से विशेष ध्यान दें, योग करें और स्वस्थ रहें।
1: योग करें और स्वस्थ
0: स्वस्थ
1: रहें। अब योग, वही हम कह रहे हैं कि योग आखिर कैसे किया है, क्या कि क्या जिंदगी को मैनेज करना भी एक योग है?
0: जी, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हमारे पास आज का टाइम ऐसा हो गया है कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि अपने खुद के लिए कि आधे घंटे एक घंटे हम योगा कर सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें।
1: अपने आप को स्वस्थ रखने का
0: हाँ
1: खुद के लिए समय नहीं निकल
0: जी
1: पाते।
0: जी
1: स्पर्श जी, आप क्या कहेंगे, खुद के लिए समय निकाल पाते हैं?
2: हाँ सर, मैं तो निकाल पाता हूँ और मैं मानता हूँ कि खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आपका सवाल बहुत सुंदर था सर कि क्या जीवन को मैनेज करना योग है। तो बिल्कुल है सर, इस भाग दौड़ वाले जीवन में जैसे भैया ने कहा कि अगर हम खुद के लिए समय निकाल पाए, हम परिवार के साथ समय बिता पाए, हम खुद को समझ पाए कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारी क्या चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का योग है।
1: तो कैसे करते हैं आप मैनेज, कैसे अपने फैमिली के साथ कैसे समय बिताते हैं, अच्छा समय?
2: जी सर, मेरे परिवार में एक रूल है कि हम अगर घर पे सारे लोग हैं तो हम शाम का जो खाना होता है वो एक साथ ही खाएंगे,
1: अच्छा।
2: चाहे हम लोग कहीं हों। वो अगर ऐसा होता है थिएटर में, मुझे कभी बहुत लेट हो जाता है तो बात अलग होती है, नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि हम डिनर हमेशा साथ करते हैं। जब परिवार साथ बैठता है उसके बाद हम लोग साथ खाना खाते हैं, बात होती है। पर एक बहुत सुंदर चीज़ मेरे पिताजी ने शुरू करी मेरे परिवार में, जैसे गर्मियों का समय सर होता ना, तो हम लोग खाना पीना खाने के बाद, मान लीजिए कि गर्मियों में तरबूज बहुत खाया जाता है, तो तरबूज काट लिया गया है, रख दिया गया है, और ऐसा नहीं किया कि आपको अलग बांटा है मुझे अलग, नहीं, एक
0: एक
2: जगह एक
0: थाली।
2: साथ काट के सब लोग इस थाली में खा रहे हैं, बातचीत हो
1: अच्छा।
2: रही है, कैसे दिनचर्या रहा, थिएटर में
1: हाँ
2: क्या रहा। तो इस तरह से सर मुझे तो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट और समय मिलता है जिसमें मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, और ये बहुत मेरे परिवार की तरफ से बहुत अच्छा है कि वो मेरी चीज़ों को

0: जानने की बहुत कोशिश करते हैं, और इंसान को जब इंसान अपने आप को समझा पाता है तो बहुत हल्का महसूस करता है। तो बस इस तरह से
1: बिल्कुल, हम अपने आप को जब समझा पाते हैं तो
0: जी।
1: हल्का महसूस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हम खुद को समझ पाते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे अर्जुन जी? क्या हम खुद समझ पाए हैं?
2: नहीं, आज का टाइम ऐसा है कि इंसान अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन दूसरे को समझा रहा है। मैं तो शुरुआत ये करता हूँ कि इंसान को पहले खुद को समझना चाहिए कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए इस वातावरण को लेके कि जो चल रहा है टाइम में, कि इंसान अपने आप को टाइम नहीं दे रहा है, समय निकाल नहीं पा रहा है, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि परिवार में जैसे रंगमंच हमारा प्रोग्राम है ये, तो रंगमंच का एक ही हो, उसमें एक पात्र होते हैं, एक पात्र हो के वो कई कलाकार होते हैं उसमें निभाए जाते हैं। कहीं भी कोई चीज भूल होती है, गलती होती है, तो ये नहीं चीज वहां से खत्म हो जाती है, वहीं से चीज स्टार्ट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए और अपने आप को टाइम देना चाहिए। अपने आप को देंगे टाइम तो आप घर परिवार समाज को दे पाएंगे।
1: इसमें एक बात आती है कि जिंदगी एक रंगमंच है, जैसा कि हमारा इस आज के प्रोग्राम का विषय है, और जिंदगी रंगमंच है। हमें एक न एक रोल मिला हुआ है।
2: जी
1: क्या हमें पता है कि हमें रोल मिला क्या है?
2: नहीं, मैं
1: कभी
2: तो
1: हम लोग, हाँ, कभी आपने सोचा है?
2: नहीं अभी
1: हम
2: तो
1: जिसे हम लोग अपने आप से सवाल करें कि हमें ये जिंदगी क्यों मिली है? ये अगर एक रंगमंच है तो हमारी भूमिका क्या है? क्या हम बेटे के रूप में ही हमारी भूमिका है, या फिर एक पति के रूप में ही भूमिका है? वास्तव में हमारी भूमिका क्या है आपकी नजर में? स्पर्श, हाँ, पहले आप बताइए
2: मैं
1: अर्जुन जी।
2: बताना चाहूंगा सर
1: जी
2: कि हमें ईश्वर ने जब इस दुनिया पे भेजा है तो यही धर्म हमारा ये नहीं कहता कि आप अपने पिता का रोल अदा करिएगा या भाई का करिएगा। हमें एक समाज में, एक हम मनुष्य प्राणी हैं तो हमें एक समाज को भी लेके चलना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात आती है इंसानियत।
1: इंसान की।
2: अगर हम अपने घर तक ही सीमित हैं तो हम एक इंसान कहलाने लायक नहीं है। हमें अपने वातावरण में सभी को लेके चलना पड़ता है, सभी को देखना पड़ता है, तभी हम एक रोल अदा कर पाएंगे, ना कि हम एक घर का ही रोल अदा कर पाए। हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए, दूसरे के प्रति होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, ये चीज।
1: जी हाँ, स्पर्श, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सर, एक थिएटर में बहुत सुंदर चीज होती है, इसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है सर कि जो परिस्थिति घट जाए या जो इन द मोमेंट चीज हो जाए उसको लेके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। तो सर, मुझे तो लगता है कि हमारा जो किरदार इस जीवन में है वो डिफाइन नहीं है,
1: डिफाइन नहीं है,
0: वो बदलता रहता है। हम
1: बिल्कुल।
0: बढ़ते रहते हैं, नई नई परतें आती रहती हैं, तो उस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। बस ये है कि रुकना नहीं है, चलना बहुत जरूरी है, चाहे वो कुछ भी किरदार हो, चाहे जीवन में कुछ भी ऊंचा नीचा जो भी हो।
1: अभी तक आपको जो किरदार अभी आप निभाते आए हैं रंगमंच पे, थिएटर में कई सारे आपने
0: जी
1: प्लेस किए होंगे, कौन से किरदार के सबसे निकट पाते हैं अपने आप?
0: सर, एक किरदार था,
1: हाँ
0: एक कहानी है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर की,
1: हाँ हाँ
0: जसमा ओढ़न,
1: अच्छा
0: एक जाती है ओढ़न,
1: हाँ
0: उड़
1: हाँ
0: जाती है, उसकी कहानी है। उसमें एक उनका सलाहकार होता है राजा का,
1: अच्छा
0: जो कि एक यूनिक होता है, ट्रांसजेंडर,
1: अच्छा अच्छा
0: जी ट्रांसजेंडर होता है। तो उसकी भूमिका थी, उसका नाम बारोट होता है। वो अपने, उसके भीतर ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं। उसकी जो भावना ये है कि वो दूसरों से, वो अपने अंदर जो है उसे मतलब एक्सेप्ट नहीं करता,
1: अच्छा
0: बल्कि जो सामने देख लेता है, जो दूसरे में अच्छी चीज खूबी देख लेता है, बस उसको वैसा बनना चाहता है,
1: अच्छा
0: वैसा
1: अच्छा
0: होना चाहता है,
1: अपनी खूबी नहीं देखता है,
0: नहीं देखता,
1: अपनी अच्छाई नहीं दिखती,
0: नहीं,
1: सामने वाले की दिखती,
0: जी
1: अच्छाई दिखती।
0: अच्छाई,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है उस करेक्टर की, है ना?
0: जी
1: क्योंकि आज के समय में हर कोई दूसरों की बुराई देखता है।
0: जी
1: अच्छा फिर आगे।
0: फिर सर, जब, क्योंकि मैं इस सोशल मीडिया के सबसे हाईएस्ट दौर में बड़ा हो रहा हूं, तो मुझे एहसास हुआ कि सोशली हम लोग ज्यादातर वो करते हैं जो हम नहीं हैं, हम प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। तो मुझे उस करेक्टर की सबसे सुंदर बात ये लगी कि वो पॉजिटिव होने के बाद भी वो लोगों की अच्छाई या लोगों से सीख सीख के वो एक ऐसा बन गया कि वो खुद को भूल गया, वो खुद को नहीं रहा। तो जीवन में अच्छा सीखना, अच्छा मतलब बुरा सीखना जो भी है, बट उसने खुद की संवेदनाएं, खुद की सच्चाई, उसको भुला दिया। तो वो करेक्टर सर मेरे साथ बहुत रहा, क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो हम चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मुझे भी एहसास हुआ कि हम खुद को नहीं जानते, हम समाज से या समाज हमसे क्या चाहता है हम वैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो वो करेक्टर सर मेरे बहुत करीब रहा, उससे मुझे

0: कुछ सीखने को मिला कि खुद को जानना कितना जरूरी है, कितना अहम है।
1: खुद को जानना कितना जरूरी है, बहुत अहम है। आपके क्या विचार हैं अर्जुन जी, आपके जीवन में जैसे योग है, ये कितना आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है अभी भी?
2: मेरे ही जीवन में नहीं, ये मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर प्रभाव डालना चाहिए, और मेरे अंदर तो डालता ही है कि इससे दिनचर्या जो होती है वो बहुत ही अच्छी जाती है, कि अगर हम शुरुआत अच्छी करते हैं तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। आप योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। ऐसे टीचर जब मैं बच्चों के करीब जाता हूँ तो बच्चे मेरे से बड़े खुश रहते हैं, वो इसी रिगार्डिंग खुश रहते हैं कि मैं उन्हें समझा पाता हूँ, उन्हें करा पाता हूँ अच्छे से, कि जिससे मेरा उनसे तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर मैं ना भी जाता हूँ तो हमेशा याद करते हैं कि सर आप क्यों नहीं आए, कि सर आप छुट्टी ना किया करिएगा।
1: सही बात है। और कुछ ऐसे अगर आप योग बताना चाहें, कुछ ऐसे योग के मतलब आसन या फिर तरीके अगर आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को, जिसके जरिए वो अपनी दिनचर्या बेहतर कर सकें और जिंदगी के साथ जिंदगी और अच्छे से मैनेज कर सकें।
2: जैसे आपने बताया कि अच्छी दिनचर्या कर सके, तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हर ये जो जिंदगी है वो बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है, तो इंसान को मैं चाहता हूँ कि उसमें अपना थोड़ा सा टाइम निकालें मॉर्निंग का, और उसमें सबसे पहले अपने आप को कि अपने होने के नाते उसी पे आप वर्क करें और योग को अपनाएं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अपनी फैमिली के साथ रहें, बैठें, छत पे जाएं, सुबह मॉर्निंग में आसन की बात करें, पद्मासन है, चक्रासन है, सूर्य नमस्कार है, मयूरासन है। तो अगर ये आसन करते हैं तो ये ही नहीं, हमारी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है, डाइजेशन होता है वो भी अच्छा रहता है, किडनी लंग्स ये भी स्वस्थ रहेंगे। और यही कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में इंसान अपने आप से बहुत दूर जाता रहा है, वो इसलिए क्योंकि इंसान जो जा रहा है वो सोशल मीडिया में घुस गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक आभासी दुनिया में हम लगातार जी रहे हैं, और जो एक्चुअल हमारी लाइफ है, हम अपने परिवार में भी जैसा कि आपने बताया स्पर्श कि डिनर टाइम पे आप लोग साथ बैठते हैं, और लेकिन कई सारे घरों में परिवारों में ये आलम है कि डिनर टाइम पे साथ बैठे उन्हें कई दिन कई महीने हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या आप देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है या कहें स्मार्टफोन, इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है?
0: बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि सच में बात तो यही है कि हम क्या है ये डिफाइन होता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, और यही सबसे जो बेसिक चीज है वो सोशल मीडिया ने छीन ली है। मैं क्या हूँ अब ये डिफाइन हो रहा है कि मुझसे सोशल मीडिया क्या चाहता है। तो इस वजह से हम जो अपनी भीतर की जो सच्चाई है, अपनी संवेदनाएं है, एम्पैथी है, काइंडनेस है, इनको छोड़ के कुछ और होते जा रहे हैं, और कुछ और होना सर हमें हमेशा अपनों से दूर कर देता है। क्योंकि और मैं तो चाहता हूं कि इंसान हमेशा अपनी अपने आप को सुने सर, जैसे हमने पहले बात की, बेसिक यही है। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि इतनी छोटी उम्र में ये सीख मुझे मेरे गुरुओं ने या मेरे परिवार से मिली कि खुद को सुनना बहुत जरूरी है, खुद की आवाज़ सुनना बहुत जरूरी है, उससे आप अपने और अपनों के करीब रहते हैं
1: जी। और इसमें योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर पर जो ध्यान मेडिटेशन है ना, तो इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं अर्जुन जी, मेडिटेशन के बारे में।
2: मेडिटेशन एक वह क्रिया है जिसमें आप बैठ के शांत मन से आप एकांत में कहीं बैठ के कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारी जो भी बेकार की चीजें होती हैं वो माइंड से स्किप हो जाती हैं, और अच्छे विचार आते हैं उससे। हम कुछ भी नया कर सकते हैं, नई चीजें आती हैं हमारे माइंड में, और ये सीख हमारे घर परिवार हमारे छोटे लोगों को जाती है, क्योंकि पहले के लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ थे। आज के टाइम वो आ गया कि उनका जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा बेकार होता जा रहा है, और टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को। योग, व्यायाम, ये सारी चीज छूटती जा रही है। तो उन्हें ये चाहता हूँ कि अपने छोटों के साथ बड़ों के साथ उन्हें बैठ के ये चीज करनी चाहिए, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, और जो हमारे स्मार्टफोन सोशल मीडिया ये भी दूर रहेगी।
1: ये भी दूर रहेंगी,

0: क्योंकि इनके जरिए पहले तो जो रेडिएशंस हैं वो
1: जी
0: नुकसान
1: जी
0: करते हैं, दूसरे हमारे जो बच्चे हैं कम उम्र में ही उनको स्मार्टफोन पकड़ा दिया जाता है, तो और उससे रेडिएशन जाते हैं, उससे तो नुकसान पहुंचता ही है।
1: जी जी
0: बाकी अब वो एक कुछ कई सारे साइंटिफिक चीज़ें हैं, कई सारे कुछ हार्मोन डोपामाइन रिलीज होता है, इससे उन्हें खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है, महसूस होता है, मिलती नहीं है। और फिर उन्हें कहा जाता है खेलो तो उन्हें बुरा लगता है, स्मार्टफोन छीन लिया जाए तो बुरा लगता है। और जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिंदगी एक रंगमंच है, इसके बारे में तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। वो उन्हीं वर्चुअल मीडिया फील्ड में घूमता रहता है उनका दिमाग। तो ऐसे में क्या स्मार्टफोन को एक लिमिट कर देना चाहिए कि
1: जी सर,
0: हाँ आप 6 बजे के बाद स्मार्टफोन नहीं यूज करना है, बताइए आप अर्जुन जी।
1: जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: हर चीज़ की एक लिमिट होती
0: लिमिट
1: है,
0: होती है।
1: चाहे कोई भी हुआ, बच्चे हुए या बड़े हुए। आज का टाइम है कि फोन की कुछ चीज़ें ऐसी हुई, हम उसके आदी बनते जा रहे हैं। हमें आदी नहीं बनना है, हमें ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। हमें ज़रूरत है, कोई संदेश भेजना है या कोई वीडियो कॉलिंग भी हो रही है, जो चीज़ अच्छी है वो बुरी भी है, तो मैं चाहूँगा लिमिटेड
0: लिमिट
1: होनी
0: कर
1: चाहिए,
0: दिया जाए कि
1: चाहे
0: हाँ
1: बच्चों
0: भाई,
1: के साथ हो या खुद
0: हाँ
1: के साथ,
0: खुद के साथ
1: हमें खुद
0: हो।
1: टाइम देना चाहिए। मैं ऐसे स्पोर्ट टीचर हूँ, योगा टीचर भी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी यही करता हूँ कि अपने भतीजों को, अपनी बच्ची को, के फोन को दूर रख के मैं उसे फील्ड में ले जाता हूँ, मॉर्निंग में, सुबह में, शाम को भी, उससे उनके साथ खुद खेलता हूँ, उन्हें खिलाता भी हूँ। ये कहता हूँ कि बच्चों दूर रहो फोन से। कहने को मैं सच्ची कड़वी सच्चाई बताऊँ कि मेरी जो बच्ची है वो भी फोन की जिद करती है, तो उसे कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो रहा है कुछ चीजों को लेके, तो मैं उसे स्किप करा दे रहा बहुत
0: हाँ,
1: सी
0: चिड़चिड़े
1: चीजों
0: हो
1: को।
0: जाते हैं
1: हाँ
0: बच्चे,
1: हाँ
0: कई बार ये देखा गया है कि चिड़चिड़े हो
1: जिद
0: जाते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: वो खाना खाते समय फोन चाहिए
1: जी
0: या
1: जी
0: फोन नहीं तो टीवी चाहिए,
1: जी
0: तो ये तो वाकई।
1: हाँ
0: और क्या कुछ और करते
1: हाँ
0: हैं आप?
1: हाँ जी। जब मैं स्पोर्ट में गेम कराता हूँ बच्चों को, तो उनका मैंने देखा है, उन्हें मैं चीजें समझाता हूँ, उन्हें डाइट के बारे में बताता हूँ कि आप ये गलत चीजें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो फास्ट फूड को जब आप स्किप करेंगे, मैं कहता हूँ जूस पीजिएगा, ड्राई फ्रूट लीजिएगा, फ्रूट लीजिए, अच्छे फल खाइएगा, ताजी सब्जियां खाइएगा। जो आप फोन में लगे रहते हो वो ये सबसे बेकार की चीजें हैं, आपकी गलत आदतें हैं और जो कभी नहीं जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे योगा करें, गेम खेलें, इसमें फील्ड भी अच्छी मिलेगी आपको, अच्छे लेवल पे भी जाएंगे, फोन आपको कुछ नहीं देगा, गलत चीजें भी सिखाता है थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, और स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे, योगा से जुड़े रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो दिनचर्या होगी बहुत अच्छी रहेगी और रंगमंच में वो एक अच्छी भूमिका भी निभा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, स्पर्श आप क्या कहेंगे, रंगमंच में, जिंदगी के रंगमंच में अच्छी भूमिका निभाने के लिए हमें क्या करना होगा?
1: सर, जिंदगी के रंगमंच में अच्छी भूमिका निभाने के लिए पहले तो हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो बात आई सर, आपने बात की डोपामिन की, आपने स्मार्टफोन की बात की, तो सर वो एक स्टिमुलेशन होता है जो
0: हाँ
1: बहुत जल्दी सोशल मीडिया से दिमाग को मिल जाता है। जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट होता था सर, तो अब भी होता है, तो उसमें लोग रातों रातों भर टेस्ट क्रिकेट देखते थे, उसका एंजॉय करते थे, मजा लेते थे। बट वो धीरे धीरे कम होते होते अब 20 ओवर पे आ गया है, 20 ओवर से 10 ओवर पे आ गया
0: दस
1: है,
0: ओवर
1: क्योंकि
0: पे।
1: वो जल्दी से वो चाहिए मजा। फील्ड में खेलते समय, भागते समय, जैसे अर्जुन भाई ने कहा, जो डोपामीन, जो गोल मारते समय जब बॉल बैट के बीच में आती है और सिक जाता है, वो जो डोपामीन होता है वो रियल डोपामीन है, जो
0: हाँ
1: बॉडी को चला रहा है,
0: बिल्कुल।
1: जो माइंड को और बॉडी को सही तरफ ड्राइव कर रहा है।
0: उसको क्या कर रहे हैं आजकल लोग, स्मार्टफोन या फिर टीवी पे वो उंगलियों से ऐसे बस
1: जी
0: कर दिया, वो स्क्रीन पे ही चला गया सिक्स,
1: चला गया,
0: उतने में खुश हो जा रहे हैं, क्या
1: वो
0: फायदा।
1: शॉर्ट डोपामिन हो गया सर।
0: शॉर्ट डोपामाइन, बस आपकी उंगलियां हिल रही हैं और कुछ नहीं, बाकी तो आप बैठे हुए हैं चुप मार के, दिमाग में एक वर्चुअल बन गया। तो
1: जी
0: इसमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए।
1: जी
0: बाकी और क्या कर सकते हैं हम लोग आपके मुताबिक जिंदगी को मैनेज करने के लिए,
1: जी
0: आपके हिसाब से? अभी तक तो आपने काफी कुछ बताया,
1: जी
0: आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे सभी साथियों को जो युवा हैं?
1: सर, मैं थिएटर के थ्रू एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे मैं रंगमंच करता हूँ, तो अगर मैं कोई करेक्टर निभा रहा होता हूँ, तो वो करेक्टर अगर उतनी सच्चाई से नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि एक इंसान केवल शब्द बोल रहा है। तो पहली चीज़ तो हमारी अपनी सच्चाई, खुद के प्रति ईमानदारी,
0: ईमानदारी।
1: और दूसरा बाकी सारी चीज़ें, जैसे थिएटर केवल एक्टर से और डायलॉग से नहीं बनता, उसमें सेट्स, लाइट्स, परफॉर्मिंग एक्टर क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या घट रहा है, ये सब

0: चीज़ें होती हैं। और सर मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लाइफ को बेटर बनाने के लिए। मैं भी कभी कभी आगे पीछे चीज़ें हो जाती है, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मेरा मैसेज बस यही है कि खुद को जानो, खुद को समझो, अपने प्रति ईमानदार रहो, परिवार के साथ समय दो, और थोड़ा ठहरो। जल्दी से भागने वाली चीज़ें स्टेल हो जाती हैं, ठहरने वाली चीज़ें हमेशा अच्छी रहती हैं और उनको समझ पाते हो, देख पाते हो।
1: जी बिल्कुल, आपका आखिरी कमेंट क्या रहेगा अर्जुन जी?
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा ये संदेश ये रहेगा कि इस रंगमंच में इंसान को जो भूमिका मिली हुई है तो वो यही है, घर तक सीमित नहीं है, हमारे चारों तरफ हो रहे एनवायरनमेंट वातावरण को लेके उसमें भी बड़ा तालमेल बैठाना चाहिए। जैसे हमें कि एनिमल के प्रति है, एनवायरनमेंट के प्रति है, किसी बड़े बुजुर्ग के प्रति है, तो हमें वो भी किरदार निभाना है, हम घर तक सीमित नहीं है।
1: अपनी ड्यूटी समझनी होगी
2: जी सर,
1: तभी हम
2: हाँ अपने कार्य को समझना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है।
1: तभी हम अपने अपने ही साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी बेहतर कर
2: जी
1: सकेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के माध्यम से जो हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम श्रोताओं को, वो मैसेज पहुंचा होगा कि जिंदगी को अच्छे से मैनेज करिए, और जो रंगमंच हमें मिला है, ईश्वर ने हमें दिया है, उस पे अपनी भूमिका अच्छे से निभाएं, और इस दुनिया को जो ईश्वर ने हमें इतनी बेहतरीन दुनिया दी है, इसको और भी बेहतर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों का यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों से साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: शुक्रिया, धन्यवाद सर।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली के प्रसारण और स्टूडियो की घड़ी समय बजाने जा रही है 2:30 और 2:30 से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
3: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी, टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: करे थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक दिनक दिन झाक दिनक दिन थाक दिनक दिन झाक
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ,

0: हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया। इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: चाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंद स्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा,

0: तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
1: अरे भाई तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
0: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा अब आज्ञा दीजिए।
1: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
0: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
0: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
0: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मुनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्टमास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्टमास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्टमास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहाँ आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा

0: तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
1: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
0: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसकी डाक उसे फौरन मिलनी चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
0: सभी पत्रों पर मुहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। पास तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हाल चाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है? अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवाल नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम, सिंगारम, उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी, भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा?
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नामो निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ, लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: सिंगारम, ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं।

0: तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
1: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
2: जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ। देखना ये श्रृंगारम कैसे

0: क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए, 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा, अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा न कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती
0: हैं। माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक खाने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही है जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने?
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू तो क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारा

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो?
3: अरे घबराती क्यों हो,
2: मैं भाग थोड़ी ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो और
0: मुझे घर जाना है। नानी अकेली है।

0: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
1: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
0: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
1: और कोई क्या करेगा।
0: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
1: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
0: अच्छा?
1: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
0: अच्छा, ये बात है।
1: छोड़
0: दे,
2: चेहरा बन गया, तुझे मैं छोड़ समा डालूंगा।
0: अरे बाप रे, दागी ने मार डाला। अरे बचाओ, बचाओ।
2: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
0: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा, देख लूंगा तुझे।
2: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चलो, हाल फेर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
0: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूं, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
1: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
1: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई, सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
1: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
1: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने श्रृंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
1: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश श्रृंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
1: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
1: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला, मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए।

0: मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं। नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूं, अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। उससे बातें करता हूं तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूं। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
0: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर।
4: आपकी हमारी दोस्ती सुरों का साज है, आपकी हमारी दोस्ती सुरों का साज है, आप जैसे दोस्तों पर हमें नाज है। अब चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, दोस्ती वैसी ही रहेगी जैसे आज है। मैं जीशान बारसी, ग्राम सुनोली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से हूँ और मैं सभी आकाशवाणी

0: परिवार, आकाशवाणी के तमाम आला अफसरान और आकाशवाणी के तमाम उद्घोषक और मेरे श्रोता मित्र, मैं सभी को आकाशवाणी के 90 वर्षों की अनंत यात्रा के मौके पर हार्दिक बधाई पेश करता हूं। आकाशवाणी का सुरमई सफर 90 वर्ष पूरे कर चुका है और इस सफर का मैं भी हिस्सा बन चुका हूं और बना हूं। 18 वर्ष मैं भी आकाशवाणी के साथ चलकर पूरे कर चुका हूं। आकाशवाणी ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ चलकर हमें आगे बढ़ाया है। आकाशवाणी हमारा मित्र है, हमारा भाई है, आकाशवाणी हमारा परिवार है। आकाशवाणी ने बच्चों से लेकर युवाओं तक, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी का विशेष ख्याल रखा है। सभी के लिए एक से एक बेहतरीन कार्यक्रम दिए हैं जिससे हम सुनकर काफी लाभान्वित हुए हैं। आकाशवाणी का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। आकाशवाणी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आकाशवाणी ने ही हमें बोलना सिखाया। आकाशवाणी हमारा टीचर की तरह रहा है। आकाशवाणी का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और मैं दुआ करता हूँ आकाशवाणी के लिए। आकाशवाणी की उम्र हजारों साल हो और इसके सुनने वाले कभी कम ना हो।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
2: आरएफएम आकाशवाणी बरेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। श्रोताओं, जब भी हम सड़क पर चलते हैं, यानी कि जब हम कहीं जाते हैं या आते हैं, तो हम किसी न किसी मार्ग का उपयोग करते हैं और ज्यादातर हमारे उपयोग में आती है सड़क। और सड़क मार्ग का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं कि हमें किस साइड चलना है, कैसे चलना है, और अगर हम वाहन चला रहे हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना है। तो इसी पर आज आपसे बात करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है कि सड़क पर चलते वक्त एक सभ्य नागरिक के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं। तो उन्हीं कर्तव्यों पर आपसे होगी चर्चा कार्यक्रम में। तो देखते हैं कार्यक्रम में आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं?
3: नमस्कार जी, आकाशवाणी परिवार को सादर प्रेम प्रणाम जी। अलगनंद के सामने से बोल रहे हैं।
2: जैसा कि आज का कार्यक्रम का हमारा विषय है सड़क पर चलते वक्त एक सभ्य नागरिक के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं, तो बताइए
3: जी। जिम्मेदारी तो ये है कि पहली बात तो अपने हाथ पे ही बाएं हाथ पे ही चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सामने से किस तरह से व्यक्ति आ रहा है उससे सावधान रहना चाहिए
2: जी।
3: प्लस कोई एजेंट या ऐसा है जो अपने आप रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसके लिए सहायता करनी चाहिए
2: जी। तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आज आप सुनेंगे
3: जी? आज गीत जो है रोड से ही संबंधित सुनवा देना ताकि सबको बढ़िया लगे।
2: तो कौन सा गीत सुनवाए आपको?
3: दाएं भी ऊपर भी नीचे भी इस तरह से जो गाना है
2: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर, मैं एकता क्लब सिंधौली तहसील मीरगंज जिला बरेली से इमरान शेख बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूं। तो कैसे लग रहे हैं आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आपको?
1: सर, आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहे हैं और मैं 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की पूरी टीम और तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल, आपको भी। आप तो हमारी आकाशवाणी से नियमित जुड़े हुए हैं और हमने देखा है कि आपने आकाशवाणी का जो एक लोगो है वो बहुत सितारों से टाक कर हमारी आकाशवाणी को दिया है, वो हमारी आकाशवाणी में आज भी लगा हुआ है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो
1: काफी अच्छे प्रोग्राम लगते हैं और आप लोग इतनी मेहनत करके हम तक जब प्रोग्राम भेजते हैं तो काबिले तारीफ है सर, उसकी बहुत ज्यादा मैं तारीफ करना चाहता हूँ।
0: आज का जो हमारा विषय है कि सड़क पर चलते वक्त एक सभ्य नागरिक के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं, तो बताइए इस
1: बिल्कुल, मैं
0: बारे में।
1: ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी, जो हमारी जिम्मेदारी है, उनको पूरा करें। जैसे अपना सेफ्टी का पूरा यूज करें, जो हेलमेट है आपका, और आप
0: जी
1: जो सही दिशा पर चलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर आप इन सभी चीजों का पालन करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, सड़क की जो दुर्घटनाएं होंगी उनसे भी बच सकते हैं।
0: तो कौन सा गीत आपको प्रोग्राम में सुनवाया जाए आज?
1: सर, मैं आशा मूवी का गाना सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है आशा और गाने के बोले हैं, जाने हम सड़क के लोगों।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार,
0: नमस्कार,
1: मैं राम प्रसाद बोला आपका छावनी से।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत कैसे हैं आप?
1: बढ़िया साहब, जय कृपा मालिक के साहब।
0: तो कैसे लग रहे हैं आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम आपका सब बढ़िया चल रहा है अभी।
0: तो आज का जो प्रोग्राम का हमारा विषय है वो है सड़क पर चलते वक्त एक सभ्य नागरिक के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं?
1: हाँ, सड़क पर चलते बस सावधानी बरतना चाहिए साहब जी। हाँ, ध्यान से चलना चाहिए और साइड से चलें और अपने नियमों का पालन करें। जो पटरी है उसी पे चलें, साइड से चलें और
0: तो
1: ध्यान रखें कोई आगे पीछे को निकल रहा है उसको देख कर निकले। अगर गाड़ी
0: कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आपको सुनवाया जाए?
1: के सुना देना साहब जी,
0: कौन सा?
1: गाड़ी का आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं सतनाम बात कर रहा हूँ, ग्राम शिवनगर तहसील आला जिला बरेली से।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर?
0: मैं बहुत अच्छा हूं। तो क्या हो रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं सर, बरसात अभी हुई है 1-2 दिन पहले,
0: जी,
1: अब 1-2 दिन बाद जो है खेत की जुताई वगैरह चलेगी।
0: तो ये बताइए कि सड़क पर चलते वक्त एक सभ्य नागरिक के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं?
1: जी सर, बहुत अच्छा विषय है, सड़क पे चलते समय हमें एक सभ्य नागरिक की तरह चलना चाहिए, जो नियम ट्रैफिक रूल बने हुए हैं हमें उस हिसाब से चलना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
0: जी, तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
1: आज सर फिल्म का नाम है बरसात, और गीत के बोल है दिल पागल दीवाना है तुझे प्यार करेगा।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं मुबारक बोल रहा हूँ फरीदपुर से। जी
0: फरीदपुर से आप बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं आप?
1: मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है मेरी। जी
0: तो आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: सुनते हैं,
0: कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
1: अच्छे लगते हैं।
0: तो आज का जो हमारा प्रोग्राम का विषय है उसके बारे में बताइए कि सड़क पर चलते समय एक सभ्य नागरिक के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं?
1: सड़क पे चलते वक्त आप बाइक की स्पीड जो है 40 पे आप स्पीड ज्यादा ना करें, और रोड पार करते समय इधर उधर देख लें ध्यान से, तभी रोड क्रॉस करें।
0: जी, नियमों

0: का हमें पालन करना चाहिए। तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए प्रोग्राम में?
1: आप तेरे नाम का सुनवा दीजिए टाइटल सॉन्ग।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे नाम फिल्म का ये गीत 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं जिला बरेली दौरा टांडा से बोल रही हूँ। सिमी नाम है मेरा।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम का विषय है उसके बारे में बताइए।
1: हाँ जी, सड़क पे जरा सावधानी से चलना चाहिए, संभाल के, मतलब खुद को भी ना कोई दिक्कत हो, दूसरों को भी ना हो।
0: जी, तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गाना आप सुनेंगी?
1: हीरे रांझे पिक्चर का, अनिल कपूर का, दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद मोल्ला फरकपुर से बोल रहे हैं।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। तो आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: जी सर, नियम सुन रहे हैं।
0: तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
1: काम अच्छे लगते हैं आप तो। हम
0: तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: आखिर बाकी सभी कार्यक्रम जो आते हैं।
0: तो ये बताइए, सड़क पर जब हम चलते हैं तो सभ्य नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं? सड़क पर
1: जैसे
0: चलते
1: कि
0: हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए?
1: भाई शुद्ध करना चाहिए, हेलमेट लगा के गाड़ी चलते, बाइक चलाते हैं हेलमेट लगा चलते, साइकिल चलते
0: यानी जो नियम हैं उनका हमें पालन करना चाहिए
1: हैं।
0: और ध्यान रखना चाहिए। तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आज आपको सुनवाए प्रोग्राम में?
1: तुम्हारे पत्थर के सनम
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर, मैं पुराना शहर जगतपुर से सबा खान बात कर रही हूँ।
0: स्वागत है आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत। तो आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आप सुनती हैं?
1: जी सर, मैं सबका कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
1: जी सर, बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम, हर वक्त रेडियो हमारे सामने चलते ही रहता है सर।
0: अच्छा, तो ये बताइए, सड़क पर जब हम चलते हैं तो एक सभ्य नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं?
1: जी सर, हमारे कर्तव्य जैसे मतलब ये बनते हैं, मतलब जैसे जो लोग जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, हम अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, मतलब
0: जी
1: और जैसे मतलब कोई किसी को भी मदद की जरूरत है, कोई जैसे बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, हम उनकी हेल्प करें, इनको रास्ता मतलब
0: जी
1: क्रॉस
0: बिल्कुल,
1: करवाएं।
0: सहयोग
1: जी
0: की भावना होनी चाहिए।
1: सर,
0: तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है आज, तो कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: जी सर, मुझे एक पुरानी मूवी है उसका सॉन्ग सुनना है
0: कौन सा?
1: जी, पारस मणि का, मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी वो नहीं है, कहीं प्यार हो ना जाए।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपके फोन कॉल्स के अलावा
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
2: नमस्ते
1: नमस्कार।
2: सर, मैं चरजीत सिंह रजू परसपुर तहसील परदू जिला बरेली से बात कर रहा हूँ सर।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
2: मैं सर बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। आप आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुनते हैं?
2: जी, मैं नित्य आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुनता हूँ।
1: तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
2: बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं।
1: तो आज का जो हमारा कार्यक्रम का विषय है वो ये है कि सड़क पर चलते समय सभ्य नागरिक के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं, तो बताइए।
2: हमको हमेशा अपने रोड पर चलने से पहले टू व्हीलर से अपने हेलमेट साथ में रखना चाहिए, रोड की साइड में चलना चाहिए, बड़े
1: जी।
2: वाहनों को साइड देते रहना चाहिए, और भी बहुत सारे नियमों का पालन हमें सदा करना चाहिए जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए।
1: तो क्या करते हैं आप वैसे?
2: हम अपना सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र चलाते हैं।
1: तो आज के जो कार्यक्रम में आपका फूल लगा है, कौन सा गीत सुनेंगे आज प्रोग्राम में?
2: आज आप बाहरो फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है।
1: तो हम प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

कमेंट भी शामिल करते हैं। तो हमारे पास ये जो कार्यक्रम में कमेंट है, ये है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर का, ग्राम चरौदा बार नवापारा, जिला बालौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। तो ये लिखते हैं कि सड़क पर एक सभ्य नागरिक को नियमों का पालन करना चाहिए, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदारी से चलना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गांव रहमानपुर बरेली से शनि कुमार चंद्रा, सीताराम चंद्रा, गोविंद छोटेलाल, पप्पू, सचिन, अंजलि, अंजू और अनुष्का चंद्रा ने लिखा है कि जीवन अनमोल है, तेजी में या असावधानीवश, ये लिखते हैं, जीवन अनमोल है, तेजी में या असावधानीवश सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में करना उचित नहीं है। दुनिया का कोई भी काम किसी भी जीवन से बड़ा नहीं होता, इसलिए चाहे जितनी भी जल्दी हो, सड़क पर चलते समय सुरक्षा नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। विष्णु का कमेंट भी इसी तरह से आया है कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग हमेशा करना चाहिए, सड़क पर कचरा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। और इनके साथ हैं रितिका, वाणी, आरव, चंद्रकला, काशीनाथ और गणेश, सोनी, आरोही और प्रियांशी। ये दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हमें कमेंट भेजते हैं।

तो आज के आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी देर में 5:05 पर सुनिएगा भजन संध्या। 5:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हेलो बरेली, और युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा 6:00, और किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:30 पर। चर्चा होगी मृदा स्वास्थ्य योजना पर। और 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम जगत, और ग्राम जगत कार्यक्रम में चर्चा करेंगे संतुलित आहार के फायदों के बारे में। 7:31 पर सुनिएगा रेडियो हेल्पलाइन। हमारी कल की सभा प्रतिदिन की तरह शुरू होगी 5:53 पर, और कल प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम अंकुर, और कल प्रातः 10:00 होगा कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद, और 11:00 कार्यक्रम रहेगा आपका पत्र मिला। लोकरंग कार्यक्रम सुन सकेंगे आप कल पूर्वाहन 11:30 पर। 1:00 होगा कार्यक्रम अनुरोध गीत। 2:00 आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल 4:00, और कल 5:05 पर होगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या, और 5:30 पर होगा कार्यक्रम मन भावन। युवाणी का समय रहेगा 6:00, और ग्राम जगत सुनेंगे आप कल 6:30 पर। कानूनी सलाह कार्यक्रम होगा कल 7:00, और कल 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम जनमंच, और कल 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम, क्षमा कीजिएगा, कल 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

कार्यक्रमों की जानकारी हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए भजन संध्या। स्वागत है आप सभी का भजन संध्या कार्यक्रम में। भजन संध्या कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन के स्वर में ये भजन।

0: हेलो बरेली
1: हेलो बरेली,
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई बात कर रहा हूँ।
0: गरीब भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया है। था आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही बढ़िया था। प्रवासी पक्षियों के बारे में आपने जब बताया और गीत सुनाया, बहुत ही सटीक गीत सुनाया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था।
0: धन्यवाद
1: और लोक गीत भी जो है बहुत बढ़िया लगे। अरे
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गरीब भाई कि आप इतने ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: साहब, आपके ध्यान सारे ही कार्यक्रम ध्यान से सुनते हैं
0: जी
1: और बताते भी हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, लिखते भी हैं
0: जी जी
1: और पत्र भी हमारे शामिल होते हैं। और हमारे जो केंद्र निदेशक हैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी, अभी तक हम कार्यक्रमों को सुनते थे, अब तो उन्होंने ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि लोग देखने लगे, पता चल गया कि गरीब भाई कौन है, पहचान
0: जी बिल्कुल,
1: करा दिए।
0: पता चलना भी चाहिए।
1: जी, तो हम इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहते हैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी को।
0: स्वागत है आपका। और
1: जी
0: गरीब भाई, अच्छा ये बताइए,
1: भाई,
0: आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे, कोई संदेश देना चाहते हैं?
1: आकाशवाणी बरेली ने तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीखा है। सब कुछ
0: जी
1: आकाशवाणी से ही पता चलता है कि आज कौन सा दिवस है, किसका दिवस है, फ्रेंडशिप डे कब है, प्रवासी दिवस कब है
0: जी
1: और मदर डे कब है, फादर डे कब है। ये सारी जानकारियां हमें जो रेडियो के माध्यम से ही मिलती है। रेडियो एक अच्छा माध्यम है। पहले टीवी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लोग रेडियो से ही समाचार सुना करते थे
0: बिल्कुल
1: और रेडियो से ही सारी जानकारियां मिला करती थी। और रेडियो एक ऐसी चीज है कि जिसको हमें देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है।
0: जी
1: रेडियो के माध्यम से सारे काम आप करते रहिए, अच्छे से काम होते रहेंगे, आप रेडियो सुनते रहिए, कोई बाधा किसी काम में नहीं आती।
0: गरीब भाई, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। और अब बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: आज कोई पक्षी भाई ही गीत बढ़िया बजाए आप। एक गीत है बहुत पुराना, हमारे साहू गाया करते थे, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देसुआ बेगाना।
0: बहुत सुंदर गरीब भाई,
1: तो ये गीत हम सुनना चाहते हैं, बहुत पुरानी याद ताजा करना चाहते हैं, अपने साहू की याद ताजा करना चाहते हैं।
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो बरेली
1: हाँ हेलो बरेली
0: जी, कौन से श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं?
1: भाई मोहल्ला चलैया ओल्डा जागीर से फजलुद्दीन भाई दीवाना एफएम का।
0: फजलुद्दीन भाई, हम जानते हैं कि आप एफएम के दीवाने हैं। पहले तो आपको नमस्कार।
1: नमस्कार
0: और
1: नमस्कार
0: जी,
1: इकबाल भैया बोल रहे हो आप?
0: आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो बरेली में। बताइए क्या चल रहा है आजकल?
1: आप गर्मी में आराम कर रहे हैं घर पर?
0: क्या बात है, आराम करिए, गर्मी से बचना बहुत जरूरी है। और आज आपने फोन किया है कार्यक्रम हेलो बरेली में, तो बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म का नाम उपकार गाने बोल दीवानों से ये मत पूछो दीवान क्या गुजरी है, मैं एफएम का दीवाना हूँ इसलिए गाना ये पसंद है मुझे।
0: जी
1: मैं ना मैं बोलना चाहता हूँ तो
0: जी
1: श्री निजावत खान से आफ्ताब भाई और दानिश और तब उत्सव।
0: ठीक है फजलुद्दीन भाई, आप अपने साथियों के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो बरेली
1: हेलो बरेली
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं राम प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ।
0: राम प्रसाद शर्मा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया, आप जाए कृपा साहब, मालिक के सब बढ़िया है।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: बस ये है कि काम धंधा हो रहा है, हर महीने बनाता हूँ नए पुराने।
0: अच्छा, तो आपका काम ठीक चल रहा है?
1: हाँ ठीक चल रहा था, वहाँ सही है, मालिक के जो है
0: काम बहुत अच्छा चलता रहे और आप ऐसे ही आकाशवाणी बरेली के साथ जुड़े रहें। अच्छा, ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आज गाना सुनना है, चांद की दीवार ना तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया।
0: ठीक है राम प्रसाद जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो ये था आज का हेलो बरेली कार्यक्रम, जिसे आप सुन रहे थे शीशपाल राजपूत के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली के प्रसारण और हमारी घड़ी समय बजाने जा रही है शाम के 6। तो कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी और युववाणी कार्यक्रम लेकर स्टूडियो में आ चुकी है आबिदा। तो कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे आबिदा के साथ, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे आबिदा फातिमा और आप सुन रहे हैं 100.4 एफएम पर प्रोग्राम युवाणी। और उम्मीद है आप सभी की शाम बहुत ही शानदार गुजर रही होगी। साथियों, रेडियो का साथ और आपकी पसंद के नगमे, ये तालमेल ही कुछ ऐसा है जो हर दिन को खास बना देता है। आज के सफर में हम और आप साथ मिलकर गुनगुनाएंगे कुछ बेहतरीन धुने और बांटेंगे कुछ प्यारी सी जानकारी। तो बस बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए संगीत के इस खुशनुमा मौसम का और सुनिए फिलहाल प्रोग्राम का ये पहला गीत।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप बने हुए अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और आज तारीख है 9 मई और आज आसमान की उन ऊंची उड़ानों का दिन है जो सरहदों को नहीं मानती। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की, जिसे हिंदी में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कहा जाता है। प्रवासी यानी वो मेहमान पक्षी जो मौसम बदलने पर एक देश से दूसरे देश हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। इस दिन साल में 2 बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। आज 9 मई 2026 को हम इसे मना रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो लोगों को उन पक्षियों के बारे में जागरूक करना है जो मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। हमें उनके रहने की जो जगह है उनको बचाना है। क्या आप जानते हैं, कुछ पक्षी तो साइबेरिया जैसे बर्फीले इलाकों से उड़कर हमारे बरेली और आसपास के वेटलैंड्स तक आते हैं। बढ़ता प्रदूषण, रातों में शहरों की तेज लाइटें और मोबाइल टॉवर्स इन नन्हे मेहमानों का रास्ता भटका देते हैं। आज

दिन हमें याद दिलाता है कि हमें उनके लिए आसमान और जमीन दोनों को सुरक्षित बनाना है। तो आप आज एक छोटा सा काम जरूर करिए, अपनी छत पर या बालकनी में एक मिट्टी का कटोरे में साफ पानी और थोड़ा सा दाना जरूर रखिए, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है। तो ऐसे में उन बेजबान परिंदों का ख्याल रखना भी तो हमारा ही फर्ज है। फिलहाल अभी फर्ज है हमारा सुनवाना आपको एक और सॉन्ग, तो सुनिए और एंजॉय।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में
1: हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

साथियों, आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और जैसे कि आपको मालूम है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है कि जब आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और ये सिर्फ एक संस्था का जन्मदिन नहीं है बल्कि करोड़ों यादों का जश्न है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे आबिदा फातिमा और आप सुन रहे हैं बरेली की धड़कन, आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली 100.4 FM। दोस्तों, ये दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हमारा आकाशवाणी परिवार अपने 90 साल का एक शानदार, जानदार और बेमिसाल सफर पूरा करने जा रहा है। 90 साल ये महज एक नंबर नहीं है, ये 90 साल गवाह हैं आजादी की पहली गूंज के, सरहद पर डटे वीर जवानों के लिए भेजे गए संदेशों के, खेतों में हल चलाते किसान की मुस्कुराहट के, और उस छोटे से ट्रांजिस्टर के जो कभी हर घर के ड्राइंग रूम की शान हुआ करता था। जब टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब सिर्फ एक ही आवाज जो हमें दुनिया से जोड़ती थी वो थी ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आज हम अपनी उन पुरानी यादों को नमन करते हैं और साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं आप जैसे लाखों श्रोताओं का। आपकी मोहब्बत ने ही हमें युगवाणी से लेकर नजाना शाम तक के इस हसीन सफर को तय कराया है। 90 साल बीत रहे हैं पर हमारी आवाज में वही अपनापन है, वही खुशबू है। तो चलिए इस जश्न को मिलकर मनाते हैं। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर, और आकाशवाणी के साथ जुड़ी आपकी सबसे पुरानी याद कौन सी है वो भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आकाशवाणी है तो हर बात अपनी है। फिलहाल अभी एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

शनिवार राती मानू नींद नहीं आती, टोटल 1600 तारे मैंने गिन गिन है डाले, मैं तो जागता हूँ।

आप लोगों से विदा लेने का। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है वाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाश फणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर 8243001।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है शाम के ठीक 6:30 और समय है कार्यक्रम किसानवाणी का। और किसानवाणी कार्यक्रम लेकर आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हेडल पाल जी और तेजपाल जी। तो करते हैं अब कार्यक्रम को उनके हवाले और लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसानवाणी।

0: किसान भाइयों, कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ इस कार्यक्रम की आज हम रिकॉर्डिंग करने के लिए और अपने किसान भाइयों का हालचाल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं तेजपाल भैया और मैं हेडलपाल सिंह, गांव ढका जो कि अखा गांव के नज़दीक में पड़ता है और यहां से एक सड़क भी गुजरती है जो सीधी अलीगंज गैनी को जाती है। इसी मार्ग पर ये गांव पड़ता है और यहां पर हम देख रहे हैं एक स्थान पर वृक्षों की छाया है और इस छाया में हमारे जो ग्रामीण भाई हैं वो काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं क्योंकि अभी पिछले दिनों कुछ बरसात हो गई है तो हमारे जो किसान भाइयों का कामकाज है खेती का वो थोड़ा हल्का हो गया है, सिंचाई आदि से थोड़ी निजात मिल गई है तो इस कारण से जो गर्मी का मौसम है तो इसका पूरा पूरा आनंद हमारे किसान भाई जो वृक्षों के नीचे बैठ करके ले रहे हैं। तो यहीं पर ढका गांव के जो किसान भाइयों से जानते हैं गांव के बारे में, उनकी खेती बाड़ी के विषय में। हमारे साथ में किसान भाई हमसे जुड़ चुके हैं, आपका शुभ नाम?
1: प्रेमपाल जी।
0: प्रेमपाल जी, हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है वो कौन से गांव में हो रही है?
1: ढका में।
0: ढका, ये बरेली से कितनी दूर है?
1: करीबन 10 किलोमीटर।
0: अच्छा, यानी नजदीक ही है। तो गांव में अगर हम बात करें तो अधिकतर किस तरीके के लोग हैं?
1: मैं तो जो है करीबन 4-5 लोग हैं बस।
0: अच्छा,
1: बगैर सब किसानी हैं।
0: अधिकतर संख्या में किसान भाई हैं। बात करें अपने क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है?
1: है ना, गेहूँ भी है, धान भी है, बाजरा भी है, उर्द भी है, गन्ना भी है।
0: अच्छा,
1: फसल सब भी है ना?
0: यानी सभी तरीके की फसलें हमारे किसान भाई अपने खेतों में उगाते हैं। अभी पिछले दिनों जो बरसात हुई है इससे क्या लाभ हुआ है हमारे किसान भाइयों को?
1: लाभ हुआ है गन्ना को, गन्ना नाम पानी लग गया, सिंचाई कम मिल गई
0: जी,
1: और कुछ आराम मिल गया खेती को, जितना को टाइम आयो
0: जी
1: जी आराम मिला है, फसल बैठ गई सब
0: जी। हमारे किसान भाई करते क्या है कि गर्मी के बाद जो हमारे गेहूं की फसल से खेत खाली होते हैं तो उनको खुला छोड़ देते हैं यानी जोत करके, और जोतने में सूखे खेतों को बड़ी परेशानी होती है जो कि इस समय बारिश हो गई है, तो हमारे जो किसान भाई हैं अपने खेतों को अच्छी तरीके से जुताई कर देंगे और गर्मियों में धूप खा लेंगे हमारे खेत, तो इससे क्या लाभ हुआ बारिश से?
1: बारिश से यही, अब खेत जुत जाएंगे, अब धूप खा लेंगे
0: जी,
1: और अगले को थोड़ी घास कूड़ा

0: कम में हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा तो
1: बिल्कुल सही बात है
0: जी, हो जाएगा और पौध पड़ जाएगी, अब जुतिया नमी होगी क्षेत्र में
1: जी। अब धान की पौध डालने का समय भी आने वाला है, हमारे किसान भाई खरीफ में धानों की खेती करेंगे तो जो धान की पौध है उसको भी डालेंगे। प्रेमपाल जी अभी ये बताइएगा, आप कितने समय से खेती कर रहे हैं?
0: हम हो गए करीबन 35 साल है
1: खेती करते हुए। तो खेती कौन कौन सी फसलों की करते हो?
0: हमने तो सभी कर ली है, अरहर छोड़ के गन्ना भी है, धान भी है, जौ भी है।
1: अब इस समय खेतों में कुछ है?
0: हमारे खेत में गन्ना है।
1: अच्छा, गन्ना किस अवस्था में खड़ा है?
0: ना अभी तो पौधा है।
1: अच्छा, पौधा है।
0: हाँ, पौधा लगाया है।
1: यानी बसंत कालीन गन्ना की बुवाई की थी।
0: हाँ।
1: जो मार्च में बोई जाती
0: हाँ।
1: है, उसमें बो दी। कितने बीघा होगा?
0: करीबन 5-6 बीघा।
1: 6 बीघा है। तो गन्ना में केवल गन्ना ही है, उसके अंदर भी कोई खेती?
0: नहीं, खाली गन्ना है।
1: खाली गन्ना है। गन्ने के साथ में भी और खेती कर सकते हैं?
0: हाँ, कर सकते हैं, पालेज भी कर सकते हैं, मगर ना जानवर होगा ना होने देते हैं।
1: अच्छा अच्छा, आपके गांव के चारों ओर हमने ये देखा कि वृक्षों की तादाद यानी पौधों की संख्या बहुत है, पेड़ बहुत है।
0: जब जाए पेड़ इसलिए लगाते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे आगे बढ़ के।
1: हाँ।
0: 4 पैसा और गन्ना में जैसे कोई फसल मारी जा रही तो पौधा नहीं मारा जाएगा हमारे।
1: जी जी। और अधिकतर पॉपुलर के पौधे लगे हुए?
0: पॉपुलर है, लिस्पीड भी है।
1: अच्छा, ये लगी हुई है। इससे अच्छा पर्यावरण भी तो हमारा शुद्ध होता है।
0: हाँ, पर्यावरण जी, तार लगा है तो हम इससे तार भी बांध देते हैं, कुछ डंडा फंडा लाने नहीं पड़ते हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ। इससे हमारे जानवर है वो नुकसान भी नहीं करते और खेत की रखवाली भी सही तरीके से हो जाती है।
0: खेत पर लेटने बैठने के लिए दाना बच सकते हैं। अब तार लगा दो, दोबर लगा दो तो दोबर तार से हमारी गैया है भेजा रहे हैं वो रुकी रहती है
1: जी। सिंचाई के कुछ साधन है आपके?
0: हाँ, सरकारी ट्यूबवेल है, प्राइवेट ट्यूबवेल है।
1: अच्छा, सरकारी जो ट्यूबवेल है उससे खेतों की सिंचाई होती होगी?
0: हाँ, ऐसी हो जाती है, करीबन 10-20 बीघा रोज की हो जाती है।
1: अच्छा, तो उसका कोई पैसा जाता है?
0: नहीं नहीं, पैसा नहीं जाता है।
1: अच्छा, वो निशुल्क सिंचाई होती है?
0: वो फ्री में होती है।
1: अच्छा,
0: और जो प्राइवेट ट्यूबवेल है उनपे पैसे जाते हैं।
1: तो गांव में लड़ाई झगड़ा भी होता होगा कि मेरा पहला भरा जाए?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा,
0: ये उनको ऐसा है, आज तुमसे कह देगी तुम भर लो, कल हम भर लेंगे, परसों भैया को दे दिया, ऐसा होता है।
1: अच्छा, बारी बारी से किसान भाई भरते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे जो अन्नदाता है वो काफी संतोषी भी होते हैं, चलो आज नहीं खेत कल भर जाएगा है, देखा जाता है। अच्छा, पशुपालन कर रहे हैं?
0: हाँ, पशुपालन है, भैंस भैंसिया है, गैया भी है।
1: अच्छा, कितने पशु हैं?
0: हमारे पास तीन है। दो भैंस है, गैया है।
1: पशुओं से क्या फायदा मिलता है?
0: अब जो ये है अपना घी मठा है, अपना घर का खा रहे हैं। हाँ। किसी के हाथ पर नहीं जा रहे हैं तो हमारे तुम्हें चाय बना के पिला दी ना, तो हमें कहीं जाने पड़ता कि भैया दूध दे दो हमें पीने के लिए, हमारे घर मेहमान आए।
1: बिक्री करते हैं दूध?
0: बिक्री नहीं करते हैं दूध की।
1: बहुत बढ़िया, अपने घर परिवार में काम काज में दूध को ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमपाल जी, आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने अपने खेती बाड़ी के अनुभव के विषय में हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए। तेजपाल जी देखिए, और भी किसान साथी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी बातचीत करने की। तो हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ अन्नदाता किसान भाइयों से बतलाएं।
2: अगली कड़ी में हमारे साथ में एक बुजुर्ग किसान साथी हैं, जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है?
3: हेमराज।
2: बात करें उम्र की तो आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? लगभग
3: उम्र हुई 85 के लगभग।
2: अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: ढका के।
2: अच्छा, इस ढका गांव को आप कब से जानते हैं?
3: जो सर्वदूर जानते हैं।
2: अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब से 25-30 साल पहले इस गांव की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है?
3: पहले हाल खराब ही, अब बढ़िया है।
2: अच्छा, घर मकान कैसे होते पहले?
3: पहले तो छप्पर है।
2: अच्छा,
3: अब छप्पर का हो गए,
2: सब पक्के मकान बने हुए?
3: सब पक्के मकान बने हैं।
2: और रास्ता कैसी है?
3: रास्ता बढ़िया है, पहले तो कीचड़ कीचड़ की चढ़ी।
2: अच्छा, खरंजा पड़े हुए हैं या रोड पड़ गए?
3: पहले तो खरंजा आयो, ये भैया गांव में हमारे पहले तो खरंजा भाव गांव में।
2: अच्छा,
3: ताके बाद फिर सीमेंट रोड पर हो गयो,
2: यानी कि गांव में विकास हो गए, घर मकान पक्के बन गए, अब रास्ते बढ़िया हो गए। अच्छा, खेती बाड़ी करते हो? अच्छा,
3: हाँ, खेती हो रही।
2: कौन कौन सी फसल होती है?
3: फसल गेहूँ है, धान है, बाजरा है और सब फसल करने की है।
2: अच्छा, इस वक्त कौन सी फसल खड़ी हुई आपके खेत में?
3: इस समय कौन कोई ना, इस समय भिंडी चल रही है।
2: अच्छा, भिंडी की सब्जी वाली खेती भी करते हो?
3: हाँ।
2: अच्छा, होना भी यही चाहिए क्योंकि अगर हम जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं जैसे कि अन्न वाली, उनके साथ साथ साग सब्जी वाली फसलें अगर करते हैं तो हमको जो है मतलब जो है आमदनी हमारी बढ़ जाती है। कुछ पशुपालन करते हैं? कितने पशु हैं आपके पास में?
3: हमारे पास हो कम से कम 8-10।
2: अच्छा, 8-10 पशु हैं। अच्छा, भैंसे हैं?
3: भैंसे हैं, गैया हैं।
2: अच्छा, कितनी भैंसे हैं?
3: 4 भैंसे होंगी, 6 गैया हैं।
2: अच्छा, दूध दे रही हैं?
3: अब इसमें।

0: मैंने अब।
1: अच्छा दूध ना हो
0: रहा है।
1: अच्छा कुछ फायदे हैं पशुपालन से?
0: फायदे ना हो तो पालने को।
1: अच्छा कौन कौन से फायदे हैं?
0: फायदे ये हैं कि आप आए गए अब हमारे दूध है सब चाय बना देंगे।
1: अच्छा खेतन में लगाने को खाद मिल जाती हुई?
0: खेतन में लगाने को घुरू मिल जाते हुए।
1: अच्छा क्योंकि
0: पालने में फायदा हो जाते हुए जरूर बच्चे तो बेची ले जाते हैं तो कम से ले जाते हुए
1: और खेतन में

0: वो भी अच्छी ध्वनि करती हुई प्रतीत नजर आ रही है। और एक किसान साथी है हमारे साथ में, वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम?
1: पप्पू।
0: पप्पू, हमारी और आपकी कौन से गांव बातचीत हो रही है?
1: ढका गांव में।
0: ढका गांव में क्या करते हैं आप?
1: हम तो खेतीबाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, बच्चे?
1: बच्चे हैं।
0: कितने हैं?
1: चार बच्चे हैं।
0: बच्चे कितने कितने बड़े होंगे?
1: बच्चे ऐसे भी 8 साल का, कोई 10 साल का।
0: क्या कर रहे हैं वो?
1: वो तो अभी छोटे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं।
0: अच्छा, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। तो स्कूल गांव में कहाँ तक है?
1: पांचवे तक।
0: पांचवे के बाद में बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने?
1: अभी तो यहीं पढ़े, इसके बाद में जैसे कार्य और बल्दिया हुआ या भेजेंगे फिर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो खेती करते हुए आपको कितना समय हो गया?
1: खेती हमें कहती ज्यादा, मतलब 20 साल हुई होंगी।
0: अच्छा, गाँव में हमारी सरकार भी काफी अधिक प्रयास रहता है कि हमारे गाँव का विकास हो, हमारे गाँव की जो जनता है वो अधिक से अधिक प्रगति करे, गांव का विकास करे। तो इसके लिए हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको राशन कार्ड जो सभी के पास में है ही है, उनको राशन भी उपलब्ध होता है हर महीने निशुल्क। तो आपको मिलता है?
1: हाँ, मिलता है।
0: अच्छा, तो कितना राशन आता है घर में?
1: हमारे 5 किलो एक यूनिट के हिसाब से आता है।
0: अच्छा, तो कितने यूनिट है घर में?
1: हमारे 5 यूनिट,
0: यानी 25 किलो अनाज आपको महीने में मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है कभी एक महीना छोड़ के एक महीने मिलता?
1: मिलता हर बार,
0: हर महीने मिल जाता है। तो ये बताओ, पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की?
1: हमने नहीं की पढ़ाई लिखाई, बच्चे अब कर रहे हैं जो भी करेंगे।
0: एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम स्वयं नहीं पढ़े लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। और आपके बच्चे देश का नाम रोशन करें ऐसी हम उम्मीद करते हैं। किसान सम्मान निधि आ रही है?
1: नहीं, हमारी नहीं आ रही।
0: अच्छा, पिताजी हैं मौजूद?
1: पिताजी हैं, उनकी आती है
0: जी। उनकी जिसके नाम भूमि होती है उसी को किसान सम्मान निधि मिलती है, परिवार में आपके परिवार में मिल रही है।
1: हाँ,
0: अच्छी बात है। अब ये जानना चाहेंगे खेती बाड़ी में समय क्या कर रहे हैं?
1: खेती बाड़ी में क्या, अभी गेहूँ कटे, गन्ना थोड़ा बहुत बबा गया है।
0: अच्छा,
1: थोड़ा चारा पोन को बह दिया है।
0: हाँ,
1: दो चार विषय में
0: ठीक
1: यही काम हो रहा है।
0: गाँव में प्रकाश की व्यवस्था यानी बिजली की व्यवस्था है?
1: बिजली गाँव में है। हाँ,
0: अच्छा, आती है बिजली?
1: बिजली आती है
0: ठीक। और यही होना चाहिए गांव में, अच्छी सड़कें हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की सही व्यवस्था हो, जल निकास की सही व्यवस्था हो। तो यही सारी बातें हमारे ग्रामीण वासियों को चाहिए।
1: सही बात है।
0: तो इस क्षेत्र में जो हमारे प्रधान जी हैं वो सही काम कर रहे हैं?
1: हाँ, फिलहाल सही कर रहे हैं, काम तो जो कर रहे हैं
0: जी
1: गलत नहीं है
0: जी, यानी विकास कार्य चल रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में आपने प्रतिभाग किया। और एक किसान साथी हमारे और बातचीत करने के लिए तत्पर हैं। आपका शुभ नाम क्या है?
2: मैं आराम।
0: ये बताइएगा क्या करते हैं आप?
2: हम खेती बाड़ी करते हैं, पल्लेदारी करते हैं।
0: पल्लेदारी कहने का मतलब ये है गाड़ियां वगैरह जो उतारने के लिए आप चले जाते हैं। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, यानी मनुष्य को खाली नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी काम धंधे में हमें लिप्त रहना चाहिए। तो खेती बाड़ी इस समय चल रही है?
2: खेती बाड़ी में तो कुछ नहीं है।
0: अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपके गांव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव में मकान बने?
2: हाँ, बने हैं मकान।
0: अच्छा, कितने लोगों को मिले होंगे? लगभग
2: 30-35 आदमी।
0: अच्छा, मिले हैं लोगों के लिए। गाँव में राशन बंटता है?
2: राशन बंटती है।
0: अच्छा, गाँव में घर घर शौचालय भी बने थे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, तो गांव में शौचालय बने हैं?
2: गांव में शौचालय बने हैं।
0: अच्छा, और यही होना चाहिए कि जब भी जो भी योजना आए उसका लाभ हमारे ग्रामीण वासियों को मिले। तो आपने कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लिया है?
2: हम आते तो खाली गल्ला मिल रहा होगा।
0: अच्छा, गल्ला मिल रहा होगा। जमीन अभी पिताजी के नाम होगी है ना?
2: पिताजी के नाम।
0: तो जो भी अभी सुविधाएं हैं सरकार के माध्यम से वो उनको मिल पाएंगी, और गल्ला आपको मिल रहा है। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है, समय पे गल्ला मिल जाता है खाने के लिए, खेतीबाड़ी का अनाज बची जाता है। तो जमीन कितनी होगी आपके पास?
2: जमीन कहाँ धरी है हमारे पास।
0: अच्छा,
2: बटाई में लेते हैं।
0: बटाई में ले लेते हैं, तो उसमें आपकी खेतीबाड़ी की गुजर बसर चलती रहती है।
2: बटाई में कर लेते हैं,
0: बटाई में कर लेते हैं। अब ये बताइएगा, ये जो इस समय बारिश हुई इससे क्या लाभ हुआ?
2: जहाँ से बहुत लाभ है।
0: अच्छा, क्या?
2: जहाँ से अब जो खेत जुत जाएंगे ना,
0: जुत जाएंगे आसानी से, और जो खरपतवार वो उगाएंगे अब तो फसल में हमारी में नहीं होंगे। अच्छा, ये बताओ, ये खेती बाड़ी की सब जानकारियां आपको कहाँ से मिलती है? किसान भाई को जानकारी तो खुद होती है, लेकिन जब आपकी खेती बाड़ी में कोई रोग बीमारी लगती है और कोई परेशानी आती है तो क्या करते हैं?
2: तो दवाई लाती है।
0: दवाई लाती है, बीज है, खाद उर्वरक है, वो खरीद कर लाते हैं, कहाँ जाते हैं?
2: विशारतगंज
0: विशारतगंज लगती।

0: ये वहाँ से लेकर के आते हैं। खेती बाड़ी में इस समय देखा जाए तो अधिकतर हमारे जो किसान भाई हैं वो एक ही शिकायत करते हैं कि जो आवारा पशु उनकी संख्या बहुत है।
1: आवारा पशु संख्या बहुत ज्यादा है
0: जी। तो कैसे सुरक्षा करते हो आप अपनी खेती की?
1: तार फार लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: कटी रोग वाला।
0: अच्छा, इससे पशु फिर नहीं आते, हमारी फसल को नुकसान न पहुंचाए। क्या नाम था आपका? मायाराम जी, आपसे हमारी बातचीत हुई और आपने बड़ा अमूल्य समय कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तेजपाल भैया, अब धीरे धीरे समय भी हो रहा है कि आकाशवाणी की ओर लौटा जाए, बातचीत करते हुए समय भी काफी हो चला है, पुनः अब लौटते हैं आकाशवाणी केंद्र की ओर। सभी अन्नदाता किसान भाइयों को हमारी राम राम, राम, राम।

0: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ। और इस पर भैया आज हम और आप पहुंचे ग्राम ढका विकासखंड मझगवा तहसील आंवला और जनपद बरेली को गांव हो। भैया वास्तव में गांव वाले जो थे हमारे ढका गांव के सभी अन्नदाता किसान भाई बहुत बढ़िया तरीका से उन्होंने अपने खेती बाड़ी के विषय में बातें बताई। और अब मन हो चलो कि अपने भैया बहन को एक अच्छो सो लोकगीत सुनवाए दें।
1: हाँ भैया, तो अब ये सुन लेते हैं जो प्यारा सो लोकगीत।

0: अभी प्रीति चावला के स्वर में हमारे भैया बहन ने बहुत ही मधुर लोकगीत सुनो। हमें उम्मीद है कार्यक्रम में लोकगीत अवश्य पसंद आओ वो। और तेजपाल भैया, कार्यक्रम के शुरू में आपने एक सवाल पूछो।
1: हाँ हाँ भैया, तो भैया बहनों, आज को सवाल हो कि धान की पौध डालने को उचित समय कौन सा है।
0: तेजपाल भैया, वैसे तो धान की जो नर्सरी है वह डालने को उचित समय जो अगेती किस्में हैं वो 15 मई से 25 मई तक बाकी पौध डाल सकते हैं, और जो मध्यम समय में पकने वाली धान की किस्में हैं उनकी नर्सरी 25 मई से 10 जून तक डाल सकते हैं, और जो पछेती किस्में हैं जैसे बासमती उसके 20 जून से 15 जुलाई तक नर्सरी डाल सकते हैं। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो नर्सरी डालते समय हमें ध्यान में रखनी है।
1: वो कौन सी?
0: वो ये है कि पहले हम बीज का चयन करें, किस प्रजाति के बीज को हमें नर्सरी में डालने हैं, बाको बीज उपचार करना बहुत जरूरी है,
1: यानी कि प्रमाणित होना चाहिए बीज।
0: जी, अगर प्रमाणित ना है तो घर पे भी बाको शोधन कर सकते हैं, और शोधन करने के बाद ही हमें नर्सरी डालनी चाहिए, जिससे होता है कि जो बीज जनित बीमारियां होते हैं वो हमारे खेत में फिर ना होंगी।
1: अच्छा, शोधन करने के लिए हेडपाल भैया लाल दवा को प्रयोग कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत सारी दवाएं आज बीज की दुकानों पर मिल जाती हैं, उनसे हम शोधित कर सकते हैं, जैसे थीरम है इससे भी शोधित कर सकते हैं। और बीज की जवाई बना लें तो 24 घंटा पहले पौध डालने से पहले, और उसको छायादार स्थान पर सुखा करके तब शाम के समय आप पौध डालें, और जो नर्सरी डालें खेत में कंधेर करने के बाद वो कंधेर ठहक जाए तो पीछे हटते हुए धान को बखेरते हुए आए, जिससे वो धान के बीज हैं वो हमारे पैरों तले ना दबें।
1: अच्छा, तो हमारे भैया बहन समझ चुके होंगे, और इस तरीका से अगर हमारे भैया अपने खेत की तैयारी करके और समय से अगर धान की पौध डालेंगे तो जरूर अपनी धान की फसल से भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: तो इस पर भैया एक कमी हमारे कुछ किसान भैया करते हैं कि जो धान की नर्सरी डालते हैं ना उसके लिए अंदाज से खेत तैयार करो और फिर बामन नर्सरी डाले आए, लेकिन खेत की अगर माप के अनुसार हम नर्सरी डालें, यानी कि जिस खेत में हम धान लगाने जा रहे हैं वह खेत के 15वें भाग में
1: अच्छा
0: नर्सरी डालें, तो जो बीज होंगे वे दूर दूरी पर होंगे, और हमारी जो पौध है जब उग करके आएगी तो मोटी भी होगी और उसको लगाने में समय भी कम लगेगा और मन भी लगेगा लगाने में, तो इसलिए जरूरी है कि सही माप करने के अनुसार ही खेत में नर्सरी डालें।
1: अच्छा, तो भैया बहनों समझ चुके होंगे कि इस तरीका से हमारे भैया बहन ये पौध डालें और पौध डाल के अपने धान की फसल से अच्छा उत्पादन लें।
0: इस पर भैया अब ये बताओ, हमारे जो किसान भैया हैं वो खेती बाड़ी काम काज मौसम के अनुसार करते हैं, है ना, तो का मिजाज रहने की उम्मीद है मौसम की? कल आसमान में तो भैया बादल छाए नहीं रहेंगे, यानी कि आसमान में धूप खिली रहेगी और वर्षा की उम्मीद अब ना है, पश्चिम दिशा से हवा बहेगी, और हमारे जो किसान भैया हैं जिन खेतों में ओट आई गई है बरसात के बाद वो इस समय अपने खेतों की जुताई कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और जब मौसम साफ रहेगा तो जो भी जुताई होने वाले खेत हैं उनकी जुताई करा दें, और जहाँ समय तो भैया जुताई बहुत बढ़िया होता है जब करानूं, क्योंकि इस समय की जुताई में जो खरपतवार होते हैं बेऊ नष्ट हो जाते हैं और जो हानिकारक कीट होते हैं बेऊ उनसे निवारण हो जाता है।
0: बिल्कुल, और अब जो खेतों में वर्षा हो गई है वहाँ खेत जुतवावें और हरी खाद हेतु ढांचा की बिजाई कर दें, तो समय पर आकर के जब हमारी खेत तैयारी होगी उस समय ढांचा की पलटाई कर देंगे तो हरी खाद भी हमारे किसान भैया के खेतों को मिल जाएगी। और भैया चलते चलते नसीहत के बारे में क्या कहना चाहूँगा?
1: तो आज के कार्यक्रम से हमें यही नसीहत मिलते है कि खेती बाड़ी में समय को ध्यान रखें और अच्छे उत्पादन के लिए गोबर की सड़ी खाद को इस्तेमाल करें और खेत में जो है ढेचा बोए दें जिससे हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करो जा सके, और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित उन योजनाओं को भी लाभ उठाएं हमारे किसान साथी।
0: बिल्कुल, और अब समय ना है अपने भैया बहन से और अधिक बातें करें, तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया हेडलपाल सिंह
1: और अपने भैया तेजपाल को दे अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम में एक बार फिर सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अपने भैया हेडलपाल सिंह
1: और अपने भैया तेजपाल की
0: राम राम। सुनावत तेजपाल भैया, कैसे हाल चाल है?
1: हाल चाल बहुत बढ़िया है और हमारे जो ग्रामवासी हैं वे अच्छे से होंगे।
0: देखो भैया, वह गर्मी को समय चल रहा है और जब गर्मी के समय में हमें अपने खान पान को विशेष ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल भैया, और जब हम अपने आहार संतुलित आहार रखेंगे और खान पान को विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, तो इन और साथ में खनिज लवणों का मिश्रण हो, तो ऐसी चीज़ों को जब इस्तेमाल करेंगे तभी हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और इन दिनों में तो भैया वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, पसीना भी हम सबको बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो रसदार फल हैं जैसे तरबूज है, खरबूज है, इनको सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने खाने के समय में रोटी कम सलाद ज़्यादा खाएँ। हैं कहावत है ना, रोटी कम इन दिनों में और सलाद ज़्यादा हो, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, नींबू है, हरी मिर्च है, प्याज है, इनको सेवन जरूर से जरूर करें, जिससे हमें संक्रामक रोगों से भी ये बचा रहेंगी और हमारा जो पाचन क्रिया है वो भी बढ़िया बनी रहेगी। और तेजपाल भैया, कार्यक्रम में आज हमने क्षेत्र संकलित जानकारी भी जुटाई है। अपने घर परिवार में बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित बच्चों में जो टीकाकरण है किस तरीके से हमारे परिवार में होना चाहिए बच्चों के लिए, तो इन सब बातों को जान लेते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं कांति देवी। किसान भाई, प्रतिदिन क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं कार्यक्रम में, और आज भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं बच्चों के टीकाकरण के संबंध में। हमारे घर परिवार में जो फुलवारी होती है उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हर गाँव में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है, आशा बहन होती है और ANM बहन जी होती है, उन सब की होती है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक स्वस्थ रहें। इसी क्रम में हमारे साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम?
2: मेरा शुभ नाम कांति देवी।
0: कांति देवी जी, आप कहाँ पर आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं?
2: मैं ढका में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी केंद्र फर्स्ट पे कार्यकर्ता हूँ
0: जी। ये हम जानना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र पर आप लोगों का क्या क्या उत्तरदायित्व होता है?
2: हमारा आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भ से लेके
0: जी
2: 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को साला पूर्व शिक्षा देना
0: जी,
2: गर्भवती महिलाओं से लेकर और बाकी सारे बच्चों को टीकाकरण कराना
0: जी,
2: बाकी उनको देख रेख कराना, कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देना
0: जी,
2: और पुष्टाहार का वितरण करना
0: जी, गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की भी ध्यान रखना,
2: उनके स्वास्थ्य में भी हाँ, उनके पोषण को के विषय में जानकारी देना
0: जी। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है आपका, कि पूरे परिवार को आप स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है आपके पास में। ये जानना चाहेंगे कि आपने जो केंद्र पर कितनी उम्र तक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए?
2: 3 से 6 वर्ष पे।
0: और इससे पहले उनके स्वास्थ्य की देखभाल जो होती है वो घर पर होती है, तो बच्चों को मुख्य रूप से कुछ जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए किस किस तरीके के कौन कौन से टीके लगते हैं और कब कब लगते हैं?
2: डिलीवरी जब होता है उसके समय पे, जन्म के समय पे BCG, HPV, BCV और HPV टीका लगता है
0: जी,
2: वो लगता है TB से बचाव के लिए। फिर जब 1.5 माह का बच्चा हो जाता है तो पेंटावेलेंट और IPV, PCV, पोलियो, रोटा ये लगता है।
0: अच्छा
2: हाँ, और फिर सेकेंड डोज 2.5 महीने पे लगती है, वो पेंटा फर्स्ट सेकेंड की दूसरी डोज लगती है।
0: अच्छा।
2: 3.5 महीने पे जो लगती है वो तीसरी डोज लगती है, पहली बार में जो डोज लगती है वो तीसरी डोज में भी वही डोज लगती है, पेंटा थर्ड, IPV सेकेंड, PCV सेकेंड
0: जी। हाँ। अच्छा, ये सब आपको जो जानकारी प्राप्त होती है, जिस तरीके से आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जिससे हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी जानकारी मिले कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं,
2: तो
0: आपको आपको ये सारी जानकारी कहाँ से उपलब्ध होती है? आप
2: हमें विभागीय द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है
0: जी,
2: मझगुमा ब्लॉक में CMO सर द्वारा जानकारी दी जाती है, मीटिंग ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को
0: जी। तो ये ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया जाता है बच्चों के टीकाकरण के विषय में?
2: हम सब लाभार्थियों को बताते हैं
0: जी,
2: कि गर्भवती महिलाओं के खान पान के विषय में बताते हैं, धात्री महिलाओं को उनके बच्चों को दूध पिलाने के विषय में बताते हैं, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को

0: को खाने के विषय में बताते हैं कि 6 माह से 8 माह के बच्चे को यह पोषण देना है, ये खाना इस तरह का खिलाना है, 8 माह से 9 माह के बच्चे को ये खिलाना है, इस तरह से हम सारा बताते हैं।
1: जी बहुत सही कहा था आपने कि जो ये पूरी जानकारी होती है, जिस तरीके से जब भी बच्चा गर्भ में आता है तो पूरी जानकारी आप उनको उपलब्ध कराती हैं। अच्छा, इसका कार्य जो होता है वो डोर टू डोर घर घर जाने का?
0: महिला, गर्भवती महिला का हमें पता लगता है, सबसे पहले हम उसका पंजीकरण कराते हैं, 3 माह के पहले ही उसका पंजीकरण कराते हैं। उसके बाद में उसे पोषण के संबंध में जानकारी देते हैं, उसको टीकाकरण कराते हैं, कार्ड वगैरह बनवाते हैं। फिर जो पिछली साल की एक योजना चली है PMMBY की, पहला बच्चा जो होता है उसको 5,000 रूपए का PMM प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिलाते हैं, और जब सेकेंड बच्चा जब लड़की होती है तो उसे 6,000 रूपए का लाभ दिलाते हैं।
1: जी, अब जैसे किसी के पहले ही बच्ची का जन्म होता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है?
0: पहली बच्ची का जन्म होता है तो पहले बच्चे उसको 5,000 रूपए देने, पहला बच्चा है तो वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म जो हम कराते हैं पहली गर्भावस्था में, उसको सबसे पहले पंजीकरण कराना, उसका पूर्ण टीकाकरण कराना, पोषण संबंधी जानकारी देना। अगर संभवता जब हमारे गर्भवती महिलाओं को गोद भराई और अन्नप्राशन का जब हमें बजट आता है तो हम पहली गर्भवती महिला का गोद भराई भी कराते हैं। जब 6 माह का बच्चा हो जाता है और जब बजट में होता है तो उसका हम अन्नप्राशन भी कराते हैं।
1: गोद भराई की बात करें तो गोद भराई में क्या क्या होता है?
0: गोद भराई में जो 250 रूपए मिलता है तो हम एक महिला का गर्भवती को बुला के पहली तिमाही में उस गर्भवती महिला की गोद भराई कराते हैं, जिसमें हम गोला मेवा फ्रूट वगैरह देके उसका गोद भराई करते हैं, पोषण संबंधी जानकारी देते हैं, बाकी पुष्टाहार जो होता है हमारे पास उपलब्ध वो भी देते हैं।
1: जी, अब बात करें अन्नप्राशन की, उसमें बच्चों के साथ
0: अन्नप्राशन में 6 माह का बच्चा कम्प्लीट हो जाता है तो उनके अभिभावक को बुलाते हैं, और बजट जब होता है तो अपने पास से उसको कटोरी चम्मच दे के खीर खिला के और सम्मानित सहित उसका अन्नप्राशन करते हैं।
1: जी, कांति देवी जी, एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि अधिकतर जहाँ भी जब मैं जाता हूँ या मेरे रिश्तेदारी है या हमारे आसपास पड़ोस में, तर हमने देखा है कि हमारे जो घर परिवार होते हैं उनमें जो छोटे बच्चे होते हैं, जिस दिन उनका जन्म होता है उसी दिन जो बोतल होती है वो खरीद करके आ जाती है और उनको बोतल से ही दूध पिलाया जाता है। जब बोतल से दूध पिलाया जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या ही बन जाती है कि बोतल एक तरीके से रोग वाहक भी कहते हैं, इसके लिए बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, तो बोतल के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जब गर्भवती महिला का 9वां महीना चल रहा होता है उसको हम बुलाते हैं और उनको कहते हैं हम डिलीवरी के तुरंत आधे घंटे बाद केवल अपना दूध पिलाना है और अपना दूध जन्म से लेके 6 माह तक पिलाना है। 6 माह तक ना तो उसे शहद देना है, ना पानी देना है, ना घुट्टी देना है, कुछ भी नहीं देना है, केवल केवल अपना दूध ही पिलाना है।
1: जी, देखिए बोतल से दूध
0: और बोतल से दूध पिलाने से संक्रमण हो जाता है, जबड़े खराब हो जाते हैं, तलवा हल्का हो जाता है, माइंड भी कमजोर हो जाता है। हम समझाते हैं कि ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर बच्चे को बोतल से दूध पिलाओगे। केवल केवल 6 माह तक केवल माँ का ही दूध पिलाने को हम प्रोत्साहित करते हैं माताओं को।
1: और कटोरी चम्मच से जब दूध पिलाया जाता है बच्चे के लिए, तो कटोरी चम्मच तो हमारी बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाती है, जो कि बोतल होती है
0: बहुत गंदी होती है, वो तो पता नहीं, हमने जब देखा नहीं उसको तो कितनी खराब चीजें से बनती है, बहुत इन्फेक्शन होता है उससे।
1: तो हमारे जो सुनने वाले उन सबसे हम तो ये आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपके परिवार में ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, बोतल से नहीं।
0: आज भी मैंने अपने आंगनवाड़ी सेंटरों में मीटिंग रखी है टीकाकरण के सत्र पे, गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी दी है और जो छोटे बच्चों की माँ थी उनको भी यही जानकारी दी है कि कोई भी अपने बच्चे को 6 माह तक केवल अपना ही दूध पिलाएंगे, बाहर का ऊपर कुछ भी फार्मूला, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध या पानी। मैंने समझाया कि आज गर्मी का मौसम है, आपका बच्चा छोटा है, अगर आपको लगता है छोटा बच्चा है उसको पानी पिला दें तो पानी नहीं देना है, आपके दूध में 90% पानी है और 10% दूध है, पानी की पर्याप्त मात्रा बच्चे को प्राप्त हो रही है, आप ऊपर का पानी नहीं दे सकते।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कांति देवी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पष्ट जानकारी दी है हमारे सभी सुनने वालों के लिए। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप लगन के साथ अपने कार्य को करते रहें और गांव को स्वस्थ बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप भैया बहनों। अभी आप क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता सुन रहे थे, बच्चों को स्वस्थ रखने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की भूमिका। और तेजपाल भैया, हमारे भैया बहन अब समझ गए होंगे किस तरीके से हमें अपने बच्चों को कब कब टीके लगवाने चाहिए और कहाँ लगवाने चाहिए। और अब समय हो, चलो अपने भैया बहन को एक गीत संगीत सुनवा दो जा।
2: हाँ भैया,
1: तो कोई संदेश आए हैं आपके पास?
2: हाँ, जो गीत को सुनने के लिए कुछ फरमाइश हमको भेजी है धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी माया, जय किशन साहू, योगेश, बसु, हेमा, राधिका, इन सब ने।
1: और जी चिट्ठी हमको मिली है ग्राम दूनी नगर जिला बदायूं से भेजनवारे हमारे साथी ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू विशाल संगम।

आदर्श आदित्य कुमकुम निद्या सरता और अंतमा आप हैं रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश से राम कुमार वर्मा भगवान दास रविंद्र वर्मा तेज प्रकाश वर्मा शशि कुमार नत्थू लाल नन्नकी सिंह और छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा आप हैं निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री मोहम्मद नईम मोहम्मद फहीम मोहम्मद दानिश मोहम्मद नसीम अनाविया फातिमा बाबर आजीम और हमजा और साथ में है आदर्श दिवाकर लव दिवाकर यश पाल दिवाकर और जे हमको संदेश मिलो है सलामतगंज मीरगंज बरेली से हरिओम वर्मा संजीव वर्मा शिवम वर्मा मुकेश वर्मा ओम प्रकाश वर्मा रामचंद्र वर्मा शिवा वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य तो आप सभी के अनुरोध पर आवाज सुन लेते हैं जे मधुर मेला गीत।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय होने जा रहा है कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का। लेकिन उससे पहले आपको दे देते हैं सूचना खोए हुए व्यक्तियों की। तो ये खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। ताराचंद निवासी ग्राम गहर्रा थाना भमोरा जिला बरेली। इनकी आयु करीब 27 वर्ष, कद 5 फुट, इकहरा जिस्म, रंग गोरा है। ये दिनांक 19 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके संबंध में यदि किसी को कोई जानकारी हो तो कृपया गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र

0: निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न, कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
0: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी वानिया सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय तीन दिन का कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए दो दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय

0: पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित चार विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
2: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
3: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का कि हम दे देंगे।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। आईटीएफ जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने आज आईटीएफ जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रेडियो हेल्पलाइन।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
4: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
4: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप, वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
5: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
4: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
4: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
6: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: सभी श्रोताओं को, पांडे जी आपको भी नमस्कार।
6: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और कब उन्हें कोई नई जानकारी मिले। हालांकि विषय हमारा पुराना ही है आज भी, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि हमारे श्रोता कुछ नया जान पाएंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमने एक बार पुनः रखा है, समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। क्योंकि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बात है तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे किन्हें कहा जाए।
7: जी देखिए, जो नॉर्मल गर्भा पीरियड है,
6: जी गर्भकाल,
7: गर्भकाल है 37 वीक से,
6: यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह का समय है
7: जी, वो नॉर्मल एक गर्भकाल का इंसान का है
6: जी।
7: लेकिन जो 37 सप्ताह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं,
6: अच्छा,
7: वो प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं
6: जी। जी
7: तो प्रीमेच्योर में भी अलग अलग कैटेगरी है
6: जी,
7: जैसे कि लेट प्रीटर्म जो 37 से 32 सप्ताह के बीच में,
6: अच्छा,
7: जो 32 सप्ताह से और पहले पैदा हो जाते हैं वो प्रीटर्म,
6: अच्छा,
7: और जो मान लीजिए 28 वीक्स या उससे पहले पैदा हो जाते हैं वो वेरी प्रीमेच्योर।
6: तो क्या डॉक्टर साहब ये संभव है 28 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ जीवन जी पाएगा?
7: देखिए, इन बच्चों को जो परेशानी है वो इस वजह से है कि ये समय से पूर्व पैदा हुए
6: जी।
7: समय से पूर्व पैदा होने में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग है
6: जी
7: वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने विकसित हो जाने चाहिए।
6: अच्छा अच्छा।
7: तो इसलिए हर अंग शरीर का अपने आप में एक कठिनाई पैदा करता है
6: जी।
7: जो बच्चा समय से पूर्व पैदा है, जो सर्वाइवल संभव है आज की तारीख में
6: जी, जी, अच्छा।
7: और वो बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं 25 वीक्स एंड 26 वीक्स के
6: जी, जी।
7: तो उससे कम जो और पहले के पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ जगह रिपोर्टेड है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे बच जाते हैं।
6: अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्भकाल 9 महीने का कहा जाता है, 9 महीने, 9 दिन, 10 दिन इस तरह से, उसकी जगह आप बता रहे हैं कि 6 महीने, यानी जो 26-24
7: 9 महीने 7 दिन गर्भकाल नॉर्मल माना जाता
6: है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप गर्भकाल बता रहे हैं तो 6 महीने, 6.5 महीने का ही
7: बच्चा? जी जी जी, 6.5 महीने के जो बच्चे, 6 महीने के बच्चे जैसे 24-25 वीक्स के जो बच्चे पैदा होते हैं
6: जी,
7: तो उनमें एक तो सबसे अधिक जो कॉमन समस्या आती है कि लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते,
6: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत नहीं,
7: हाँ मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर, जब तक बच्चा या प्रीटर्म बेबी माँ के गर्भ में है
6: जी,
7: तो उसको ऑक्सीजन हुआ, बाकी सारी न्यूट्रिशनल सप्लाई हुई या जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब माँ से मिलता है थ्रू ब्लड। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं और वो उसको ऑक्सीजन अपने आप उतनी बनानी पड़ती शरीर में कि जो उसका काम चल सके
6: जी।
7: जब लंग्स इमेच्योर होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
6: अच्छा,

0: न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसकी सांस तेज चलना शुरू करती है, क्योंकि बच्चा कंपनसेट करने की कोशिश करता है उस प्रीमेच्योरिटी को या लंग की उस इनसफिशियंसी को जल्दी जल्दी सांस लेके।
1: यानी जो फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है वो नेचुरली
0: कम, क्षमता तो कम है ही, जिसको हम बोलते हैं कम्प्लायंस कम है। दूसरा, उस चीज को बच्चा पूरा करने की कोशिश करता है उसे जल्दी जल्दी टैकिपनिया करके, मतलब सांस की गति बढ़ा के
1: ऑक्सीजन की जो जरूरत
0: रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट कम है, जिसको कि बोलते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी एनआरडीएस या एचएमडी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, अगर प्रीमेच्योर बच्चे में वो है तो आपको सर्फेक्टेंट एक दवाई होती है या एक पदार्थ या मटेरियल है जो कि आपको उसके फेफड़ों में डालना होता है, जिससे कि वो जो उसकी कमी है उस सब्सटेंस की उसको बाहर से पूरा किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुदरती तौर पर ये फेफड़े में मौजूद होता है सर्फेक्टेंट?
0: ये सर्फेक्टेंट कुदरती तौर मौजूद होता है, लेकिन जब बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो उनमें कम होता है। ये 28 वीक ऑनवर्ड्स बनना शुरू होता है अच्छे से, और जो बच्चे 30 वीक्स या 32 वीक्स के ऊपर निकल जाते हैं उनमें इतना जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो बच्चे 32 वीक्स हैं उनमें हमेशा एक डर रहता है, मतलब ये पता लग चुका है कि अगर इन मदर्स को, जिनके बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समय से पूर्व पैदा होंगे, उनको एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाए प्रॉपर डोजेज में, तो लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है।
1: ये जो आप बता रहे हैं दवाइयाँ बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, तो ये माँ को दी जाती है?
0: ये माँ को इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये अंदेशा होता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है, तो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इंजेक्शन 2 दिन का कोर्स है उसको करके, तो उसमें लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि बच्चे को एनआरडीएस यानी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो या सर्फेक्टेंट की कमी पड़े।
1: यानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो ये फैसला लेती हैं?
0: वो फैसला लेती हैं। अच्छा। कि अगर उनको ये रहता है कि इसमें जल्दी डिलीवरी हो सकती है तो वो माँ को ये लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसके लगाने के ये तो फायदा है ही लंग्स की मेच्योरिटी, और भी फायदे हैं, जैसे कि गट की मेच्योरिटी बढ़ती है और ब्रेन की भी मेच्योरिटी बढ़ती है। और ब्रेन पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा तो हमेशा एक डर रहेगा कि ब्रेन को इंसल्ट ना हो जाए। दूसरी चीज, ब्रेन में हेमरेज होने का, जिसको बोलते हैं आईवीएच इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वो होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, जो आप दवाइयां बता रहे हैं ना, स्टेरॉइड कहा जाता है, और स्टेरॉइड ये कहा जाता है कि बहुत नुकसानदायक होता
0: है? नहीं, ये तो कोर्स ही ना, पर्टिकुलर डोजेस दी जाती है। अच्छा। वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे जैसे स्टेरॉइड नुकसान करते हैं ब्लड प्रेशर में, शुगर में, लेकिन ये स्टेरॉइड बच्चे को आपको हेल्प करने जा रहे हैं, और अगर माँ को शुगर है या माँ को ब्लड प्रेशर है तब भी ये स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: जिससे कि बच्चे को फायदा दे सके।
1: यानी अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये तय करती है कि जो गर्भवती माता है उसे स्टेरॉइड के रूप में बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन दिया जाना है, तो ये उचित है
0: जी,
1: ये बच्चे के हित में है।
0: अभी एक दवाई जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट,
1: जी जी,
0: वो भी एक्लेम्सिया के मदर्स को पहले देते थे, अब जहाँ पे हमें सस्पेक्ट, हमें डाउट अंदेशा रहता है कि बच्चे को ब्रेन इंसल्ट हो सकती है, बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, या बच्चे को बर्थ एनोक्सिया हो सकता है, ये डर है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत करे, तो उन मदर्स को मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है, जिससे कि बच्चे में जब पैदाइश होती है तो उनके दिमाग को नुकसान कम होता है।
1: अच्छा। ये बर्थ एस्फिक्सिया और ये जो नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें इसका मतलब क्या होता है?
0: देखिए, बर्थ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना।
1: अच्छा।
0: है ना, तो बच्चा पैदा होते समय किसी कारण से अगर ठीक से सांस नहीं ले पाया, जैसे कि पैदाइश में ज्यादा टाइम लग गया, या गर्भ में वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया
1: जी,
0: या बच्चे ने कई बार पॉटी पेट में कर ली,
1: लैट्रिन
0: पेट में कर ली तो वो सांस में ले ली, या बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस होने लगा
1: जी। डॉक्टर साहब, ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर हमारे श्रोता इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो कई ऐसी बातें हैं जो कि शिशु पैदा हुआ है उसे देख करके वो समझ सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। और जहां तक इलाज की बात है, एक योग्य चिकित्सक ही इन परिस्थितियों में बच्चे की जान बचा सकता है। जहां तक डॉक्टर साहब चिकित्सा की या इलाज की बात है, तो माँ के पेट में जो बच्चे को माहौल मिलता है, जिस तरह की परिस्थितियां होती है, ऐसी परिस्थितियां अगर इन बच्चों को नहीं मिलेंगी जो कि 24-25 सप्ताह में पैदा हो रहे हैं, तो क्या ये बाकी इनका जो विकास होना है, शारीरिक विकास होना है या अंगों का विकास होना है, वो संभव हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो किस तरह की मशीनों की आवश्यकता।

0: होती है, उनकी क्या भूमिका होती है?
1: अब पंडित जी आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुदरत की बराबर इंसान तो नहीं कर सकते
0: जी।
1: जो माँ से देखभाल मिलती है एक नवजात शिशु और प्रीमेच्योर बच्चे को, वो मशीनों के द्वारा इंसान की कोशिश तो होती है, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम वैसा माहौल वो चीज दें
0: जी,
1: लेकिन नियर नॉर्मल पहुंच जाते हैं, एब्सोल्यूट तो उतना नहीं हो सकता। तो ये प्रीमेच्योर बच्चों को रखने के लिए जो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऐसी मशीन है जिनमें कि हम लोग केयर करते हैं, ह्यूमिडिफाई जो आद्रता है उसको कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं,
0: जो नमी
1: ह्यूमिडिटी, हाँ नमी को और टेम्परेचर तापमान को, दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इंक्यूबेटर के बाद एक और दो मशीन है जिनमें डुअल सिस्टम होता है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी की, जिसको ओमनीवेट बोलते हैं या जिराफ बोलते हैं, उसमें आप एज ए ओपन सिस्टम भी काम कर सकते हो, मतलब उसे खोल के भी और दूसरा उसको एज ए इंक्यूबेटर भी यूज कर लेते हैं।
0: जी, आपने बताया डॉक्टर साहब कि जिराफ ओमनीवेट, ये शब्द सुना सुनाया सा हो गया हमारे श्रोताओं के लिए। जिराफ के विषय में ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को अपने पेट में ही रख लेता है वापस, जो एक खाल सी होती है लटकती रहती है, शायद वही आशय होगा इस मशीन से भी।
1: जी जी, बिल्कुल ठीक कहा है। और उसी तरह से जैसे कि जिराफ के अंदर एक पॉकेट होती है, उसमें बच्चे को वो अपने, उसका जिराफ का बच्चा भी बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत प्रीमेच्योर बच्चा होता है, और उस थैली में बच्चा वो रहता है सुरक्षित, वहाँ उसको दूध पीता रहता है और उसका तापमान कंट्रोल रहता है और माँ उसका ध्यान रख पाती है।
0: जी जी,
1: तो उसी को शायद ध्यान रखते हुए इस मशीन का इन्होंने नामकरण किया।
0: डॉक्टर साहब, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रयास आप बता रहे हैं कि किया जाता है, जैसा माँ के पेट में गर्भ में बच्चे को जो माहौल और जो वातावरण मिलता है वही वातावरण बच्चे को बाहर मिल पाए, ये प्रयास किया जाता है और प्रयास में सफलता भी मिलती है। एक श्रोता इसी बीच लाइन पर आ गए, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं।
1: हेलो।
2: हेलो
0: जी, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं। जी जी, आकाशवाणी बरेली से आपकी बात हो रही है, डॉक्टर कुलदीप गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी जी जी, मुन्ना लाल जी, आपकी कॉल का इंतजार रहता है हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बड़ा रेगुलर श्रोता है ये आपके?
0: जी,
1: नियमित श्रोता।
0: जी जी, आज क्या प्रश्न है आपका?
2: हमारा सवाल ये था, जो प्रीमेच्योर बच्चा है वो किसे कहेंगे जी, प्रीमेच्योर बच्चा है, पहली बात तो।
0: जी
1: जी, चलिए एक सवाल। दूसरा
2: दूसरा सवाल ये सर, प्रीमेच्योर बच्चों की देखभाल के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ती है?
1: अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल आपका?
2: सर एक और जानकारी लेना चाह रहे हैं, प्रीमेच्योर बच्चों में नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
1: चलिए चलिए, देखिए आपके तीन सवाल आपने पूछे। तो प्रीमेच्योर बच्चा कब कहते हैं? जब बच्चे का जो जन्म है वो अगर गेस्टेशनल टाइम है या गर्भा पीरियड है वो 37 वीक से यानी 37 वीक से कम का है, तो उस बच्चे को प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। दूसरा सवाल था इनका पांडे जी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं,
0: मशीन
1: को जो, हाँ मशीनें कौन सी आती हैं, वो था ही समस्याएं इन बच्चों को इसलिए आती हैं कि इनके जितने अंग हैं वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने समय के साथ हो जाने चाहिए। अब जब ये विकसित नहीं हो पाते तो हर अंग अपनी दिक्कत देता है, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत आती है सांस लेने में, जिसको कि HMD बोलते हैं, ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है, कई बार हेमरेज होने का डर रहता है, ऐसे आंतों में दिक्कत आती है दूध पचाने में, खासतौर से अगर माँ का दूध ना दिया जाए, इन बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाए तो NEC यानी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर रहता है। फिर इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इनको अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी वगैरह जरूरत होती है। फिर बच्चों को इनको आपका अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत, वेंटिलेटर्स भी न्यूनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर, मतलब जो सिर्फ नवजात शिशु में ही इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं, वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि 1 ML टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ML 3 ML का, क्योंकि 6 ML पर KG के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ML एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में ही इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है।

0: बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि एक एक ML टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ML 3 ML का, क्योंकि जो 6 ML पर केजी के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ML एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है आपके न्यूनेटल केयर के लिए। और जहां तक आपने सवाल किया है इनको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार आपका इकोकार्डियोग्राफी वो मशीन होना चाहिए बेड साइड, जिसमें कि इन बच्चों को अक्सर समस्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की यानी PDA की, तो PDA हुआ, NEC हुआ, फिर बाद में इनको जरूरत पड़ती है आंखों के चेकअप के लिए या हियरिंग की जरूरत पड़ती है, हियरिंग इनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इनकी हियरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आरओपी होने का डर रहता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, इनको खून की कमी होने का डर रहता है जिसको बोलते हैं एनीमिया और प्रीमेच्योरिटी। तो इस तरह की समस्याएं आती है इनको कि डिफरेंट मशीन। जहां आपने सवाल किया INO का, INO प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये INO जो इस्तेमाल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जो कि टर्म बेबी में खासतौर से उन बच्चों में जो जिनकी पैदाइश मुश्किल से हो, जिसको हम बोलते हैं बर्थ एनोक्सिया बर्थ एस्फिक्सिया, उन बच्चों में जरूरत पड़ती है, या उन बच्चों में जो कि फेफड़ों में गंदा पानी ले लें जिसको बोलते हैं मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो बर्थ एस्फिक्सिया और मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बच्चों में ये मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो नवजात शिशु वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्लक्चुएटिंग होता है उसका ऑक्सीजन लेवल, आप उसे टच करो या उसका सैंपल लो तो उसके ऑक्सीजन गिरने लगती है और उसको कई बार ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो बहुत कम जाता है, लंग्स की तरफ इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स को ब्लड कम पहुंचता है तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती है। तो ये सिलेक्टिव पल्मोनरी वैसो डायलेटर है, मतलब ये लंग्स को जो ब्लड जा रहा है उन ब्लड वैसो उन धमनियों को उन नसों को चौड़ा कर देता है जिससे कि लंग्स को ब्लड ज्यादा जाता है और बच्चों को ऑक्सीजन बढ़ाने में आसानी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी जो अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों में कभी जरूरत पड़ती है वरना ज्यादातर टर्म बेबी में और उन बच्चों में जो पैदा होने के समय जिनको मुश्किल आती है या उन बच्चों में जो पैदा होने से पूर्व या पैदा होते समय फेफड़ों में गंदा पानी ले लेते हैं।
1: जी और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी?
2: एक प्रश्न और है सर, जो अखबार में निकलता है ना बगैर खून लिए क्लोरवीन का, वो सर कौन सी मशीन है जो बगैर खून लिए ही सीरम क्लोरवीन हो जाता
0: है? वो उसके लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलोनोमीटर। तो आपका स्किन से या फिर ईयर लोब्यूल से आप उसको अगर रीडिंग वहां से नाप सकते हैं, उससे आपको एक पीलिया कितना ये आइडिया लगता है, लेकिन उस मशीन से ये पता नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है। अच्छा, और तो प्रीमेच्योर बच्चों की समस्याएं ये होती है, और एक बहुत बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों में होती है इन्फेक्शन होने की, खासतौर से सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं और कई बार इन बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
1: जी
0: ठीक है,
1: जानना है,
2: बहुत बहुत जानकारी आने के लिए डॉक्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के शायद समझ से परे हों, लेकिन आप उनके उत्तर जान लेते हैं, प्रश्न भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न बताएं।
0: हेलो,
3: हम राजपुर कला से बोल रहे हैं साहब,
1: बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी आज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने रेडियो पर सुनी ही कि रेडियो हेल्पलाइन में समय से पहले पैदा भाई बच्चन के बारे में बताई जाएगी।
1: जी
3: तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे बच्चा 8 या 7 महीना को जन्म हो जाए
1: जी,
3: तो बाकी मतलब सही तरीका से घर पर ही जन्म हो है और वो मतलब सही सांस वास सही ले रहे हो, लेकिन अच्छी तरीका से जैसे तंदुरुस्ती ना बच्चा एकदम बढ़वार पर सही हो रहा है खा रही है, तो जाके लिए अब हमें क्या करने हो, जो डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह लेना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब लाइन पर है, अगली आवाज डॉक्टर साहब की।
0: जी ऐसे जो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया है, तो इसका वजन कितना कितना समय से पूर्व पैदा हुआ?
3: लगभग 8 महीना को जन्म हुआ होगा।

0: और वजन कितना है इसका?
1: वजन तो ऐसी हो जा मेरी ना जाए 120 के करीब।
0: देखो जो बच्चे 1 किलो 600 ग्राम से कम वजन के होते हैं वो अपने आप दूध पीने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को दूध आपको पिलाना पड़ेगा या तो चम्मच कटोरी से या फिर हम लोग कहते हैं एनजी फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो तीसरा तरीका है कि इनको पलैदी से दूध पिला सकते हैं, तो माँ का दूध ही इनको पिलाना चाहिए। अगर ऊपर का दूध पिलाएंगे तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो माँ का दूध अगर 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा है तो इसको आप करीब कितने दिन का हो गया?
1: लगभग
0: 22 दिन का हो गया, तो इसको करीब 1 किलो पे 160-180 ml दूध आपको पिलाना है 24 घंटे में। तो आपको करीब 20-22 ml 23 ml दूध पिलाना है और डेली दूध बढ़ाना है। तो ये बच्चा अपने आप तो दूध पी नहीं पाएगा माँ से डायरेक्ट, तो आपको या तो दूध माँ का निकलवा के चम्मच कटोरी से पिलाना होगा या पलादी से, या आप किसी हॉस्पिटल में तो आपको एनजी डलवा के एनजी फीडिंग करा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप एनजी इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़वा लीजिए और घर पे फीड करिए। बाकी इसके तापमान का ध्यान रखिए, इसको इन्फेक्शन ना होने पाए उसका ध्यान रखिए। और अगर 20-25 काल ले गया बच्चा तो बच्चा स्वस्थ हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब अगर तब तो ठीक है, लेकिन जो गांव में निप्पल ना आते वो प्लास्टिक वाली
0: ना, उससे दूध नहीं पिलाएंगे, निप्पल वाले आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर उससे दूध पिलाएंगे तो।
1: शुरू शुरू में साहब रुई से मतलब जो है घर में गाँव में पिया दो, अब वो निप्पल से देना शुरू कर दो है, तो अब पी तो निकलो लेकिन समस्या जो आएगी वो उतनी तरीका से जैसे ना बच्चा एकदम हिच को सोच चलवाता तंदुरुस्त उस तरीका की।
0: देखिए निप्पल से दूध पिलाएंगे तो दिक्कत ये आएगी, बच्चा निप्पल से दूध पीने में ताकत का इस्तेमाल करता है और जो अपनी ताकत वो दूध पीने में लगा देगा तो वो ताकत उसको वजन बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नली से दूध पिलाएंगे या चम्मच कटोरी से दूध पिलाएंगे तो उसकी वो ताकत बचेगी और वो ताकत भी उसको वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप अगर निप्पल से दूध पिलाएंगे तो कई खतरे हैं, एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है, दूसरा उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत आएगी।
1: तो साहब आपकी सलाह के अनुसार चलो दूध की बात जो होगी लेकिन बाबू सही तरीका से तंदुरुस्ती मिले जाके लिए हमने कहा करने पड़ेगा।
0: देखिए दो तीन चीजें हैं, अगर बच्चे का वजन 1 किलो आप कुछ बता रहे हैं तो एक तो उसको एक बार डॉक्टर दिखा के एक उसको विटामिन डी कैल्शियम फॉलिक एसिड और आयरन ये दवाइयाँ चलनी चाहिए। अच्छा पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। तीसरा उसके बच्चे का तापमान हमेशा आप अगर बच्चे को छुएं तो बच्चा आपको गर्म लगना चाहिए, अगर बच्चे के हाथ पैर आपको छूने पे ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को मतलब तापमान कम हो रहा है, और बच्चे की अगर बॉडी भी ठंडी लग रही है आपको शरीर भी ठंडा लग रहा है तो इसका मतलब तो तापमान बहुत कम हो गया। तो इसके लिए एक तरीका ये भी करते हैं जिसको हम लोग कंगारू मदर केयर बोलते हैं, TMC केयर। तो माँ या घर में कोई और सदस्य है जो बच्चे को हमेशा अपनी छाती से बिना कपड़े के लगा के रखे, जैसे माँ गाउन पहन सकती है और अपने दोनों छातियों के बीच में बच्चे को लगा के रखे लगातार जितना ज्यादा से ज्यादा समय, तो माँ के तापमान से बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। तो और दूसरा उसका एक दूसरा फायदा है कि माँ दूध पिलाने में भी उसको दूध कम नहीं होगा कभी। तीसरा आने वाले समय में माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आसानी रहेगी।
1: अरे सर आप जानना चाह रहे जैसे अभी तो माँ के दूध के लिए और बाकी जो हलवा वगैरह आते हैं और ये मतलब भैंस को या बकरी को दूध है जो आगे चले कितने समय बाद हम बात लाना शुरू करें?
0: 6-7 महीने तक, 6 महीने तक आप कुछ नहीं देंगे सिर्फ माँ का दूध, शहद गुट्टी पानी ऊपर का दूध बकरी का दूध शहद या गाय भैंस का दूध ये कुछ भी नहीं देंगे 6 महीने तक आप।
1: अच्छा हाँ भाई जो पड़ोस में है जैसा कह रहे कि बकरी को दूध दे लेकर कोई बात ना है तो आप देंगे तो अच्छा ले
0: तो नहीं बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए आपके बच्चे के लिए नहीं है।
2: जी
1: बिल्कुल सही बात है।
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, 6 महीने तक माँ के दूध की सिफारिश की जाती है, लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर साहब, जब अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य है और
0: अमृत तुल्य है, अमृत है
2: जी वो हाँ। अमृत ही पिलाना चाहिए हाँ।
0: और हर माँ का दूध बच्चे के हिसाब से होता है, जिस माँ का बच्चा 26 वीक का है उसका दूध उसके बच्चे के हिसाब से।
2: अच्छा ये
0: और है। अगर जिसका बच्चा टर्म बेबी है जिसका फुल टर्म बेबी है उस माँ का दूध अलग होता है। अच्छा। तो ये टेलर मेड होता है, जो नवजात शिशु है उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी माँ को दूध होता है और उतना ही होता है जितना जरूरत होती है। तो आप ऊपर का जब दूध पिलाने की कोशिश करते तो माँ का दूध कम हो जाता है। एक

0: दूध अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो
1: जी
0: उसको उसी माँ का दूध चाहिए जो उसकी रियल में माँ है,
1: अच्छा
0: या
1: अच्छा
0: उसी उतने हफ्ते की डिलीवरी हुई है।
1: यानी जिसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ है उसी माँ का दूध उसके।
0: हाँ, वो टेलर मेड है, जैसे आप दर्जी के पास जाते हो तो आपके हिसाब से पैंट शर्ट बनाता
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है, रेडीमेड नहीं है ये,
1: जी
0: है ना।
1: जी डॉक्टर साहब, ये और बताइएगा, कई बार महिलाएं कहती हैं जो प्रसव के उपरांत दूध नहीं आता माँ को, तो ये बात वाकई में सत्य है? विज्ञान क्या कहता है इस विषय में?
0: देखिए, ये सिर्फ इंसानों की सोच है कि और कोई प्राणी तो ये सोचता ही नहीं है
1: जी,
0: कि दूध कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। सब माँ के दूध पे पूरी कुदरत चल रही है,
1: यानी
0: कोई
1: प्रकृति
0: ऊपर प्रकृति ने कोई कहीं छेड़छाड़ नहीं करता। इंसान थोड़ा समझदार हो गया, वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है,
1: जी
0: वो अपने फालतू सोचने की कोशिश करता है कि माँ को दूध नहीं हो रहा, कम हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन माँ को दूध पर्याप्त होता है। हर माँ को, जिस माँ के दो बच्चे होते हैं उसको, उस माँ को दो बच्चे के हिसाब से दूध होता है।
1: जी
0: और जब बच्चे का, जैसे शुरू का दूध अलग होता है तो बोलते हैं कि शुरू के 7-8 दिन जो दूध होता है वो अलग होता है,
1: जी
0: और शुरू के दो तीन दिन बिल्कुल दूध अलग होता है, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं।
1: जी
0: और बच्चा जब 15 दिन को जाता है तो वो दूध अलग हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो वो हर दिन के हिसाब से दूध का क्वालिटी बदलती जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वो सब चेंज होते जाते हैं
1: बच्चे की आवश्यकता के अनुसार।
0: अनुसार
1: उसे
0: जो
1: मिलते हैं।
0: प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी माओ को दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है,
1: जी
0: उनको
1: जी
0: विकसित होना होता है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि अभी भी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमा हमारे सामने है, फिर भी हम चाहेंगे आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कोई खास संदेश, हालांकि कई ऐसे संदेश हैं जो हमारे श्रोताओं को आज जरूर मिले होंगे, फिर भी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे?
0: देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एक तो जब भी कोई जो प्लानिंग हो आपकी गर्भ धारण करने की, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल।
1: अच्छा,
0: ये नहीं कि साहब माँ गर्भ धारण कर लिया मैंने, आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। माता पिता दोनों को डॉक्टर से अपने मिलके प्लान करके बच्चे को आप लाएं दुनिया में। दूसरी चीज, माँ का रेगुलर चेकअप कराएं, अपने लेडी डॉक्टर को समय समय पर, वो जब जब आपको बुलाए, माँ को समय से टीके लगवाए, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ की यूरिन, माँ की शुगर, माँ का थायराइड और जो भी आवश्यक हो वो जांच कराए, है ना। फिर उसके बाद उसका जो जन्म है वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन तुरंत मिल जाए। बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा होने का अंदेशा है तो माँ को स्टीरॉयड कोर्स के हिसाब से लगना चाहिए, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। और बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा हो गया है, उसके बाद उसे देखभाल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉपर उचित देखभाल मिल सके। सिर्फ नर्सरी में रख देने से किसी बच्चे की परवरिश नहीं होती, उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है, और उसको जब हम बचा के दे रहे हैं तो उसका सर्वाइवल इंटैक्ट है या नहीं, उसको हम बच्चा अगर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, बच्चा हमारी कान सही होना चाहिए, उसकी हियरिंग सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसकी देखने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसका IQ सही होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह, एक ऐसे सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। आप अगर ये सोच के कि नर्सरी में हमने बच्चा रख दिया, सब जगह नर्सरी एक सी है, सब जगह एक सा इलाज होता है, ये गलत एक धारणा है, इस धारणा से बचें। तो और हर बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, समय से उसको टीके लगवाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें, और कोई घर में अगर किसी को खांसी बुखार है वो बच्चे से दूर रहे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षित होने का प्रमाण भी देना चाहिए।
0: जी,
1: जो बातें आपने बताई हैं, अगर हमारे श्रोता ध्यान रखते हैं तो उनके नवजात शिशु एक अच्छे युवा, हम ये कहेंगे कि
0: देश के लिए एक अच्छे नागरिक,
1: देश के लिए अच्छे नागरिक बन करके आगे आएंगे,
0: और माँ का दूध पिलाएं तो 2-4 आइंस्टीन भी पैदा होंगे देश में।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार पांडे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनीवेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें,
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए

0: CFM, बेडसाइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
1: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों से।
4: मैं डॉक्टर अशोक मोरल की वार्ता, विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक वार्ता आपको सुनवाते हैं, जिसका विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक मोरल।
1: सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने के साथ बताना चाहूंगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम मशीनों को इस प्रकार सिखाते हैं या विकसित करते हैं कि वो मनुष्यों की तरह सोच सकें, मनुष्यों की तरह तर्क कर सकें, मनुष्यों की तरह निर्णय लेने की भी क्षमता कर सकें। जैसा कि आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व 1956 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया था। उस समय यह शब्द केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा थी, लेकिन आज के समय में यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आज AI इतनी विकसित हो चुकी है कि वह भाषा समझ सकती है, चित्र बना सकती है, संगीत तैयार कर सकती है और साहित्य लेखन का भी कार्य कर सकती है। क्योंकि आज के समय में हमारे सामने अनेक प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट्स, भाषा अनुवादक, रोबोटिक्स, अपने आप चलने वाले वाहन, डिजिटल शिक्षा प्रणाली, इस तरीके के और भी विभिन्न माध्यम हमारे सामने हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, दिन प्रतिदिन की चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी की सभी AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। भारत सरकार भी डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 15 trillion dollars का योगदान दे सकती है। तो आने वाले समय की विशेषज्ञों की इस बात को ध्यान रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना अब जिंदगी थोड़ा मुश्किल तो होगी। लेकिन हम बात यदि हिंदी साहित्य के परिपेक्ष में करें तो हिंदी साहित्य का महत्व बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि कोई भी साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होता है और हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का दर्पण है। तो हिंदी साहित्य ने सदियों से समाज को दिशा देने का कार्य किया है, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अनेक महान साहित्यकारों की छवि उभरती है। जैसा मुंशी प्रेमचंद जी ने गरीबों और किसानों की समस्याओं को उजागर किया, तो वहीं महादेवी वर्मा जी ने संवेदना और नारी की चेतना को स्वर दिया। इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्रभक्ति और वीरता का संदेश दिया, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन दर्शन को सरल शब्दों में हमारे सामने रखा और वह बड़े अच्छे से समझाया। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने स्वतंत्र चेतना और मानवता की बात की, तो कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को आध्यात्मिक और नैतिकता की दिशा प्रदान की। इस प्रकार बहुत सारे हमारे महान साहित्यकारों ने अपने आप में बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी भावनाओं को हमारे समक्ष रखा। लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये तकनीक और हिंदी साहित्य का क्या संबंध है। यदि हम इतिहास को देखें तो हमें लगता है कि तकनीक और इतिहास का संबंध नया नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने छापा खाने का आविष्कार हुआ था तब पुस्तकों का इतने बड़े स्तर पर प्रकाशन संभव हुआ और रेडियो और टेलीविजन ने कविता और कहानियों को घर घर तक पहुंचाया। इसी इंटरनेट के माध्यम से हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच दिया, तो आज उसी AI तकनीक ने विकास की अगली कड़ी है जिसको हमें अपनाना ही होगा। अब प्रश्न यह नहीं है कि AI साहित्य में आएगी कि या नहीं आएगी, बल्कि प्रश्न यह है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। क्योंकि हिंदी

0: साहित्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक प्रभावों को हम देखें तो ये हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर प्रसार तो करने के साथ साथ अनेक प्रकार की भूमिकाएं उसने निभाई हैं। आज कोई भी व्यक्ति हिंदी की कविता या कहानी का अनुवाद कुछ ही सेकंड में कई भाषाओं में कर सकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को यूज करते हुए। इसी से हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है। डिजिटल पुस्तकालय और ई पुस्तकों के माध्यम से आज हमारे पास हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्च पर हमें पाठकों की रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं और उनकी हम ऑडियो बुक्स के रूप में भी साहित्य को लोगों तक पहुंचाया है। जो पढ़ नहीं सकते थे या पढ़ नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित हैं, वो लोग भी आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चीजों को सुन सकते हैं। शोध और अध्ययन में भी काफी सहायता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मिली है, क्योंकि पहले शोधकर्ताओं को पुस्तकालयों में महीनों एक सामग्री खोजनी पड़ती थी, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हम कुछ ही क्षणों में हजारों लेखकों और पुस्तकों का विश्लेषण करके हमारे सामने रख सकती है। बहुत मुश्किल से मुश्किल कविताओं को अर्थ को समझाने में और व्याकरण को सुधारने में, उसके साथ साथ साहित्य के विश्लेषण करने में भी यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करती है। नए लेखकों को अवसर प्रदान करती है, क्योंकि आज इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म हैं। उसके कारण गांवों में, शहरों में, कस्बों में छोटे छोटे लेखक अपनी रचनाएं भी दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं। और जबकि ये पहले, क्योंकि कई बार पब्लिश करने में, प्रकाशन में बड़ी मुश्किलें आती थी, अब वो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको अपने लेखन को बढ़ाने में, उस लेखन को दुनिया तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा में ही क्रांति की है। यदि बात की जाए तो स्मार्ट क्लासरूम में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सीखने की मदद मिलती है और कठिन संरचनाओं को भी सरल भाषा में समझाना आसान हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इन सभी लाभों के, इन सभी सकारात्मक प्रभाव के बावजूद हम देखते हैं जो बनता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहित्यकार बन सकती है? यह प्रश्न आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कविता लिख सकती है, कहानी बना सकती है, यहाँ तक कि संगीत भी तैयार कर सकती है। और आप में से काफी श्रोताओं ने वो गाने सुने होंगे जिसके बारे में चर्चा रहती है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए हैं। लेकिन साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं है, साहित्यिक अनुभव से जन्म लेता है। क्योंकि जब एक कवि दुख लिखता है तो उसके पीछे उसके जीवन का अनुभव होता है, और जब कोई लेखक संघर्ष की कहानी लिखता है तो उसकी आत्मा की पीड़ा उसके पीछे होती है। तो मशीनों के पास ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन अनुभव नहीं है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहित्य की सहायक तो बन सकती है, लेकिन वास्तविक साहित्यकार नहीं बन सकती। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चुनौतियां हैं उनको बड़ा ध्यान से देने की भी जरूरत है, और उनको बड़े अच्छे तरीके से उपयोग करने की भी हमें जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों की सिर्फ यही है कि वो कहीं ना कहीं हमारी मानवीय संवेदनाओं को कमजोर ना कर दे। क्योंकि साहित्य केवल जानकारी नहीं देता बल्कि वे भावनाएं पैदा करता है। जैसा मैंने चर्चा की कि विभिन्न साहित्यकारों ने किस प्रकार से विभिन्न एस्पेक्ट्स को हमारे सामने रखा, उनमें उनकी भावनाएं थी, उनमें उनके विचार थे। क्योंकि मशीनें शब्दों की तो बता सकती हैं, लेकिन मनुष्य के दुख, प्रेम, संघर्ष, उन सबको महसूस नहीं कर सकती। इसीलिए भविष्य की चीजों को देखते हुए हमारे पास आज इस बात की जरूर आवश्यकता है कि हम तकनीक को अपनाएं, लेकिन अपनी भाषा, संस्कृति की और साहित्यिक मूल्यों को कभी न भूलें। और हम ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो आधुनिक विज्ञान में भी आगे हो, अपनी मातृभाषा और साहित्य में भी जुड़ी रहे। इसीलिए हमें AI का विरोध या इसको अवरोधक के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमें उसका सही से प्रयोग सीखना है, जिससे कि हम आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी आने वाला युग है, आधुनिक शक्ति का युग हो, हमें ऐसी पीढ़ी अभी तैयार करनी होगी जो सभी तरीके से आगे रहे।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य, इस विषय पर अभी आप ये विशेष वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर अशोक मोरल। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हिंदी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल के गायक कुछ

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के गाए भजन। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म लूटमार का ये गीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गाइड का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार हैं एस डी बर्मन और गीतकार हैं शैलेंद्र।

0: और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, इस समय रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप

0: शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसी के और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवी की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17

0: स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं शीर्षक संगीत। हाँ, यानी कि वही गीत जिनके नाम पर फिल्में बनी हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो फिल्म का नाम है वही गीतों में भी आपको मिलेगा। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं सिंघम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अजय अतुल का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं रामलीला फिल्म का ये गीत, आवाज भूमि त्रिवेदी की। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और संजय लीला भंसाली का संगीत। राम

0: एसपी बाला सुब्रमण्यम और जॉनिटा गांधी की आवाजों में सुनिए चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत।
1: Move your body, there is no party like a party in Chennai. Aye.

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अन्विता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा।

था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है। जलते

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजूमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक we bring to you a santoor recital by Rajkumar Majumdar. Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with rag Jan Sammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Hum. आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 700

0: श्रोताओं, आपको बता दें कल रात 10 बजे से आप सुनेंगे रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने

0: पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।